0: जब इधर देखते हैं तो पार्वती जी मना कर रही हैं, उधर देखते हैं तो कह रहे महाराज पी लीजिए। भगवान शंकर ने क्या किया, कुछ हलाहल विष को वाम हस्त से ग्रहण कर लिया और अपने गले में ही रख लिया। पान शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है कि गला अधो नयन व्यापार का नाम है पान। गले में जो छिद्र है उससे अधमल्ल नीचे ले जाने को पान कहते हैं। तो भगवान विष्णु की बात रख ली, उस विष को गला के अंदर तो रख लिया और पार्वती ने कहा था मत पीजिए तो उसको नीचे नहीं उतारा, गले में रख लिया हलाल विष को, जिससे कि देवताओं के असुरों की रक्षा हुई, अकांड प्रलय से बचाव हो गया। ऐसे हमारे जीवन में जब भी हम कुछ करते हैं, कोई भी काम करें, तो निश्चित ही हलाहल विष, हलाहल विष का मतलब है दुख। ये जो हमारे जीवन का दुख है या दुख ही समझो हलाहल विष है। बंबई में सारे लोग आते हैं धन कमाने के लिए, परंतु अभी 27-28 नवंबर को हलाल विष निकला। सभी आए थे धन कमाने, अमन चैन से जीवन यापन करने, परंतु ऐसा हलाल विष निकला कि जो बम के विस्फोट से पूरी बंबई गूंज गई, त्राही त्राही मच गई। तो हमारे जीवन में भी ये देवासुर संग्राम चलता है। अमृत तो बाद में उपलब्ध होगा, पहले हलाहल ही दुख ही आता है और जब दुख आता है तब जाकर वैराग्य होता है और जब वैराग्य होता है तो आप इतिहास या पुराण या वेद उपनिषद सब कुछ देख लीजिए, सीधा उत्तर जाता है मनुष्य, दक्षिण भारत की यात्रा कोई नहीं करता है। भगवान शंकराचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंदाचार्य, ये सारे आचार्य उत्पन्न हुए दक्षिण भारत में, वल्लभ भी निम्बारक भी और अपने शंकराचार्य भगवान भी सभी, परंतु यात्रा किया उत्तर भारत की, कैलाश की, हिमालय की। तो जब भी किसी को विषाद होता है, दुख होता है, हलाल से परेशान होता है, हम लोग किसी दिन यदि जरा सा छोले भटूरे कुछ खा लेना गर्म चीज, तो रात को सोने के बाद देखो जब पित्त बनता है तो कैसे जलन होती है, परेशान हो जाते हैं, तो वह तो हलाहल विष था। जब हलाहल विष रूपी दुख आए तो हमें भी यात्रा कहां करनी चाहिए विचार कर लो, कैलाश की, क्योंकि यत्र शंभो नित्यम राजते, जहां पर भगवान शंकर हमेशा उमा के साथ विराजमान रहते हैं वह है कैलाश। परंतु स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज, उस कैलाश को आपको यहीं बसा दिया है, ये दूर नहीं है। कैलाश शब्द का अर्थ है कई गई शब्दे, ये धातु है, कई और गई दो धातु है, इस शब्द अर्थ में है। कई गई शब्दे धातु है और रलयोर अभेद, रकार लकार का अभेद है। तो कई मतलब कि शब्दे, शब्दे का अर्थ है शब्दात्मक जो वेद है, जो उपनिषद है, जो भागवत है, और लास का अर्थ है रास, रलयोर अभेद है ना, और रस एव रास स्वार्थिक प्रत्यय है, और रस शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान, रसो वैश, उपनिषद में आता है रसो वैश, जीवन का रस सार तो आत्मा ही है। तो जब हम शब्दात्मक वेद का, वेदांत का, भागवत का, रामायण का जब श्रवण करते हैं स्वाध्याय के द्वारा या प्रवचन के द्वारा, तो साक्षात भगवान शंकर की जो साक्षात आत्मा है उनकी अनुभूति होती है। तो जब भी आपको अपने घर में, व्यापार में, बिजनेस में, धंधा में ये हलाहल बीस रूपये दुख हो ना, तो आप कहां यात्रा करना है, प्रेमपुरी, क्योंकि यही कैलाश है। और इस कैलाश में यात्रा करेंगे तो निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा। जब देवताओं को असुरों को समाधान नहीं मिला तो कैलाश पर गए, वहां पर जाते भगवान शंकर ने समाधान किया। इसके बाद जब आप मंथन करते जाएंगे तो फिर क्रम से लक्ष्मी भी मिलेगी, एरावत हाथी भी आएगा और अंत में अमृत कलश भी उपलब्ध होगा। लक्ष्मी बोलते धन को, एरावत हाथी मन लगे कि जो आप गाड़ी चाहते हैं ना, हमारे चलने के लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वाहन होना चाहिए, वह भी उपलब्ध होगा। परंतु जब हमारे जीवन में हलाहल रूपी विषाद आए तो उस विषाद को हम संवाद में परिणत करें। जब संवाद में परिणत करेंगे तब जाकर के गीता का प्रसाद, भागवत का प्रसाद उपलब्ध होगा। कभी भी अमृत का स्यंदन विषाद से ही होता है। जैसे बर्फ बहुत कठोर है, वह कठोर बर्फ भी अग्नि से पिघलता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज के महात्म्य में कहा गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख शब्द का अर्थ है शोक, सुख सोचे धातु है, मुख बोलते द्वार को। तो जब हमारे जीवन में सुख होता है, शोक विषाद होता है, तब जाकर के जो घनीभूत अमृत है उसमें स्यंदन श्राव होता है। जैसे कि कठोर बर्फ को आप पी नहीं सकते, अपने प्यास को बुझाना हो तो कठोर बर्फ को आजकल के दिनों में दिसंबर जनवरी फरवरी में गंगोत्री में जो लोग रहते हैं उस बर्फ को अग्नि पर तपा करके तब जाकर प्यास बुझाते हैं। जब इधर परीक्षित महाराज को शोक हुआ कि सातवें दिन मैं मौत का ग्रास हो जाऊंगा, वैसे ही विषाद हुआ। विषाद के बाद सुखदेव से संवाद हुआ और संवाद के द्वारा अमृत का श्राव हुआ। तो हमारे जीवन में जब दुख हो, समस्या आए तो प्रसन्न होना चाहिए कि अब जो है जो अमृत जो घनीभूत है उसमें श्राव होने वाला है। तो यहां पर भी ये जो ऐतिहासिक विषय बतलाया कि देवताओं ने जब सागर का मंथन किया, मंथन से हलाहल हुआ और अंत में अमृत उपलब्ध हुआ। यह मोक्ष ही अमृत है। सात्विक राजस वृत्तियां ही दैवासुर है। सबके अंतःकरण में कभी सात्विक वृत्ति होती है, कभी राजस, कभी तामस, और आपस में संग्राम चलता रहता है। इस संग्राम से कई बार आप जीतते भी हैं, कई बार हारते भी हैं। परंतु इस संग्राम में यदि आप इस संसार के बीज के द्वारा वैराग्य को उपलब्ध होंगे, क्योंकि वैराग्य हमारे मोक्ष का प्रथम पाथेय है, प्रथम पायदान है। जैसे कि छत पर पहुंचने के लिए प्रथम पायदान होती है, वैसे ही हमारे जीवन को सफल बनाने का सबसे प्रथम पायदान है विषाद। विषाद बीज है वैराग्य का। भगवान शंकराचार्य जब वैराग्य का लक्षण गीता भाष्य में करते हैं तो वहां कहते हैं कि विषयेषु दोष दर्शनम वैराग्यम। जब आप विषय में दोष दर्शन होने लगे तो अपने आप मन वहां से हट जाता है, वैराग्य हो जाता है। किसी को आप बहुत सुंदर माने, अपना विश्वस्त पात्र माने, पर किसी ने आपको कानाफूसी कर दिया कि आपको पता नहीं आपके पीछे बहुत बुराई करता है, बस इतनी बात सुनते वहां से मन हट जाता है कि मैं तो इसको इतना अच्छा मानता हूं, प्रिय मानता हूं, हितकर मानता हूं, पर हमारे पीठ पीछे हमारा यह निंदक है। चाहे झूठी बात क्यों न हो, कहीं पर भी जब विषय में दोष का दर्शन होता है तत्काल वैराग्य होता है। परंतु वैराग्य को एक अच्छा आयाम मिलना चाहिए। जैसे हिमालय से तमाम नदियां झरने प्रवाहित हो रहे हैं, उनको हम बांध के द्वारा पहले रोकते हैं, जल का ठहराव करते हैं, इसके बाद नहर के द्वारा उस जल से सिंचाई करते हैं तो फसल होती है। ऐसे ही सबके जीवन में वैराग्य जरूर होता है। कोई बोले कि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं तो बिल्कुल वो कोरा झूठ बोलता है। वैराग्य अवश्य होता है, परंतु वैराग्य को हम लोग जो है एक जो है नया आयाम नहीं दे पाते हैं। वैराग्य हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि थिएटर में चले गए मन को जो है बहलाने के लिए, या कहीं घूमने निकल पड़े, पिकनिक मनाने निकल पड़े। भगवान राम को ही वैराग्य हुआ, क्योंकि संसार काजल की कोठरी है। कैसे हूं सयानो जाए एक लकी लागी है पैलागी है, इस संसार काजल की कोठरी है। जब भगवान राम को वैराग्य हुआ तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, और वहां पर जाने के बाद इतना अच्छा संवाद हुआ, उसी संवाद का देन है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ और मांडुक्य कारिका बिल्कुल शुद्ध प्योर देसी घी के समान है, इसमें जरा सा मिलावट नहीं है। और उपनिषद में, रामायण भागवत में तो इधर उधर की प्रसंग भी है, परंतु मांडुक्य कारिका और योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ बड़ा ही विस्तृत ग्रंथ है। इसमें जो है बिल्कुल प्योर वेदांत आत्मा का चिंतन किया है। तो हमारे जीवन में जब भी विषाद हो तो समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कृपा का मूसलाधार वर्षा हो रही है, और उसके द्वारा वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। और वैराग्य के बाद सदगुरु की शरण में आए, और आपको सदगुरु न मिले तो बंबई प्रेम पूरी कल्प तरु है, यहाँ आएंगे जरूर कोई न कोई महापुरुष उपलब्ध होंगे, और वही वैराग्य आपके जीवन को उज्जवल करेगा और अंत में अमृत का पान कराएगा। अब समय हो गया, शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 31. Thank you.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

जटा में बहे गंगा की धारा, बड़ा मतवाला बड़ा मतवाला है। डम डम डम डम डमरू वाला बड़ा मतवाला बड़ा मतवाला है।

डम डम डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा मत वाला है। सोने को मांगे रक्षा की सेजा रक्षा की सेजा, सोने को मांगे रक्षा की सेजा रक्षा की सेजा। उड़ियन को मृग की छाला बड़ा मत वाला बड़ा मत वाला है। डम डम डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा मत वाला है। बाएं हाथ में पार्वती सोहे पार्वती सोहे, बाएं हाथ में पार्वती सोहे पार्वती सोहे। गोदियन में गणपति लाला बड़ा मत वाला बड़ा मत वाला है। डम डम डम डम

0: हरि ओम। स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एवं सभी सत्संगियों की तरफ से पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतिथि देवो भव, पर हमारे सबके सद्भाग्य है कि यहाँ संतो अतिथि बन के दो दिन के लिए अपने पर कृपा करने के लिए आ गए हैं। हम फिर से स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हैं और आज और कल दो दिन स्वामी जी हमको ज्ञान गंगा बहाएंगे। हम सब स्वामी जी को पूरी तरह जानते हैं, इसलिए ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं।
1: ओम गणानाहं त्व गणपतिगुं हवामहे कविं कवि नामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नोतिभिस्तीतसादनम् ओम महागणपतये नमः। ओम भद्रं कर्णेभिश्रृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुपाकुंसस्तनुभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। मेरे पीछे बोलना। निधये सर्वविद्यानां।

0: विद्यारंभं करिष्यामि
1: विद्यारंभं करिष्यामि
0: सिद्धिर्भवतु मे सदा
1: सिद्धिर्भवतु मे सदा।
0: ओम स्वामी अखंडानंद जी महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम लेके शुरुआत करते हैं। अथर्व वेद में मुंडक उपनिषद आता है, शौनकीय शाखा मंत्र उपनिषद है, ये शौनकीय शाखा में ये पढ़ता है। इसमें ये बताया गया है कि ब्रह्म विद्या के प्रथम आचार्य गुरु स्वयं भगवान, यहां ब्रह्मा जी लिखा है, ब्रह्मा जी नाम के लिए है, सचमुच परमेश्वर का नाम ही है। ब्रह्मा प्रथम संभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, ये लक्षण ईश्वर का है, जो सृष्टि को प्रकट करे, रक्षण करे, लीन करे अपने में, वो ईश्वर ही होता है। तो उन्होंने ये ब्रह्म विद्या का उपदेश किया और परंपरा से, परम से अपरम, गुरु से शिष्य, प्रशिष्य के रूप में वो विद्या चली आई। इसका मतलब है कि अध्ययन अध्यापन की विधि से, वेद का मंत्र बताता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमतितव्यम। स्वाध्याय मानी अध्ययन करे अपने गुरु के पास, और अपने शिष्य जब आए तब उसको वही विद्या पढ़ाए, पढ़े और पढ़ाए, लर्न एंड टीच। तो इस क्रम से विद्या आती गई और इस उपनिषद के जो आचार्य है वो अंगी है और उनके पास जिज्ञासु जाता है, बुलाता नहीं है, तो गुरुमेव अभिगच्छे, उनके चरण में पहुंचता है। और शौनको हवई महाशाल अंगी रसम विधिवत उपसन्न पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। ये शौनक जी अपने गुरु के पास गए। ये शौनक का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं शुनकस्य अपत्यम पुमान, शुनक का पुत्र है शौनक है, बिरला के पुत्र को क्या कहते हैं? बिरलास है ना, इसको संस्कृत में तद्धित कहते हैं। दशरथ का पुत्र क्या है? दाशरथी। जनक की बेटी क्या है?
1: जानकी।
0: मेहताज एंड सन है ना, ऐसा नाम से बनता है तद्धित। तस्य हितम वैयाकरणस्य हितम। अब क्या हुआ, वो महाशाल है और ये भी लिखा है वो विद्वान है, विद्वान साधक है, जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है कि जिन्होंने पुरुषार्थ का ठीक ठीक निश्चय किया है। पुरुषार्थ चार है, पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ है। जिसकी इच्छा की जाती है, व्हाट इज डिजायर्ड बाय यू, सबके हृदय में उचित मार्ग से धर्म से हमें धन धान्य मिले, उसी काम अच्छी तरह से उपभोग करे, इस सामान्य इच्छा सब में होती है। यू कॉल वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड सिक्योर्ड, प्लेजर्स एंड सिक्योरिटी बाय राइट मीन्स, इस सबके हृदय में सहज ये इच्छा होती है हम सुखी हो। कैसे? सुख का साधन जुटाए और फिर इसका उपभोग करें। पर कोई ऐसा है वो जानता है कि सुख और सुरक्षा बाहर से नहीं आ सकती है, अभी गड़बड़ हो जाएगी। बाहर से नहीं आती तो कहां से आती है बोलो? अंदर से, अंतड़ियों में से, फेफड़ा से, हार्ट से, लीवर से, है ना? और गड़बड़े अंदर, तो ना अंदर से आ सकती है ना बाहर से आ सकती है। वो मेरा ही स्वरूप है, दैट इज द नॉलेज। अंदर वाला और गड़बड़ हो जाएगा, अंदर का। तो सिक्योरिटी मेरा ही स्वरूप ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये सुरक्षा और सुख का नाम ही आत्मा है, जिसमें सब इच्छाओं परिसमाप्त हो जाती है। यह लाभात्म परो लाभ है, ये सब बताया है। इसलिए जिन्होंने निश्चय किया है कि वो आनंद मैं ही हूं, और उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए वो गुरु के पास जाता है। अभी इसमें मैं बहुत समय यहां चर्चा कर सकता, जिज्ञासु क्या है, पर समय अभाव के कारण उसको मैं छोड़ता हूं। बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु। जिसको जानने मात्र की इच्छा है, क्योंकि जानने से ही ये पूर्णता प्राप्त हो सकती है, करने से नहीं। आपको एक वाक्य याद दिला दे, भगवान शंकराचार्य महाराज भाष्य में लिखते हैं, परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम। प्राप्त करना चाहिए जो न पर इति अपरम, जो पर नहीं है, अपर है, परिच्छिन्न है, सीमित है, उसको कर्म से प्राप्त करना चाहिए। चतुर्विधा कर्मणा, एक बात याद रखना, कर्म चार ही प्रकार के होते हैं। आप्यम, आप यहां से सूरत जा सकते हैं, होल लाइफ इज ट्रैवल, अंडरस्टैंड। आप अपने जीवन में देखना, आप कभी एक जगह पे रहते नहीं है, हर समय क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह विचरण हमारा होता ही रहता है। घर में भी रहे, बाथरूम जाएंगे, किचन में जाएंगे, यहां जाएंगे, चलता रहता है मूवमेंट। क्यों? कुछ चाहिए इसलिए जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बुलेश्वर जाना पड़ेगा, सामान लाने के लिए जाना। आप्यम कर्म है। दूसरा कर्म क्या है? उत्पाद्यम, जो नहीं है उसको पैदा करेंगे। अभी खेती फसल हो रही है, उत्पाद्यम। पूरे दुनिया में सबसे मोटा काम क्या कर रहा है? टूरिज्म। टूरिज्म मानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का और उनको बड़ा बड़ा आकर्षण देने का, यहां ये है वो है, इसको कहते हैं आप्यम। दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, उत्पाद्यम, एग्रीकल्चर, होल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। थर्ड इज है संस्कार्य। रोज शरीर को स्नान कराना, घर की चीज को सफाई करना, पूरे शहर को सफाई करना, कपड़े को सफाई करना, ये सब क्या है? बहुत बड़ा काम क्या है? स्वच्छता करना और उसको सजाना संवारना। दो काम हर रोज हम भी अपने लिए करते हैं ना, बाल को ठीक बनाते हैं और स्नो पाउडर लगा के सब करते हैं। पूरी दुनिया लगी है शहर का स्वच्छीकरण और उसको आकर्षक बनाना, बहुत बड़ा इंडस्ट्री इसमें भी है। और लास्ट चीज क्या है? विकार्यम। विकार्यम इज व्हाट? उसको पूरे पूरा बदल देना। दूध का दही बनना क्या है? विकार्य। आटे की रोटी बनना क्या है? विकार्य। विकार्य वापिस दही दूध नहीं बन सकता है। मैंने पहले आपको चुटकुला सुनाया था, एक अमेरिकन गुजराती के घर में आया तो उसने श्रीखंड खिलाया। और गुजराती को इंग्लिश बहुत नहीं आता था, थोड़ा ही आता था। तो उसने पूछा ये क्या है? व्हाट इज दिस? श्रीखंड। कैसे बना है? हाउ डिड यू मेक इट? अभी उसको दही का इंग्लिश शब्द याद ना आया उस समय। अभी क्या गड़बड़ करे? तो उसने कहा, इसको मालूम था दूध का इंग्लिश है मिल्क। तो उसने कहा यू नो मिल्क? यस। जब वो रात को सो जाता है तब दही। व्हेन स्लीप्स इन द नाइट बिकम व्हाट? दही। दही से चिकन हो गया। सो व्हेन स्लीप्स इन द नाइट, अभी इस प्रकार से दही। होल इंडस्ट्री ऑफ व्हाट? मॉडिफिकेशन। बिग। अब बताइए पांचवा कोई कर्म हम लोग कर सकते हैं? उत्पाद्यम, आप्यम, विकार्यम, संस्कार्यम हो गया। और ये चारों कर्म जो कर्म फल उत्पन्न करेंगे वो समय में पैदा होने के कारण सब के सब कर्म पैदा होके नाश हो जाएगा। यत् जन्यम तन् मर्त्यम, यत् कृतकम तद अनित्यम। जो पैदा होता है वो अनित्य होता है, घटवत है। ये माला की तरह, माला हर रोज लानी पड़ती है। क्यों? जन्यत्वात्। ये शरीर भी हमारा क्या है? एक दिन कौन सी वाड़ी है उसमें पहुंचेंगे। हमारी अविले पाले में वागजी पहनी वाड़ी है, दूसरी वाड़ी हो गई है, नाम में भूल गया है क्या? चंदनवाड़ी। कितना बढ़िया नाम है ना। सो शरीर भी अनित्य है। सर्व कर्म फल क्या है? अनित्य है। ओके। सो शंकराचार्य महाराज ने कितना बढ़िया व्याख्या लिखा, अपरम चेत प्राप्तव्यम कर्मणा, चतुर्विध कर्मणा प्राप्तव्यम। परम चेत, परम ब्रह्म चेत, जो नित्य है, कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप है, शाश्वत है, अनंत है, उसको आप कर्म से उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि वो अनुत्पन्न है, अभी है। जो नहीं है उसको उत्पन्न कर सकते हैं, जो पूर्ण है उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी उत्पन्न होता है वो कृतकम होता है, और जो कृतकम होता है, उत्पन्न किया जाता है, वो अनित्य है। अगर आपको नित्य चाहिए तो नित्य तो प्राप्त है, नित्य मनी है इस समय। तुम्हारा जमको मालूम क्यों नहीं है? आनंद पूर्णता है, मालूम क्यों नहीं है? होने पर तुम जानते नहीं हो। क्यों नहीं जानते हो? अज्ञान के कारण। अज्ञान कैसे जाएगा? ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म विद्या। इसलिए गुरु के पास जाओ, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। ठीक है। इसलिए यहां परम चेत प्राप्त ज्ञातव्यम। शौनक जी गए किसके पास? अंगी के पास। तो यहां लिखते हैं शौनको हवै महाशालह, ह और वै ये दो निपात बताते हैं ये अवश्य हुआ और ये प्रसिद्ध है। क्या हुआ? शौनक जी की महिमा बताते हैं। देखो उपनिषद में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, वो शिष्य की योग्यता अधिकारित्वम निर्णय करता है। मैं आप लोग को मैं कहीं कल भी सुन रहा था, पर पहले भी मैंने कई बार सुनाया, पर आप एक बात खास याद रखना, उपनिषद दो प्रकार के लोगों को पढ़ा रही है। एक तो जो अधिकारित्व प्राप्त कर चुका है, और दूसरा कौन? दूसरा कौन? जो अनधिकारी है। ठीक है कि नहीं भैया? ये गलती कभी मत करना। उपनिषद टॉक्स टू टू पर्सन, वन इज रेडी, अदर इज गेटिंग रेडी। ओके, एक तैयार है, दूसरा तैयार हो रहा है, क्योंकि सभी मनुष्य को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, सभी मनुष्य ब्रह्म विद्या समझ सकते हैं। या तो वो अभी समझने के लिए तैयार है, या उसको क्या किया जाता है? गेटिंग रेडी और रेडी। वी डोंट पुट कॉम्प्लेक्स ऑन यू, ओके? वेरी डेंजरस। आप अनधिकारी है, अनधिकारी है माने आप कौन कहने वाले हमको अनधिकारी? किसी को अनधिकारी कहना ही क्या है? अनधिकारित्व में आप में ना, आइदर यू आर मैच्योर और गेटिंग मैच्योरिटी, बी वेरी केयरफुल। तो शौनक जी का मन तैयार हो चुका था, अधिकारित्व उनमें था। महाराज कैसे मालूम पड़ा? महाशाल है, यहां कहते महागृहस्थ। आप लोग सब गृहस्थ है, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ है, जो घर में रहे उसका नाम क्या है? माने बाल बच्चे सब। बहुत अच्छा है, शास्त्र में लिखा है सबसे अष्ट लक्ष्मी में पहली लक्ष्मी कौन सी है?
1: गृहलक्ष्मी।
0: घर भी क्या है? लक्ष्मी है। तो घर में अकेले नहीं रहते, कौन होता है साथ में? पत्नी होनी चाहिए, इसको कहते हैं क्या? वरलक्ष्मी। प्रसन्नता से हैप्पी मैरिड कपल, वेरी रेयर बट हैप्पी मैरिड कपल। तीसरी बात है संतान लक्ष्मी, बच्चे होते हैं तो घर बनता है, ये ग्रह लक्ष्मी। अब यहां कहते हैं ये गृहस्थ नहीं, आगे और लगाया, क्या है? महागृहस्थ। महागृहस्थ मानी क्या? महागृहस्थ हमेशा मजाक में कहता हूं, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों गृहस्थ थे कि महागृहस्थ थे? हमारे श्याम सुंदर क्या थे? महागृहस्थ। 16,000, वाह, आप लोग सबको मालूम है, है ना? किसी को एक की जगह दूसरी हो तो कितनी गड़बड़ हो, नहीं होने की संभावना भी, शंका भी हो किसी को तो कितनी लड़ाई होती है। और इनको कितनी थे? 16,800। किसी ने पूछा ये आपके भगवान कैसे जिनको 16,000 पत्नियां हैं? मैंने कहा तू तो एक को संभाल नहीं पाता है, ये 16,000 को प्रसन्न रख सकते हैं, इसलिए भगवान ही होने चाहिए, और क्या बात है। इसका बहुत अर्थ महाराज श्री ने दिया है, पर एक बात है, महागृहस्थ। यहां महागृहस्थ का अर्थ क्या है? महाशाल है। शाला शब्द सबको हम लोग को मालूम है, शाला गए थे स्कूल को भी क्या कहते हैं? शाला। शाला में हॉल, गृह है, यानी हॉल को कहते हैं शाला, खंड। महाशाला का अर्थ होता है ये शौनक जी स्वयं विद्वान है, उनके घर में यज्ञशाला, गोशाला, पाकशाला, पाठशाला, ये सब शाला चलती थी। बहुत से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे, इसलिए क्या था, पाठशाला, हंड्रेड्स ऑफ मित्र, और सब विद्यार्थी को भोजन मिलता था उनके यहां फ्री, बिना मूल्य सबको प्रसाद मिलता था, खूब अन्न का दान करते थे। क्या है, महाशाला, पाकशाला है, और हर रोज यज्ञ होता था उनके घर में, इसलिए क्या है, यज्ञशाला। और यज्ञ के लिए क्या चाहिए, दूध दही चाहिए, इसके लिए क्या है, बड़ी अपने वृंदावन का आश्रम में आना, अखंड जी महाराज के 300-300 गैया, ऐसी सुंदर गैया देखने नहीं मिले, सब प्रसन्न गैया है। तो क्या है, एक रुपये का दूध कभी बेचा नहीं आश्रम ने, नहीं दही बेचा, सबको बांट देते हैं। हमारे महाराज श्री ऐसे थे, ऐसे उदार व्यक्ति कहां देखने को मिलेंगे, देव सबको। तो महाशाल है, तो अन्नदान बहुत किया है। हमारे प्रातः स्मरणीय महाराज श्री की एक बात है, मुझे उन्होंने गणित समझाया था कि क्या, पहले तो कहा व्यतिरेक मुख से, जो कंजूस होगा उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ये बात पहले बताई, और मंत्र भी बताया, एतत् अक्षरम अभिदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः, जो कंजूस है वही ये अक्षर ब्रह्म को जाने दिया जाता है, यहां से इस श्लोक से जाता है। फिर उन्होंने समझाया गणित, उन्होंने कहा दान माने अपनी मालिक की चीज दूसरे की हवाले कर देना, अब आपकी हो गई, अगर मैं पुस्तक उठा के आपको दे दूं, मेरी पुस्तक है, ये आपकी हो गई, इसको कहते हैं दान, चेंज ऑफ ओनरशिप। फिर उनका दान से बढ़कर त्याग है, मैं चीज को न अपनी रखता हूं न किसी के बनाता हूं, छोड़ देता हूं, और त्याग से की बढ़ से है ज्यादा है उसको भूल जाना। योगी बैठा है अपने स्वरूप में, उसको तो जगत की स्मृति ही नहीं है, उसका हो गया वहां से, उससे उपेक्षा हो गई, और इससे बढ़ के है सन्यास, जगत का मिथ्यात्व का निश्चय होने पर संपूर्ण प्रपंच का त्याग हो जाना, सम्यक रूप से छोड़ना, इसका नाम हो गया सन्यास। तो महाराज श्री ने कहा जो त्याग, जो दान करेगा वही त्याग कर सकता है, वही सबको छोड़ के अपने स्वरूप के चिंतन में बैठ सकता है, वही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समग्र जगत का त्याग कर सकता है, मिथ्या निश्चय द्वारा। पर अगर 5 रुपया छूटता नहीं है तो फिर मिथ्या निश्चय कहां से होगा, त्याग कहां से होगा, आंख बंद करके कहां से बैठोगे अपने स्वरूप में। इसलिए कंजूस को आप पूरा करो वाक्य, क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, और जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो कंजूस हो नहीं सकता, महाशाल है। और महाराष्ट्र का प्रसिद्ध दृष्टांत में फिर से दोहराता हूं, एक गांव में एक बड़ा कंजूस शेठ रहता था, कंजूस और शेठ दोनों विरोधी है, मक्की चूस जिसको हम लोग कहते हैं, वो कभी किसी को कुछ नहीं देता है। एक दिन गांव के बाहर कुएं में गिर गया तो सब लोग ने कहा शेठ आपका हाथ दे दो, आपका हाथ दे दो, उसने किसी को नहीं दिया। शाम को उसका मित्र गया और कहा कि शेठ आपका हाथ, मेरा हाथ ले लो, तो रथ पकड़ के बाहर आ गया, तो उसको देने की आदत बिल्कुल
1: नहीं,
0: बस लेना। महाराज का दृष्टांत महाशाल है, मानी चैरिटेबल पर्सन, अ पर्सन इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी, महाशाल है। अब आप देखिए आगे, विधिवत यथाशास्त्रम उपसन्न है, अपने गुरु के पास शास्त्र के अनुसार गया, शास्त्र में लिखा है के ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए एक विधि होती है।
2: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
4: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Iyarpagai Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Bhakti Jano, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar, jo ki Dakshin Bharat ke sant the, jinka naam hai Iyarpagayar. Iyarpagayar कावेरी पट्टिनम के संपन्न श्रेष्ठी थे। भगवान पर उनकी प्रेमाशक्ति और संपन्न भावना असाधारण थी। उनकी मान्यता थी कि सारी धन संपदा और परिवार सब शिव का ही है। ये वे स्वयं तथा अपनी पत्नी और बच्चों पर भी भगवान के भक्तों का अधिकार मानते थे। एक दिन उनके पास एक शिवयोगी आए और आकर बोले, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम भक्तों की हर इच्छा पूरी कर सकते हो। तुमसे कुछ मांगने की यदि मैं आशा करूं तो तुम मना तो नहीं कर दोगे? इयरपगयार ने कहा, आप निसंकोच कहिए, जो भी आप चाहेंगे अवश्य मिलेगा। तब शिवयोगी बोले, मैं तुम्हारी प्रिय पत्नी की कामना करता हूं। इयरपगयार ने एक क्षण भर भी विचार न करते हुए अपनी पत्नी को भेंट स्वरूप उन्हें दान में दे दिया। पत्नी से परामर्श करने पर पहले वो भी हक्की बक्की और चौंक गई, लेकिन पति के वचन के विरुद्ध न जाने की और उनकी पति के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि उन्होंने उनकी बात मान ली। हिंदुस्तान या दक्षिण भारत या कहीं भी कहें तो पत्नी का स्थान पति के जीवन में सबसे उच्च माना जाता है, क्योंकि पत्नी पति के साथ पूर्ण रूप कहलाती है, वो पति की अर्धांगिनी है। इयरपगयार के इस संकल्प को सुनकर उनके सगे संबंधी उनके विरुद्ध बोल उठे, यह तो अनुचित है, यह आप कैसे दान कर सकते हैं? इस पर इयरपगयार ने कहा कि मैंने जो कह दिया कि मेरी पत्नी शिव भक्त योगी के लिए है तो वही है, आप सभी अभी जा सकते हैं। तब उनके परिवारजनों ने उन पर उस शिव योगी पर आक्रमण कर दिया। इयरपगयार ने भी तलवार उठा ली और अपने सारे परिवारजनों को वध कर दिया। इसके बाद अपनी पत्नी और शिवयोगी को एक स्थान तक उन्होंने पहुंचा दिया और कहा, यह अभी से आपकी संपत्ति, यह अभी से आपकी हुई। यह कहकर वो मुड़ गए पीछे। तभी उनके पीछे से शिवयोगी की आवाज आई, दुहाई है इयरपगई मुनिराज, दुहाई है, आप सच में शिव के परम भक्त हैं। इयरपगई ने पलट कर देखा कि पत्नी अकेली खड़ी है, शिवयोगी का कहीं पता नहीं, और उधर साक्षात शिव नंदी पर विराजमान आकाश में दर्शन दे रहे थे। नटराज शिव ने इयरपगई की अनन्य भक्ति और शिव भक्ता पर अटूट विश्वास के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। इयरपगई अभिभूत होकर प्रभु दर्शन करते रहे। इधर मायावश मरे हुए बंधुजन और परिवारजन पुनः जीवित हो उठे। इयरपगई का यह चरित्र आज भी रहस्यपूर्ण माना जाता है। भक्त इसका समाधान करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। चेकिलर कहते हैं, व्यक्ति मूल्यांकन के जीवन में मानदंडों का हम प्रयोग करते हैं, उनसे इयरपगई का जांच पाना संभव नहीं। उनका नाम ही स्पष्ट करता है, इयरपगई अर्थात संसार की सहज प्रकृति के शत्रु। जहां तक इयरपगई का संबंध है, वे अपना अहम पूर्ण स्वरूप से विगलित कर चुके थे। स्वयं को अपनी चल अचल संपत्ति को भगवान के दासों की संपत्ति मानकर जीवन यापन करने वाले इस मानव को हम सामान्य नहीं मान सकते। यह शिव की ही भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि इयरपगई भक्ति में इतने पागल हो चुके कि अपनी पत्नी तक का दान कर दिया था, लेकिन यह ऐसी भक्ति और ऐसी विचार रखने वाले लोग दुनिया में बहुत कम ही होंगे। इसलिए आज हम इयरपगई को सत स्वरूप भगवान के भक्त स्वरूप नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of shaivam.org radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners,
6: we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
7: अंतकरण में जब बिंबरूप कुटस्थ का पहली बार प्रतिबिंब पड़ा था, उस समय ये गलती न किया होता कि मेरा स्वरूप तो कुटस्थ ही है, यही दृष्टि रखकर ये जो अंतकरण में प्रतीत हो रहा है ये तो प्रातिभासिक है, अंतकरण के चलते है, मेरा असली स्वरूप तो वही है, ये निश्चय बरकरार रखते तो पुनर्जन्म न होता, फिर संसार यात्रा न होती। लेकिन जो उपाधि है उसी को ही तुमने अपना स्वरूप मान लिया, हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब कब मानी, शुभ मुहूर्त में माना था कि अशुभ मुहूर्त में माना था, बोलो? शायद मुझे लगता अशुभ ही था वो दिन है? जिस दिन भी ये गलती कर ली है, उस शुभ होता, मंगलमय होता तो जीवन विषाद से ग्रसित न होता, है ना? बड़ा आनंदमय होता, विषाद से ग्रसित न होता। इसका मतलब अशुभ मुहूर्त था, अब वही गलती आज तक भोग रहे हैं, क्योंकि हर बार पैदा हो रहे हैं, फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, उसी एक दिन की गलती से, एक बार की गलती से ये गलती पुनर्जन्म पुनर्जन्म जन्म जन्मांतर का कारण बनता जा रहा है। न जाने कब तक उस गलती का परिणाम और भोगना है हमको, न जाने कब तक उस गलती का परिणाम और भोगना है। अभी तक तो जो भोग चुके हैं, आज जो भोग रहे हैं भोग ही रहे हैं, और आगे भी न जाने कब तक भोगना है। अब यदि कोई पूछे कि महाराज इसके मुक्ति पाया जा सकता है, इससे अलग होया जा सकता है, बोले हुआ जा सकता है। कब कैसे? तो वेदांत ने तो एक ही उत्तर दिया कि तुम वेदांत के विचार के माध्यम से सतत अपने बिंब रूप कुटस्थ साक्षी को मेरा स्वरूप है करने का निश्चय कर लो, फिर आगे तुम्हारी ये यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी, उस गलती को फिर सुधारो। ये देख लो, उस गलती को न जाने कब तुमने की थी, वो गलती को कुटस्थ साक्षी को अपना स्वरूप न मानकर प्रतिबिंबित चेतना को तुमने अपना स्वरूप माना, वो जो गलती उसको फिर आज सुधारो। आज सुधारने का मौका है, सुधार लो, इसी जन्म में सुधार लो, अभी सुधार लो। यदि वो तुम सुधार लोगे कि मेरा असली स्वरूप तो कुटस्थ साक्षी है, फिर आगे तुम्हारी यात्रा चलेगी ही नहीं, फिर संसार तुम्हारे लिए विषाद होगा ही नहीं, और नहीं करोगे तो फिर आगे चलता ही रहेगा। एक उपाय तो यह। और तुम कहो नहीं महाराज वो तो थोड़ा कठिन है, अपने आप को कुटस्थ साक्षी निश्चय करना तो बड़ा कठिन पड़ रहा है। तो कठिन पड़ रहा है तो दूसरा सरल उपाय बता रहे हैं शंकराचार्य जी, कुछ नहीं, भगवान शिव के चरण पकड़े रखो, बस सब काम हो जाएगा, आगे वही कर लेंगे वो है? आगे फिर आगे वो कर लेंगे, उनका चरण पकड़ लो। तो ये श्लोक पर विचार करते हैं, ये उन तमाम शास्त्रीय पंडितों के प्रति जो केवल शास्त्र की दुहाई देते हैं और शास्त्रों के युक्ति, शास्त्रों के दुहाई, शास्त्रों का प्रमाण के द्वारा तर्क वितर्क वहा पोह करते रहते हैं, उन शास्त्रीय पंडितों के प्रति ये कटाक्ष है। शंकराचार्य जी कटाक्ष कर रहे हैं। क्या करते हैं विद्वान लोग, घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल। अब तुम लोग ने तो न्याय शास्त्र न पढ़ी हो, पढ़ा नहीं है हमारा न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन है हाँ, वैशेषिक और न्याय, नब्बे न्याय, प्राचीन न्याय, वैशेषिक हाँ, कणाद का न्याय शास्त्र, गौतम का न्याय शास्त्र हाँ, कणाद ऋषि का तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र। वो लोग क्या कहते हैं, घट माने एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा, वो घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण क्या है? तुमने बड़े आराम से उत्तर दे दिया, मिट्टी है। एक घड़े की उत्पत्ति के लिए कितनी मिट्टी है? मिट्टी क्या सारा संसार की मिट्टी उस घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण है? है? संसार में जितनी मिट्टी है सब मिट्टी मिलकर एक घड़ा उत्पन्न हुआ है क्या? तब तो मिट्टी उपादान कारण है, नहीं तो उस घड़े के उत्पत्ति के लिए जितनी मिट्टी चाहिए वह मृत पिंड, मृत पिंड ही उस घड़े के उपादान का कारण है। ले जी, सारी मिट्टी नहीं, क्योंकि अलग अलग घड़े के लिए अलग अलग पिंड बनाना पड़ेगा कि नहीं है? कुमार क्या करता है, मिट्टी का किसी एक अंश लेके आता है, उसको कूट काट करके मट पानी आदि डाल के एक पिंड बनाता है, उस पिंड को चक्र में डालता है, चक्र के बाद उसको पिंड को शेप देता है, घड़े का आकार देता है। वो जो आकार लिया हुआ, जो तैयार हुआ हुआ घड़ा है, उस घड़े का उपादान क्या, कारण क्या है? मिट्टी है कि मृत पिंड है? किसी ने कहा मिट्टी है, उन्होंने कहा नहीं नहीं मृत पिंड है। ले जी, प्रत्यक्ष तो यही देख रहा है ना, उपादान का मतलब क्या है? वो कारण को उपादान कारण कहते हैं जो कार्य उत्पत्ति से पहले रहे, कार्य उत्पत्ति के क्षण में भी रहे, कार्य उत्पत्ति के बाद भी रहे, और उत्पन्न हुआ हुआ कार्य में ही रहे, अन्यत्र न रहे, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, उपादान कारण। अब एक घड़ा उत्पन्न होना है, घड़ा कार्य है, मिट्टी को अर्थात मृत पिंड को घड़ा उत्पन्न होने से पहले भी रहना पड़ेगा कि नहीं है? अच्छा, जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय भी रहना पड़ेगा कि नहीं? अब घड़ा बन जाने के बाद भी मृत पिंड को रहना चाहिए, लेकिन क्या घट बनने के बाद मृत पिंड रहता है? बोलो है? ये अब कुछ लोगों ने क्या कहा, घट उत्पत्ति का कारण क्या है? मृत पिंड उपादान कारण नहीं है, मृत पिंड ध्वंस घट उत्पत्ति का उपादान कारण है। ले जी, अब हो गया काम, सही क्या लग रहा है तुमको? मिट्टी उपादान कारण कहने वाला जो पक्ष है वो सही है क्या? उसका खंडन कर दिया, मिट्टी उपादान कारण है तो सभी मिट्टी चाहिए एक घड़े के लिए, क्या सभी मिट्टी मिलकर एक घड़ा बना है? नहीं। फिर उस मिट्टी के लिए, उस घड़े के लिए जितना मिट्टी चाहिए उतना मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी लाकर एक तरफ रख दो तो घड़ा बनेगा? तो फिर क्या करना पड़ेगा, मृत पिंड बनाना पड़ेगा। तब फिर क्या सिद्ध हुआ, मृत पिंड घट का उपादान कारण है। तो तीसरा व्यक्ति ने क्या कहा पता है, उपादान कारण का एक नियम होता है, उसको हम उपादान कारण मान सकते हैं, जो कार्य उत्पत्ति से पहले रहे, कार्य उत्पत्ति के क्षण में भी रहे, कार्य उत्पत्ति के बाद भी रहे, और उत्पन्न हुआ हुआ कार्य में रहे, स्वरूप से रहे। ये देख लो, तब मृत पिंड को तुमने जो उपादान कारण माना है वो गलत हो गया, क्योंकि मृत पिंड कार्य उत्पत्ति से पहले तो रहेगा, कार्य उत्पत्ति क्षण में रहेगा, लेकिन कार्य उत्पत्ति के बाद मृत पिंड ही खत्म, मृत पिंड नष्ट नहीं हुआ। और मृत पिंड कार्य उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए हुए घड़े में मिट्टी का पिंड रहेगा क्या? इसलिए मृत पिंड उपादान कारण नहीं घड़े का। फिर क्या कारण है? मिट्टी तो फिर कितनी मिट्टी? सारा मिट्टी। ये प्रश्न फिर जीव करती हूं। तो तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा? मृत पिंड ध्वंस। ये देख लो, ये शब्द जाल है कि नहीं बोलो। मृत पिंड का स्वरूप ध्वंस नाश होना ही घट उत्पत्ति में कारण है। बात समझ में आई कि नहीं? अब स्पष्ट हो गया? अब आम रस तुम आम से बनाते हो कि आम के ध्वंस से बनाते हो? अब समझ में आ गई है? आम रस आम रहते हुए आम रस बनेगा कि आम के ध्वंस से आम रस बनेगा? बोलो, अब तो समझ में आ गई बात है? इसी तरह मिट्टी पिंडी का ध्वंस से घट बना, अब कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, मिट्टी पिंडी ध्वंस से घट बना। तो ये सारी बात कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि ध्वंस किसी की उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकता है। फिर क्या होगा कारण? बोले परमाणु, पार्थिव परमाणु ही घट उत्पत्ति में कारण है।

भूख लगी तो अब खाना तो पड़ेगा ना, तो किसी गांव में पहुंचे, भाई हमको भूख लग रही है खाना दो, हम बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, भोजन की व्यवस्था करो। तो गांव में किसी ने कह दिया कि भाई हम आपको राशन देते, पकाओ खाओ, ले जाओ राशन। बेचारे राशन लेके चले गए, तो अग्नि खोजने के लिए जंगल में गए। तो वो जो एक वैद्य था, कविराज भी था वहां, एक वैद्य था, जंगल में लकड़ी खोजने गया। जो लकड़ी खोज रहा है वो कहता है ये कौन सी जात की लकड़ी है, ये कौन से पेड़ का है, इस लकड़ी का किस रोग में निदान होगा, कौन से औषधि बन सकता है, किस रोग के लिए काम आएगा, क्योंकि वो तो वनस्पति विज्ञान जानता था। लकड़ी लेने से पहले हजार बार सोचता था, नहीं नहीं ये तो मधुमेह के लिए काम आएगा, इसको जलाना नहीं चाहिए, छोड़ देता था। फिर दूसरा कहेगा ये लकड़ी किस जाति का है, फलाने जाति का है, हाँ ये किस में काम आता है, कौन से वनस्पति रसायन गुण है इसमें, क्योंकि वही जीवन भर वही स्टडी किया हुआ था। अरे ये तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा काम आने वाला है, इसको जलाना ठीक नहीं है, उसको छोड़ दिया। ले जी करते करते जंगल में घंटों हो गया, लकड़ी खोज ही नहीं पा रहा है वो, समझे कि नहीं। अब उधर वो एक व्यक्ति, पाक शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति, चावल लेकर बैठा है, है? तो अब आएगा लकड़ी लेकर पकाएंगे खाएंगे, वो आए आने का नाम नहीं लेता। उधर दूसरा जो था तर्कशास्त्री, उसको बाजार में नून तेल खरीदने के लिए भेजा था, किसी दुकान में गया नमक दे दो, नमक दे दिया, तो बोले तेल दे दो, बोले तेल दे दो, बर्तन लाए हो, बोले हां एक शीशी लाया है, कटोरी लाया है, उसने तेल दे दी, उसमें तेल लेकर आया, देखने के बाद तेल क्या घी समझ लो ना, उस जमाने में तेल कहां मिलता था, घी मिलता था, तो आजकल तो तेल भी शुद्ध नहीं मिलता है, उस समय तो प्योर घी मिलता था। घी लेकर आया कटोरी में, आते आते वो तो तर्कशास्त्री था, उसने तर्क करने लगा, ये घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम, ये घी का आधार कटोरी है कि कटोरी का आधार घी है, उसके दिमाग में तर्क आ गया। उसके दिमाग में क्या आ गया, घी कटोरी में टिका हुआ है कि कटोरी घी में टिका है, घृताधारे पात्रम व पात्राधारे घृतम, अरे तुम्हारे हाथ में घी भी है कटोरी है, प्रयोग कर लो ना, किसके आधार में कौन चीज है। बोले देखते प्रयोग करते, तो उल्टा लिया उसने जब उल्टा दिया तो सारा घी खत्म, लेकिन उसको घी माने नष्ट होने का दुख नहीं हुआ, बड़ा खुश हो गया, खुश होता हुआ आया, देख लो आज एक समाधान मिल गया हमको। कभी कभी मोहनीश प्रश्न करता है, अरे उसका सही समाधान मिलता है तो इतना खुश होता है, वो बहुत खुश होता है, महाराज वाह क्या आज संतोष हो गया मुझे, कई दिन से ये प्रश्न मुझे हैरान कर रहा था, आपकी कृपा से आज ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, बड़ा प्रसन्न होता है। उसको समय इतना नष्ट हो गया उसका दुख नहीं होता है दिमाग इतना खाली हो गया उसका भी उसको दुख नहीं है, उत्तर मिल गया वो प्रसन्न। इसी तरह वो नैयायिक को घी खत्म हो गया उसका दुख नहीं है, क्या हुआ, बड़ा खुश नाचते हुए आया, अरे क्यों प्रसन्न, घी कहां गया। बोले अरे घी के बात छोड़ो, पूछो नहीं, आज तो ऐसा मुझे समाधान मिला, उत्तर मिला, मतलब क्या हुआ, घी लेकर आ रहा था हमारे दिमाग में तर्क आ गया कि घी के आधार में कटोरी टिका है कि कटोरी के आधार में घी, घृताधारे पात्रम वा पात्राधारे घृतम, दिमाग में वो प्रश्न ने परेशान कर लिया। हमने कहा प्रयोग कर लो, तो मैंने ऐसा किया तो पता चल गया कि क्या हुआ, पात्राधारे घृतम, घी पात्र में टिका हुआ था, यह समाधान हमको मिल गया।

0: अब विकल्प नहीं आएगा कि घी कटोरी में है कि कटोरी घी में है, समाधान हो गया घी कटोरी में है। हाँ, फिर घी कहां है? बोले घी जाने दो ना, हमको समाधान मिल गया वो खुशी है भाई, समझे कि नहीं। शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ना घी आया ना लकड़ी आया, बोलो लकड़ी भी ला नहीं पाया, सब वनस्पति है, उसको जलाकर नष्ट तो नहीं करना चाहिए ना भाई, है? रामदेव जी के बाल क्या बाल बाल कृष्ण जी की जैसे वही होंगे बेचारे, गए होंगे लकड़ी लेने, सब रसायन वनस्पतिज्ञ है ना, वो तो बड़े भारी वनस्पतिज्ञ है, कुछ लकड़ी ला ही नहीं पाया, वो खाली रो रहा। वो घी लेने गया था वो भी नहीं ला पाया। लकड़ी क्यों नहीं लाए? बोले अरे पूछो नहीं, ये जंगल तो बहुत बढ़िया है, यहां एक फैक्ट्री खोलना चाहिए आयुर्वेद का, यहां तो जो भी लकड़ी मिल रहा है घास मिल रहा है सब रसायन है, सब आयुर्वेदिक औषधि मूलक है। क्या मैं अब ऐसे बेशकीमती रसायन को जड़ी बूटियों को आग लगाकर राख बनाए? ना वो लकड़ी ला पाए ना वो घी ला पाए, समझे कि नहीं। यही तो होता है ना, दार्शनिक लोग सब इसी में समय बर्बाद कर देते हैं, बस उपलब्धि कुछ नहीं। अब भूख लगाया और क्या करोगे? तब वेदांती था, उसने कहा अरे भाई भूख कहां लगी है। वेदांती था ना, वो अपना प्रयोग करने लग गया। उसने कहा भूख शरीर को लगती है कि भूख मन को लगता है कि भूख इंद्रियों को लगता है कि भूख प्राण को लगता है कि हाँ। बहुत विचार किया, करते करते अंत में उसने निश्चय कर दिया, अरे तुम लोग चिंता नहीं करो, भूख तो प्राण को लगती है, तुम प्राण है ही नहीं हो, खाना किस काम का, चिंता नहीं करो, उसको लगती हो तो लग, नहीं तो प्राण को, तुम असंग हो जाओ ना। उसने भी समस्या वहां भी उसने समाधान दे दी, ले जी हे भगवान बड़ा विचित्र अवस्था है। तीसरा ज्योतिष था तो उसने कहा चिंता न करो, इस समय हमारे लिए मुहूर्त प्रतिकूल है, जब सब मुहूर्त अनुकूल होगा, योग नहीं है बात करने का भोजन करने का, जिस दिन मैं देख रहा हूं पंचांग देख रहा हूं, देखो ये ग्रह इसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए घी गिर गया, ये ग्रह इसमें आने के कारण इसीलिए इस ग्रह के चलते लकड़ी नहीं मिल रही है, हैं? चिंता नहीं करो, ये ग्रह इसमें आएगा तो घी भी मिल जाएगा, ये ग्रह इसमें आएगा तो लकड़ी भी मिल जाएगा। अरे कब आएगा, कब आएगा वो? ले जी उसने भी अपना समाधान दे दिया, बैठो भूखे, क्या उड़ा दिया है, समझे कि नहीं। शंकराचार्य जी यही कटाक्ष कर रहे हैं, घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपिच धूमो अग्निरचल। नैयायिक लोग और कहते हैं अग्नि चाहिए था, अग्नि चाहिए था तो आग लेने के लिए गया था, एक और कोई आग कहां मिलेगा, तो विचार करने लगा, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्नी साहचर्य नियमो व्याप्ति, जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होता है, हैं? साहचर्य नियम है, ये व्याप्ति है, कहां धुआं है, कहां धुआं है, चारों तरफ धुआं देखते धुआं को खोजता हुआ चलने लगा। उसके पड़ोस में एक घर था, वहां भोजन पक रहा था, वहां नहीं जा रहा है अग्नि मांगने के लिए, हैं? वो तो धुआं खोजता हुआ घूम रहा है। अंत में दिखाई पड़ा एक पहाड़ के चोटी में कोई किसान, हैं? कोई पशु चराने वाला कोई किसान होगा, चरवाहा, वहां चराते हुए पहुंचा तो उसने अपने भोजन पकाने के लिए आग जलाई होगी, वहां धुआं दिखाई पड़ा उसको, हाँ, तो व्याप्ति स्मृति हो गई उसको, वो देखो वहां धुआं है, इसका मतलब अग्नि जरूर है, पर्वतो वन्यमान धूमत्वात् यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी साहचर्य नियमो व्याप्ति यथा महानसम। क्या उसने प्रयोग कर दी, तो अब वो पहाड़ चढ़ाई करने लगा, किसके लिए? अग्नि के लिए। अब कब लाएगा, कब भात पकेगा, उसने घी गिरा दी, उसने लकड़ी नहीं लाई, है? वो ज्योतिष पंचांग खोलकर बैठा है, मुहूर्त नहीं आ रहा है उसके सामने, वो अग्नि लेने गया तो पहाड़ की चोटी में गया, 5 घंटा चढ़ाई कर रहा है, क्यों? बोले अग्नि वहां है। कैसे कहा? बोले धुआं निकला। अरे मूर्ख, क्या मजाक है भाई। हे भगवान, घटो अमृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल पटो वा तंतुर्वा। देखो वेदांती क्या कहते हैं, तंतु परस्पर, तंतु संयोग पटा, ये पट क्या है, वस्त्र क्या है, तंतु संयोग वस्त्र है, समझे कि नहीं? तंतु परस्पर संयुक्त होंगे तो वस्त्र तैयार होगा। तो ये वस्त्र का उपादान कारण क्या है? नहीं, तंतु संयोग, कपास भी नहीं, तंतु भी नहीं, तंतु संयोग, परस्पर तंतु एक आपस में संयुक्त होते जाएंगे तब जाकर कपड़ा बनेगा। तंतु उपादान कारण नहीं, यदि तंतु उपादान कारण होता तो घर में जो धागा है वहीं कपड़ा बन जाता है। लेकिन धागा तो है, लेकिन धागा का परस्पर संयोग नहीं हो रहा है, वैष्णव और शैव नहीं हुए धागा, मैं हमेशा बताया करता हूं ना। तो कुछ सांप्रदायिक में सांप्रदायिक चिन्ह होता है ना, तिलक है, आप लोगों ने देखा है ना, कुछ रामानुजी हैं बड़े तिलक उर्ध पूर्ण लगाते हैं, उर्ध और यहां से लेकर, और निम्बार्की तो यहीं से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं निम्बार्की, करते हैं कि नहीं, देखा है कि नहीं, निम्बार्की लोग तिलक कहां से शुरू करते हैं, यहां से, हाँ नासिका से, और रामानुजी लोग यहां से त्रिशूल बनाते हैं, और सन्यासी लोग ऐसा, देखा है ना, उर्द्रपुंड तिरछापुंड, तो ऐसा लगाया होगा तो क्या पता चलेगा, ये जरूर शैवपंथी है, ऐसा लगा होगा तो क्या वो निश्चय होगा, ये कोई राम भक्त या विष्णु भक्त है, वैष्णव है नहीं? अब वैष्णव शैव शैव वैष्णव की झगड़ा चलती है, हम तो वैष्णव हैं भाई, हम तो शैव हैं, तो हम कभी कभी मजाक में कहा करते हैं, ये झगड़ा मत करो भाई, तुम जो हम जो है ना, दिन भर तो शैव होते हैं, रात को वैष्णव होते हैं, पता है कि नहीं? कैसे ऐसे सोएंगे तो क्या होगा, बोलो हमारी तिलक कैसी हो जाएगी ऐसे सोएंगे तो, वैष्णव का तिलक होगा कि नहीं, खड़े होंगे कि नहीं, करवट से ऐसे सोएंगे तो हम वैष्णव होंगे कि नहीं रात को, ना? दिन में हम शैव हैं, रात को हम वैष्णव हैं, आप विचार करो, वैष्णव लोग रात को सोएंगे तो क्या होंगे, शैव होंगे नहीं, रात को सोएंगे तो उनका तिरछा होगा कि नहीं, तिलक दिन में खड़ा होगा, रात में सोएंगे तो तिरछा हो जाएगा, और हमारा दिन भर तिरछा रहेगा, रात को सोते ही खड़ा हो जाएगा, तो कौन वैष्णव कौन शैव, ये तिलक को खड़ा और तिरछे को लेकर क्यों विवाद करते हो? अरे भाई, खड़ा और तिरछे के बिना तो तुम नंगे हो जाओगे, तुम्हारे जो कपड़े पहन रखे हो वो क्या है, तंतु संयोग है, तंतु संयोग कैसे हुआ है, एक धागा खड़ा है, दूसरा धागा तिरछा है, दूसरा खड़ा है, फिर तिरछा है, फिर खड़ा है, धागों के खड़े और तिरछे के अलावा और कुछ है इसमें है? बोलो, ये कपड़े में कुछ धागे तिरछे और कुछ धागे खड़े, खड़े और तिरछे सभी धागे को एक ही तरफ यदि रखा जाए तो कपड़ा बनेगा है? खड़ा जितने हैं उतने तिरछा भी होना पड़ेगा कि नहीं? आधा वैष्णव आधा शैव, ले जी, ये कपड़ा वैष्णव है कि शैव है? ये कपड़ा शैव है कि वैष्णव है, बोलो, दोनों है और क्या। अब शैव है करके इसका त्याग करना वैष्णवों के द्वारा होगा, और वैष्णव है करके इसका त्याग करना शैवों से होगा? जैसे शैव और वैष्णव मिलकर एक कपड़ा बना, तो दोनों को दो कपड़ा स्वीकार करना है, तो शैव को भी वैष्णव स्वीकार करना है, वैष्णव को भी शैव स्वीकार करना है। ये तिलक खड़े और तिरछे की तिलक की झगड़ा क्यों करते हो? ये खड़े और तिरछे की झगड़े में मत पड़ो। तो तंतु हो वा तंतु संयोग हो वा, कपड़े के प्रति कारण क्या है? तंतु है कि तंतु संयोग है। एक ने कहा मृत पिंड ध्वंस ही घटकार्य की उत्पत्ति के कारण है, दूसरा ने कहा तंतु संयोग ही पट उत्पत्ति में कारण है। एक कहता है कि वियोग कारण है, दूसरा कहता है संयोग कारण है। ले जी ये सब क्या है बेचारा, ये सब बुद्धि का विलास। शंकराचार्य क्या प्रहार कर रहे हैं इन लोगों में, खुद भी इससे अलग नहीं है वो। घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमोग्निरचल, पटो वा तंतुर्वा परिहरति किम घोर समनम, वृथा कंठ क्षोभम। अरे तंतु संयोग को कारण मानने वाले, घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम कहने वाले, क्या तुम्हारा ये तर्क वितर्क वूहा पोह जिस समय में घोरम और यमराज उपस्थित होगा तो उस समय क्या तुम्हारा तंतु और तंतु संयोग ये निश्चय क्या यमराज से बचा पाएगा? बोलो बचा पाएगा? जिस समय मृत्यु सामने आएगा वह घड़े का उपादान कारण मिट्टी या मिट्टी का पिंड या पिंड ध्वंस, ये बुद्धि क्या उस समय यमराज से तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? शंकराचार्य जी कह रहे परिहरति किम घोर समनम, घोरम माने संसार, घोर माने मृत्यु, क्या उससे तुमको बचा पाएंगे ये सब? जब ये तर्क वितर्क वहा पोह तुम्हें मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता तो वृथा कंठ क्षोभम, तो फिर बिना मतलब का जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर शास्त्रार्थ करके समय व्यतीत समय बर्बाद क्यों करते हो? हैं बोलो हैं? तो हमने पहले भी कहा है, पढ़ते थे ना हम लोग, तो कोई कहे पढ़ना चाहिए, हाँ बहुत मेहनत करके पढ़ा करो कहता है ना, तो हम कहते पठितव्यम तो मर्तव्यम, न पठितव्यम तो मर्तव्यम, फिर रटा रटम किम कर्तव्यम, पढ़ो तो भी मरना है न पढ़ो तो भी मरना है। फिर ये आई उन रे लिक भी क्या करना है, ये सब करके क्या करना है, है? देख लो। तो इसी तरह शंकराचार्य ने एक जगह भी कहा है ना, नहीं नहीं रक्षते डुक्रे कारण भज गोविंदम, ये उसी से संबंधित है। ये वृथा कंठ क्षोभम वहसी तरसा तर्क वचसा, बिना मतलब तर्क कुतर्क वितर्क करके वह पुह करके एक तो अपने प्रत्यक्ष कंठ को भी तुम दुखा लो सुखा लो, कंठ सुखा सुखा कर तुम ये सिद्ध करने अपना सिद्धांत सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो तुम जो सिद्धांत सिद्ध करोगे और शास्त्रार्थ में तुम विजय होगे तो वह विजय मृत्यु पर विजय कर पाएगा कि नहीं है? बोलो। शास्त्रार्थ में तुम्हें जो विजय मिलेगा वह विजय क्या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराएगा? तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो किसी ने पूछा कि फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने का उपाय क्या है, मृत्यु पर विजय पाने के उपाय क्या है महाराज? शंकराचार्य जी ने कहा पदाम्भोजम संभो, एक उपाय है भाई, क्योंकि उसका नाम है मृत्युंजय। शिव का नाम शास्त्रार्थ विजय नहीं है, शिव का नाम क्या है? मृत्युंजय। घटो वा तंतुर्वा इत्यादि शास्त्रार्थ करके शास्त्रार्थ विजय किया शिव ने, ऐसा कहीं नहीं है। तो भगवान शिव के पादाम भोज
1: शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमना स्तोत्र इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री धर्मानंद जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागो यः

स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। तो हम लोग भगवान की अहेतुकी अनुकंपा से स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्माण महोत्सव मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में स्वाध्याय प्रवचन भागवत कथा इत्यादि का समायोजन चल रहा है। निर्माण से निर्माण की तरफ कैसे बढ़ना, यही प्रत्येक प्राणी के जीवन का लक्ष्य होता है। चाहे आध्यात्मिक शरीर का निर्माण हो या भौतिक जो मकान दुकान का निर्माण हो, तो यहां पर जो प्रसंग चल रहा है अकांड ब्रह्मांड। अकांड शब्द का अर्थ होता है असमय में, ब्रह्मांड मतलब कि 14 भुवन। 14 भुवन भी अर्थ है, त्रैलोक भी। 14 का अर्थ है 7 नीचे और 7 ऊपर। नीचे के आपके हैं अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महाताल, पाताल, और ऊपर के भूलोक, भूवलोक। भू तो इस पर हम लोग बैठे हुए हैं, भुआ स्वह मह जन तप सत्यम। तो भूर भुआ स्वह, स्वह तो स्वर्ग लोक है देवताओं का, और आगे जो मह जन तप सत्यम है, ये 4 लोक ब्रह्म लोक के अंतर्गत आते हैं। तो 14 लोक को कहते हैं ब्रह्मांड। जिस प्रकार से किसान पहले खेत में हल चलाता है, हल चलाने के बाद सफाई करता है, सफाई करने के बाद बीज डालता है, बीज डालने के बाद जब विस्तार होता है तो उसकी सुरक्षा देखरेख करता है, जल का सिंचन करता है, और 4 महीने के बाद पुनः जब धान गेहूं पक जाते हैं तो वही किसान जिसने कि बीज डालकर उसको बोया, बपन किया, पालन किया, सुरक्षा किया, 4 महीने के बाद पुनः उपसंहार करता है। यदि वह किसान उपसंहार न करे तो अनाज सड़ जाएंगे, न उसके काम आएंगे, न किसी दूसरे काम आएंगे, नष्ट हो जाएंगे, गंदगी फैलेगी, महामारी फैल सकती है। तो समय से यदि बीज का वपन हो, उसका रक्षा हो, पालन हो हिंसक पशुओं से, और फिर पकने के बाद जब कटाई हो तो उचित कहते हैं, उसका सदुपयोग होता है। इसी प्रकार से यह जो ब्रह्मांड है, इसके एक निर्माण का काल होता है, दूसरा है पालन काल, रक्षा काल, तीसरा है उपसंहार काल। 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद उपसंहार का समय आता है, ये पूरा ब्रह्मांड पक जाता है। समझो कठोपनिषद में जब नचकेता को उनके पिता ने आवेश में कह दिया कि मृत्यवे त्वाम ददामी, बार बार नचकेता पूछता तत्त कस्मै माम दासषि, हे तात आप मुझको किसको देंगे? बूढ़ी बूढ़ी गायों को तो ब्राह्मणों को, साधुओं को दे रहे हैं, पर आप मुझको किसे देंगे? जब बालक बार बार जिद किया तो आवेश में आने के बाद नचकेता के पिता
गौतम कहते हैं कि मृत्युवि त्वा ददामि, मृत्यु को मौत को देता हूं। जब ऐसा आवेश में कह दिया तो जब नचिकेता जाने लगे तो पिताजी बहुत दुखी हो गए। तो पिता को वहां पर एक दृष्टांत देके नचिकेता ने समझाया, शस्मीव मर्त्यः जायन्ते पच्यन्ते च। शस्य बोलते अनाज को, धान को। जैसे अनाज समय से वपन होता है, पालित होता है, रक्षित होता है, बाद में नष्ट हो जाता है, ऐसे ये ब्रह्मांड समय से उत्पन्न हुआ, पालन हुआ, विस्तार हुआ, श्रृंगार हुआ, इसके बाद में पुनः इसका उपसंहार। तो यहां पर अकांड ब्रह्मांड क्षय को देख करके जब देखा यहां पर देवताओं ने, असुरों ने, कि असमय में ही ब्रह्मांड का क्षय होने जा रहा है, ब्रह्मांड के उपसंहार का समय निर्धारण किया है 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद महाप्रलय होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, कल्पना कर लो 43,43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी कहलाता है। उसमें हजार का गुणा कर दो, उतने दिन के बाद महाप्रलय होता है, महाप्रलय का समय आता है। परंतु यहां पर महाप्रलय के पहले ही अचानक जब देवताओं ने, असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकलने के बाद सभी घबराए, देवता लोग पहले इंद्र के पास गए, बचाओ बचाओ। असुर सम्राट बलि के पास गए, बचाओ। बलि ने कहा कि मैं भी नहीं बचा सकता, इंद्र ने कहा मैं भी नहीं बचा सकता। बलि और इंद्र मिलकर भगवान विष्णु के पास आए, बोले कि रक्षा मंत्रालय आपके पास है, जैसे रक्षा मंत्री हमारे देश में होते हैं ना, आप ही रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कि इससे तो मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूं, चलो हम सभी चलते हैं महादेव के पास। देखो भगवान विष्णु के उपासक देवता और मनुष्य है, कुछ गिने चुने असुर भी हैं, प्रहलाद इत्यादि बहुत कम, पर भगवान शंकर के उपासक सभी हैं, असुर भी हैं, दैत्य भी, दानव भी, मानव भी, निष्पक्ष सभी उपासना करते हैं। जब भगवान शंकर के पास गए कैलाश, तब जाकर भगवान शंकर ने उस हलाहल विष का समन किया, समाधान किया। इसके बाद क्रम से ऐरावत, उच्चैःस्रवा, कस्तुभमणि, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, वारुणी भी उत्पन्न हुआ, फिर अंत में अमृत कलश उत्पन्न हुआ। तो हमारे जीवन में भी ये मंथन चल रहा है। वहां पर तो देवता और असुर मिलकर मंथन किए, परंतु उसका अधिष्ठान भगवान विष्णु ही थे। वेदांत का सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोच्च ग्रंथ, अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य और चित्त सुखी, ये तीनों उच्चतम ग्रंथ माने जाते हैं। तो अद्वैत सिद्धिकार ने मंगलाचरण में वहां विष्णु भगवान को नमस्कार किया है, और विष्णु का अर्थ किया है व्यापक चैतन्य, यह जीव है, व्यापक चैतन्य है, यही समझो कि विष्णु है। क्योंकि विश्ली व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति होती है, वहां विष्णु शब्द का साक्षात ब्रह्म अर्थ किया, आत्मार्थ किया है, और वहां पर उसी तत्व को अद्वैत सिद्धिकार ने नमन किया है। तो यहां पर भी देवासुर जब मिल करके क्षीर सागर का मंथन करते हैं तो भगवान विष्णु हर जगह अधिष्ठान बनते हैं। सर्वप्रथम जब मंदराचल को लाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी जब देवताओं ससुरों से नहीं उठा तो भगवान विष्णु उठा करके गरुड़ पर लेकर के आते हैं। जब समुद्र में डाला
मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल नीचे जाने लगा। भगवान विष्णु कच्छप बनकर के अपने पीठ पर धारण किए। जब देवासुर मंथन करने लगे, मंथन करते करते थक गए, बेहोश हो गए, उस समय भगवान विष्णु स्वयं ही चतुर्भुज हो करके मंथन प्रारंभ किए, तब जाकर के अमृत सिंधित हुआ। तो यहां पर भी हमारे जीवन में मंथन चल रहा। देव शब्द का अर्थ है द्योतनात देवाहा, ये प्रकाश स्वरूप देवता है, और असुर है अंधकार में। ईशावास्य जो अथर्वेदीय उपनिषद है उसके तीसरे मंत्र में आता है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तान प्रत्य गच्छन्ति एके चात्म हनोजना। तो आसुर अंधकार के प्रतीक हैं, दैव प्रकाश के प्रतीक हैं, और हम जब से पैदा हुए तब से मंथन चल रहा है। ये रात ही समझो कि आसुर है, और दिन आपका दैव वृत्ति है, और रात दिन से ही छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक मंथन चल रहा है। यहां पर रस्सी है प्रारब्ध कर्म, उपनिषद में कहा है प्राण बंधन एव सौम्य मनः, ये जो जीवात्मा है प्राण बंधन वाला है, अपने प्रारब्ध कर्मों के बंधन से शरीर में है। तो प्रारब्ध कर्म की जो रस्सी है, विषम वासनाएं कामनाएं हैं, उसके द्वारा आपका मंदराचल शरीर है। क्योंकि किसी मंत्र का या पौराणिक कथानक का तीन अर्थ होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो जो पुराण में कथा है वह तो आदि दैविक है, परंतु अध्यात्म में हम विचार करके देखें तो ये दिन रात ही समझो कि आसुर और दैव है, इन दोनों के बीच में हमारा स्थूल शरीर जो अचल है, जड़ है, यही जो है मंदराचल है। और प्रारब्ध कर्म में जो वासनाएं कामनाएं हैं, इससे इसका मंथन चल रहा है। जब मंथन होता है तो अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक मतते मतते अंत में हम इतने थक जाते हैं, जैसे कि देवता भी थक गए, असुर भी थक गए, दोनों मूर्छित पड़ गए। ऐसे ही दिन रात रूपी इस दोनों पक्षों के द्वारा हमारा शरीर 100 वर्ष के पहले ही, हालांकि उपनिषद के अनुसार सामान्य आयु 100 वर्ष की बतलाई गई है, सदगुण समाह, परंतु सदगुण समाह उसके लिए है जो जीवन में सत्कर्म करता हो। अथर्वेद का जो ईशावास्य का दूसरा मंत्र है, कुरुवन नेवे कर्माणि जी विशिष्ट सद्गुण समाह एवं त्वयि नान्यथैतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि आप अच्छी तरह से 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं तो सत्कर्म करते हुए जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु काल के प्रभाव से 100 वर्ष तो क्या 50 पार करते करते ही बुढ़ापे के सारे लक्षण आ जाते हैं और हमारा शरीर इंद्रियां बिल्कुल मथ जाती हैं। और यदि आप समझकर मथेंगे तब तो नवनीत निकलेगा मक्खन, अन्यथा उल्टा होता है, पूरा दूध अपने शरीर पर आ जाता है। मथने का भी एक तरीका होता है, जिन माताओं ने बहनों ने कभी कभी मथा नहीं है उनको दे दो यदि मथने के लिए तो विपरीत हो जाता है। तो हम लोग भी ये जो काल है रात और दिन, इसके द्वारा प्रत्येक दिन मथित हो रहे हैं और अंत में शरीर इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि आंख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई भी नहीं पड़ता है, और पैर से ठीक से चला भी नहीं जाता है।
उस समय यदि आप सच्चे हृदय से भगवान विष्णु को पुकारें तो निश्चित ही भगवान चतुर्भुज से जब मथेंगे तो मंथन करने से इसी शरीर में जीवन नेव अस्मि नेव लोके अमृत का श्राव होगा। मरने के बाद किसने अमृत देखा है, परंतु भगवान भाष्यकार करते जीवन नेव, इसी जीवन में इसी शरीर से आप यदि ठीक से मंथन करें, भगवान पर समर्पित हो जाएं, तो निश्चित जीवन में अमृत का श्राव होता है। जब तक अहंकार होता है, जैसे कि देवताओं को अभिमान था, असुरों को अभिमान था कि हम बड़े पराक्रमी, बड़े तेजस्वी, बहुत बलवान है, तो अपने बल से उस मंद्राचल के द्वारा मंथन तो करते रहे और मंथन से सारी चीजें मिली, उनको लक्ष्मी भी मिल गई, धन भी प्राप्त हुआ, कस्तुभ मणि भी मिली, साजबाज के जो सामान थे, हाथी घोड़ा ही मिला, गाड़ी भी मिल गई और बारूणी भी मिली, बारूणी शराब को बोलते हैं, वो अभी उपलब्ध हुआ, सब पी के मस्त हो गए। इसके आगे भी मंथन जारी रहा, परंतु जब तक दोनों के मन में अभिमान था तब तक अमृत का आविर्भाव नहीं हुआ। जैसे दोनों बिल्कुल सिलेंडर बोल दिए, हाथ खड़ा कर दिए, अब हमारे बस की नहीं, अभिमान जब दोनों का समाप्त हो गया तब जाकर के भगवान विष्णु के सामर्थ्य तुरंत अमृत आविर्भूत हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में यह जो सीमित अहंकार है, अभिमान है कि अयम अहम अस्मि, यह मैं हूं, और यह अहंकार सबके मन में है, अत्यंत गरीब से गरीब हो या अमीर से भी अमीर हो, पंडित से भी महापंडित हो या महामूर्ख हो, सबके मन में अहंकार होता है। जैसे दर्पण के सामने कोई भी जाए, जो भी दर्पण के समक्ष जाता है वह अपने को संवार करके बहुत सुंदर समझता है, मैं बिल्कुल सबसे सुंदर हूं, कोई अपने कुरूप नहीं मानता है। जो काला कुल्टा व्यक्ति है वह भी दर्पण के सामने श्रृंगार कर लेता है अपने हिसाब से और सबसे अच्छा ही मानता है। दर्पण का स्वभाव है दर्पयति दर्पण, जो दर्प पैदा करे उसका नाम दर्पण है। दृप धातु अहंकार अर्थ में होता है, दृप धातु अभिमाने अभिमान अर्थ में है। अभी और मान दो शब्द है, अभी का अर्थ है सर्वतः और मान में मांग माने धातु है। मान बोलते परिमाण को, जैसे कि 5 किलो चावल है, 10 किलो गेहूं है, तो सर्वत्र सभी तरफ से आप अपने शरीर के परिमाण को मान बैठते हैं कि बस मैं तो पुरुष ही हूं, मैं तो भोला हूं, मैं तो नारी हूं। इस प्रकार के मान्यता विशेष का नाम है अभिमान, और यह अभिमान ये बिल्कुल समझो कि जैसे कि बिना सीमेंट के बालू से दीवार बना दें वैसा ही है। जरा सी हवा आई तुरंत बालों की दीवार गिर जाती है, ऐसे अभिमान है। परंतु मनुष्य जब तक अभिमान पाले रखता है तब तक अमृत की उपलब्धि नहीं हो सकती। सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, परंतु जो आपके जीवन का लक्ष्य है अमृत शांति, उसकी उपलब्धि असंभव है। ये जो आख्यायिकाएं होती है इसका तात्पर्य होता है सुख पूर्वक उस आत्मा का साक्षात्कार करना। भगवान शंकराचार्य बार बार कहते हैं सुख प्रतिपत्यर्था आख्यायिका भवंती, कहानियों के द्वारा कथा के द्वारा उसी दुर्गम तत्व को सुख पूर्वक बताया जाता है। तो यहां पर जो देवासुर संग्राम है इसके द्वारा मनुष्य के जीवन को चित्रित किया कि हम अपने पुरुषार्थ से, शारीरिक बल से, ऐन्द्रिक बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं पर शांति नहीं मिल सकती।
हम भले ही शांति के संसाधन को एकत्रित कर ले, मकान बना ले, धन कमा ले, पद में प्रतिष्ठित हो जाए, मान सम्मान को प्राप्त कर ले, फिर भी जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति, अशेष दुखों से छुटकारा पाना, यह नहीं मिल पाता है। इसके लिए तो पूर्ण रूप से समर्पण की आवश्यकता होती है। तो यहां पर भी अकांड ब्रह्मांड छह चक्र देवासुर कृपा, जब असमय में कोई अघटित घटना घटती है तो मनुष्य को परेशानी हो जाती है। असमय मतलब बिना समय के। एक महात्मा जी किसी के घर आए, अचानक जब पधारे तो बड़ा ही अच्छे ढंग से भक्त ने स्वागत किया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद आरती उतार कर दक्षिणा दे के विदाई किया, कहा महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिए कि जा तेरा दादा मरे, तेरा बाप मरे, है ना, कि तेरा बेटा मरे, तेरा पोता मरे। आशीर्वाद दे के चलने लगे। अब सब परेशान, बोले कि महाराज जी हमने सेवा में कोई गलती तो नहीं हो गई, आप आशीर्वाद दे रहे कि श्राप दे रहे। महात्मा जी बोले देख भाई आशीर्वाद है श्राप नहीं। बोले क्यों? बोले अकांड ब्रह्मांड छह न हो इसलिए हमने ऐसा आशीर्वाद दिया। असमय में दादा जीते रहे, बाप जीते रहे या तू न मर जाए, इसलिए हमने कहा मौत तो तेरे घर में आनी है पर अकाल मृत्यु नहीं होगी। पहले तेरे दादा पर दादा का शरीर छूटेगा, इसके बाद तेरे पिता का, इसके बाद तेरा, इसके बाद तेरे अपने पुत्रों का। तो देखो संतों के वचन बड़े जो है ना व्यंग्यात्मक होते हैं। और यदि मान लो दादा जीते हो, पिता जीते हो और पोता चल बसे तो कितनी तकलीफ होती है। तो यहां पर भी जो प्रलय का समय निर्धारित है 43,20,000 वर्ष, में 1,000 का गुणा कर दो, उतने दिन के बाद महाप्रलय होना चाहिए, पर बीच में जब प्रलय होने लगा तो बेचारे देवता ही परेशान और आसुर भी परेशान। ऐसे ही हमारे जीवन में ये रात दिन रूपी दैवी वृत्ति आसुरी वृत्ति के द्वारा जो आपके शरीर रूपी मंदराचल का वासना रूपी रस्सी से जो मंथन चल रहा है, तो मंथन होगा तो निश्चित हलाल भी निकलेगा, ऐश्वर्य की उपलब्धि भी होगी, पर अमृत को पाना होगा तो भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है। 14वां श्लोक अकांड ब्रह्मांड छय

0: जब देवता और असुर दोनों असमय में ब्रह्मांड के नाश को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, उस समय भगवान शंकर कृपा करके हलाहल विष का पान किए। हमारे भी जीवन में जब हलाहल विष के समान ये दुख का जहर होता है, उसको केवल भगवान शंकर ही हजम कर सकते, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह अधिक दुख को सहन कर सके। जब बहुत अधिक दुख आता है तो या तो हार्ट अटैक हो जाता है या मूर्छित हो जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो आप सामान्य दुख को तो सहन कर सकते,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 32.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Bhakti Shakti Samta Vasal Me Mata Vasni Me Vehno Aat Sarubandhu Taittiriya Aranyaki कि यह जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसको लेकर के प्रसंग चल रहा है कि जब जीवन के अंतर्गत हमारे में वो बल आ जाता है जिस बल के द्वारा हम अपने लक्ष्य को लक्षित कर सकते हैं, ऐसे उस बल की चर्चा की, उसके लिए याचना की, उसके पश्चात संकेत किया, बल प्राप्त होने पर भी जब तक हमारे जीवन के अंतर्गत स्वयं प्रसादता नहीं आती, आचार्य आदि की प्रसादता नहीं होती, शास्त्र की प्रसादता नहीं होती, परमात्मा की प्रसादता नहीं होती, तब तक लक्ष्य का हम मार्गन करते हुए भी उस लक्ष्य को लक्षित नहीं कर पाते, तब तक हमें उसकी जो है प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए संकेत किया कि आचार्य आदि की अपनी आदि प्रसादता होना आवश्यक। अपनी प्रसादता को और आचार्य की प्रसादता को यहां विशेष रूप से संकेत किया और उसको लेकर के ही संकेत करते हुए कहा कि जो विस्पष्ट रुचि ना, तो विस्पष्ट रुचि शब्द से यही संकेत किया कि विस्पष्ट रुचि क्या है, तो जिस रुचि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। रुचि तो हमारी है, जिज्ञासा हमारी है, लेकिन उस जिज्ञासा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, अर्थात उसमें न तो कोई संशय है, न कोई विपरीत भावना है और न असंभावना है। इस प्रकार से भावना, विपरीत भावना, संशय आदि से रहित होकर के जब हम अपने लक्ष्य की जिज्ञासा करते हैं तो इसका नाम ही है विस्पष्ट रुचि नाम। और ये जब हमारे अंदर आ जाता है तब ही सच्ची जिज्ञासा हमारे जीवन में आती है, सच्चा बल आता है और उस बल के अनुसार जब हम मार्गन करते हैं तो संयोग के लिए, जैसे नेत्र में देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती, और वैसे ही यहां पर कहने लगे उस लक्ष्य को लक्षित करने के लिए अपना बल होते हुए, अपनी जो है प्रसादता होते हुए, और जब आचार की प्रसादता हो जाती है तो फिर हमें वह अपना लक्ष्य लक्षित करने में सुगमता हो जाती, क्योंकि वह जो शास्त्र है, शास्त्र की प्रसादता कब होगी, तो शास्त्र की प्रसादता कराने में आचार ही सहयोगी है। जब तक आचार्य इसकी गुत्थियों को नहीं खोलता तब तक जो है शास्त्र की प्रसन्नता भी हमारे ऊपर नहीं हो पाती, और इतना सब हो जाने के पश्चात फिर अंत में आती है उस परमात्मा की प्रसादता। और जब ये तीनों प्रसादताएं इकट्ठी हो जाती हैं तो परमात्मा की प्रसादता तो हो ही जाती। इसलिए श्रुति के अंतर्गत जो संकेत किया गया, कहा पहले तो ये कह दिया कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, तो बल चाहिए, बल हो गया। अब कहने लगे बल होने के बाद भी यदि नहीं मिलता, कहा ऐसा नहीं, यदि ये तीनों प्रसादताएं इकट्ठी हो गई तो कहने लगे फिर क्या होता, तो संकेत कर दिया इमे वैश विरुड़ते तेन लभ्य, संकेत कर दिया, कहा वो उसी को प्राप्त होता। कहा किसको, कहा जिसने उसका वरण कर लिया, जिसने उसी को अपना लक्ष्य बना लिया, उसी को वह प्राप्त हो जाता। दोनों तरफ से इसका अर्थ लिया जाता, अथवा उसने जिसको वर्ण कर लिया वह, या उस ईश्वर ने जिसको चयनित कर लिया तो कहने लगे उसे भी प्राप्त हो जाता। कहा प्राप्त होता तो कैसे होता, तो वहां क्या कहा, विव्रते स्वयं, माने वो अपने को उसके सामने प्रकट कर देता है, अपना अपरोक्ष करा देता, तनुष्वा ऐसा करके वहां संकेत कर दिया। तो ये जो चर्चा की गई उसको लेकर के ही यहां पर संकेत कर रहे हैं कि शास्त्र का जो सार है, शास्त्र का जो तत्व है, शास्त्र की जो यथार्थता है, या शास्त्र का जो रहस्य है, इसलिए कहा तैतीरक सारस्य। तो इस तैतरीय उपनिषद का सार क्या है, इसका तत्व क्या है, इसका यथार्थ क्या है, तो आगे चल के प्रसंग आएगा। उस प्रसंग में भी महाराज जो वरुण हैं, उन वरुण ने भृगु को जो है उस सार को बतलाने के लिए और संकेत किया, और संकेत करते हुए क्या कहा, तो आगे चल करके आगे की वल्ली में चर्चा आएगी। वरुण ने जब भृगु को अधिकारी समझा तो अधिकारी समझ करके वरुण से संकेत किया कि यतो वाय इमान भूतान जायन्ते एन जातान जीवन्ति यत प्रियन्ते अविसंबिसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। संकेत किया कि वास्तव में वह ब्रह्म या सार या तत्व क्या है, तो संकेत करते हुए कहा कि वह ब्रह्म जो है उसके लक्षण की, सीधे सीधे उसका निर्वचन नहीं हो सकता, इसलिए उसे अनिर्वचनी भी कह दिया। तब संकेत किया कैसे, तो संकेत करते हुए बतलाया कि जहां से यह संपूर्ण सृष्टि होती है, इमान भूतान जायन्ते, ये जितने भी जो है यह करके आप जानने वाले हो, तो यह रूप जगत जहां से होता है, इमान भूतान जायन्ते, और कहने लगे जहां से उत्पन्न होकर के जिसमें जो है अनुप्राणित होता है, जीवित रहता है, स्थित रहता है, और कहने लगे अंत में उसमें ही लीन हो जाता। ऐसा जो कारण है वह कारण ही क्या है, कहा ब्रह्म है। ऐसे उस ब्रह्म को कहा क्या करो, तो कहा इन लक्षणों के द्वारा उसकी खोज करो, देखो कि वस्तु का स्रोत क्या है, वस्तु कहां से आ रही और वस्तु की स्थिति किसमें हो रही और वस्तु का अभाव किसमें हो रहा। इन लक्षणों के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा, इन पदों के द्वारा उसका जो है आप अन्वेषण करो, उसकी खोज करो। और इतना ही नहीं कहते हुए, यदि गीता को कहा गया सर्वोपनिषदो गावो, संपूर्ण उपनिषदों का जो है क्या है, उपनिषदें तो सार हैं ही, लेकिन सार का भी सार, सार का भी, जैसे घी क्या है, सार है, लेकिन उस घी में भी सार विद्यमान है, तो घी में सार क्या, जैसे कल चर्चा की मंड, मंड क्या है, उस घृत का भी सार है, सीता से प्रश्न में इसकी चर्चा आती। तो ऐसा जो सार है, कहने लगे वह सार ही, तो तैतरीयक जो उपनिषद है वो सार है और उसका भी सार, और उसके सार को किसने निकाला, तो कहा भगवान कृष्ण ने, और भगवान कृष्ण ने निकाला तो किस रूप में निकाला, कहा गीता के रूप में, और गीता के रूप में जब उन्होंने निकाला तो निकाल करके जब उन्होंने सार दिया तो उन्होंने क्या कहा, सार में से सार निकाल के दिया तो क्या कहा, जैसे यहां पर भृगु के प्रति वरुण कह रहे हैं कि उसको कैसे प्राप्त करना है, उसका मार्गन कैसे करना है, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। 15वें अध्याय को अक्सर लोग भोजन के समय भी बोलते हैं और लगभग लोगों को याद भी है, तो उसके अंतर्गत देखें भगवान क्या कहते, भगवान ने कहा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस पद को, उस लक्ष्य को लक्षित करो, उस लक्ष्य को खोजो, उसका अन्वेषण करो, उसका मार्गन करो। तथा पदम तत्पर मार्गितव्यम, कहा कौन सा पद, तो विशेषता भी बतला दी, क्योंकि प्राणी मात्र की स्थिति क्या है, बगैर लाभ की हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। तो लाभ भी दिखला दिया, लाभ क्या दिखलाया, यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूया, जिसमें जाकर के

शरण लो, ध्यान देना। अर्जुन से भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जो है ऐसे उसकी खोज करो और ऐसे उसकी शरण, ये तो कहा उसकी खोज करो, लेकिन ये नहीं कहा कि उसकी शरण लो। तो कहने लगे फिर क्या कहा? तो क्रिया है प्रपद्ये। प्रपद्ये क्रिया जो है उत्तम पुरुष की है। प्रपद्ये क्रिया किसकी है? उत्तम पुरुष की है। संस्कृत के व्याकरण में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सात अहूते करके माने ओह, वे दोनों, वे सब, ये सब आता है। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, ये आता है। और उत्तम पुरुष में क्या आता? मैं है, ये हम दोनों या हम सब, ये आता। तो जब क्रिया वहां पर उत्तम पुरुष की है तो उस क्रिया के साथ संबंध भी उसी पुरुष के कर्ता का लगेगा। अब भगवान ने कहा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। ऐसा जो पुरुष जो समस्त इनका कारण है, आदि शब्द से संकेत कर दिया, ऐसे उस पुरुष को क्या है? प्रपद्ये। तो प्रपद्ये के साथ अहम लगेगा, मैं उसके प्रपदों को ग्रहण करता हूं या मैंने उसकी शरण ली। ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम शरण लो, ये बड़ी विलक्षण बात है। मैं उसकी शरण लेता हूं, ये भगवान ने कहा। और कहा किसकी शरण लेते हो? तो ठीक जो वरुण ने भृगु के प्रति कहा उसी का ठीक ठीक रूप जो है उपस्थित कर दिया। क्या कहा? यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ये सारी की सारी जो फैलाव है, ये सारी की सारी जो प्रवृत्ति हुई है वो कहां से हुई? यतः, यस्मात् कारणात्, जिस कारण से हुई है, जिस तत्व से हुई है, ऐसे उस तत्व की ही मैं शरण लेता हूं, मैंने शरण ली। और कैसा है तत्व? तो विशेषता बतला दी कि जिस तत्व को या जिस पद को प्राप्त करके पुनः जो है मृत्यु नहीं होती। और ऐसे हुई उस पद के लिए तुम भी क्या करो? तो मार्गन करो, ये शब्द का। तो देखो कोई व्यक्ति व्यवहार में भी जिस चीज का प्रयोग कर लेता है और प्रयोग की हुई वस्तु का ही अनुभव जब दूसरे को बतलाता है तो दूसरे के लिए भी सुगमता हो जाती और वो उस चीज को समझ भी लेता और वो भी समझाने में समर्थ होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये संकेत किया। अब आप लोग कहोगे कि भगवान को, कृष्ण को शरण लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई और उन्होंने शरण क्यों ली, ये सारे प्रश्न आते। इसके विषय में जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, पितामह भीष्म जो है सरसैया पर लेटे हुए और युद्ध की सारी गतिविधियां वो जो है सरसैया पर लेटे हुए ही प्राप्त कर रहे हैं। अब जब युद्ध पर समाप्त हो गया, महाराज युधिष्ठिर को जो है राजा पद पर जो है राज्य का अभिषेक कर दिया गया, राजा बन गए। अब जो है युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण आदि को, भाइयों को साथ लेकर के और पितामह भीष्म के पास पहुंचे। जब पितामह भीष्म के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके प्रति अपनी जो संपैथी होती है वो व्यक्त की और संपैथी व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए उन्होंने निवेदन किया और निवेदन करते हुए कहा, महाराज मैं जिस पद पर आया हूं, जिस स्थल पर आया हूं, उस स्थल से, उस पद से मैं इस लोक के लिए ठीक ठीक कार्य कर सकूं, इसके लिए धर्म क्या है, राजनीति क्या है, लोकव्यवहार क्या है, ये सारा उपदेश मुझे आप दीजिए, इसके विषय में मुझे आप बतलाइए। जब ऐसा युधिष्ठिर ने कहा तो पितामह भीष्म ने लोकव्यवहार, धर्म, राजनीति आदि सारी प्रक्रिया का काफी लंबा वर्णन किया।

0: वो वर्णन भी कई दिन तक चला, और जब वर्णन कर दिया तो इन सब वर्णनों को सुनने के बाद युधिष्ठिर के मन में एक जिज्ञासा हुई, और युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा हुई तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु ये सब तो आपने बतला दिया और ये सब इस लोक तक सीमित है और अधरवादी से ज्यादा परलोक, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे हृदय में ये जिज्ञासा है कि इस लोका और अलोक आदि जो है इन दोनों से जो रहित स्थिति है और जहां पर मृत्यु की गति नहीं है, ऐसा जो तत्व है उस तत्व के विषय में आपने मुझे कुछ भी नहीं, तो मैं चाहता हूं कि उस तत्व के विषय में मेरे लिए आप कुछ निर्वचन करें, उस तत्व के विषय में मुझे बतलाएं। या जो परम शिव परम कल्याण करने वाला जो है, ऐसे उस शिव के विषय में मुझे बतलाएं। ये जब जिज्ञासा उन्होंने व्यक्त की, पितामह भी चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। कुछ ठहर करके उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, बात यह है कि जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का सटीक जवाब जो तुम्हारे हृदयंगम हो सके, ऐसा निर्वचन मैं नहीं कर सकता। मैं करूंगा तो, लेकिन वो तुम्हारे हृदय को छू जाए, तुम्हारे हृदय में उसकी स्थिति हो जाए, ऐसा निर्वचन मैं करने में असमर्थ। यदि इसके विषय में आप जानना चाहते हो, तो भगवान कृष्ण तो पास में थे, तो इसके विषय में आप कृष्ण से पूछिए, कृष्ण ही इस चीज को बतला सकेंगे। क्यों? कृष्ण ने इस चीज का अनुभव किया, कृष्ण ने स्वयं शरण ली है, इसलिए कृष्ण ही उस शरणापन्नता का क्या रूप है इस चीज का निर्वचन कर सकते हैं। उस मार्ग को फिर उस तरह से तुम यदि मार्गन करोगे तो तुम्हें भी उस कल्याण की प्राप्ति हो जाए। अब जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा हुई और आश्चर्य भी हुआ कि भगवान कृष्ण ने शरण कब ली और इनको शरण लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और ये जिज्ञासा जब हुई तो विशेष उत्कंठा हुई, विशेष उत्सुकता हुई, और उन्होंने जानना चाहा तो कहा, महाराज आप जो कह रहे हैं ये बात मेरी समझ में नहीं आ। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर भगवान ने जो शरण ली और किस प्रकार से ली, इसको आप इनसे सुनेंगे। और एक बात और बतलाऊं, भगवान कृष्ण ने शरण ली और इसके विषय में वहां निर्वचन भी किया कि अश्वत्थामा ने भी उस तत्व की शरण ली थी, उस शिव के उपासक अश्वत्थामा भी थे। इसलिए वहां प्रसंग महाभारत में आता है कि जिस समय अश्वत्थामा पांडवों के उस कैंप में जाना चाहता है और उस पांडव वंश का संहार करना चाहता है, और जब ऐसा करना चाहता है तो उसने भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव ने जो है जानना चाहा तो मुझे क्यों बुला रहे, मेरे से तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो। तो अश्वत्थामा ने कहा कि प्रभु मैं इस समय पांडवों के पंडाल में जाना चाहता हूं, उनके कैंप में जाना चाहता हूं, और मैं उस पांडव वंश का संहार करना चाहता हूं, इसलिए आप बाहर से मेरी रक्षा करें, मैं तो उस कैंप में जाऊंगा लेकिन मेरी रक्षा अब आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। भगवान शिव ने कहा, अश्वत्थामा ये ठीक है आपने मेरी शरण ली, लेकिन मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन बात यह है कि जहां कृष्ण होंगे और जहां अर्जुन होगा वहां पर जो है मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं। कहा, क्या मतलब? कहा, शरण तुमने भी ली है लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने भी मेरी शरण ली, और जैसी कृष्ण ने शरण ली है वैसी किसी ने नहीं ली, इसलिए जहां कृष्ण होंगे जहां अर्जुन होगा वहां मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा जब कहा तो ये सब सिद्ध क्या कर दिया कि भगवान ने शरण ली। अब प्रश्न हुआ कि भगवान ने शरण कैसे ली, तो युधिष्ठिर के प्रति संकेत किया, इनसे जाऊं भगवान के प्रति युधिष्ठिर ने संकेत किया कि प्रभु आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बतलाने लगे। ये चर्चा जो है भागवत आदि में नहीं, पुराण के अंतर्गत है, लेकिन ये चर्चा आपको शिव पुराण में मिलेगी। शिव पुराण के अंतर्गत ये चर्चा आती है, वहां पर इसका निर्वचन किया गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर एक बार सत्यभामा मेरी सेवा कर रही थी, सेवा करते हुए उसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, कहा कि प्रभो पुम नाम नरकः त्रायते पुत्रा, तो कहा हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं, अब हमारे कोई पुत्र नहीं है। ऐसा जब उसने कहा तो भगवान समझ गए पुत्र की इच्छा। भगवान ने कहा सत्यभामा तुम्हारे पुत्र तो है ही नहीं। जब कहा कि पुत्र है ही नहीं तो उसका मन खिन्न हो गया। जब मन खिन्न हो गया, उदासीनता आ गई, तो उसने जानना चाहा कि क्या कोई उपाय नहीं। तो भगवान ने संकेत किया कि उपाय एक है, यद्यपि नियम तो ये है कि विधि के लिखे हुए अंक को कोई मेट पाता नहीं, लेकिन फिर भी वहां एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है, तो कहने लगे मेटत कठिन को अंक भालु। भगवान शिव के विषय में कहा यदि भगवान शिव की अनुकंपा हो जाती है, यदि भगवान शिव की प्रसन्नता हो जाती है, तो भगवान जो है उस विधि के लिखे हुए अंक को भी मेट देते, परिवर्तित कर देते। तो कहने लगे फिर इस उपाय को करो। कहा इस उपाय के लिए उनके शरण होना पड़ता है। तो सत्यभामा ने कहा फिर आप शरण लीजिए। भगवान चुप हो गए। भगवान से सोचा कि इसकी इच्छा को पूरा करना। भगवान जो है ऐसा जब समय उनके सामने आया रूप, तो भगवान ने केदारनाथ में पहुंचते। केदारनाथ के ऊपर अभी भी लोग बताते वो स्थल है जहां पर उपमन्यु ने भी तप किया था। उपमन्यु जहां पर तप करते रहे, उपमन्यु का जहां पर वास था, भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके शिव परायण होते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो उपमन्यु से ही उन्होंने मार्ग का निर्देश दिया। उपमन्यु ने जो है उन्हें उस भगवान शिव की शरण के लिए मार्ग का निर्देशन किया, और मार्ग का निर्देशन किया तो भगवान कृष्ण वहां रहे, और वहां कृष्ण रह करके क्या किया, तो प्रारंभ में तो जिसे आप पूजा कहते अर्चना कहते हो वहीं से प्रारंभ होता। भगवान ने भगवान शिव की जो है आराधना की, पूजा की। अब पूजा के लिए पुष्प चाहिए, नैवेद्य चाहिए, ये सब सामग्री चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से ही पुष्पों को वहां पर उगाना, अपने हाथों से पुष्पों का चयन करना, अपने हाथों से ही पुष्पों का जो है अर्पण करना, इस प्रकार से भगवान जो है शिव की आराधना करने।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: देखो आठवां पाठ करो, सातवां करेंगे। त्रिरुन्नतम
3: त्रिरुन्नतम
2: स्थ उत्थाप्य समम शरीरम

0: एक ध्यान दो कि विधि बतला रहा है और महत्व बतला रहा है। हाँ बतलाता हूँ। हाँ यहाँ रह गया। यथे शिका तुला मग्नो प्रोतम प्रदुयता। देखो एक इशिका होता है, इशिका उसमें घास होता है, उसके अंदर तुला, तुला माने कापूस जैसा होता है, कापूस है नहीं बात। जथा इशिका तुलाम अग्नो प्रदुयता, अग्नि में डाल देता है तो अग्नि उसको जाला करके भस्म कर देता है नहीं बात। तुला कहते क्या, कापूस को एक प्रकार का है नहीं बात। एक तुला होता है शिमर का, शिमल होते हैं ना, बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसमें, जो उसमें तकिया बनाता है। हाँ वो नरम होता है, उसका बहुत महंगा होता है, रेशम जैसा कापूस होता है, रेशम का। तो कहते जथा इशिका तुला मग्नो प्रोतम, अन्य अग्नि में डाल दिया जाता है, प्रोतम माने डाल दिया जाता है, तो क्या करता है जो अग्नि जाला करके भस्म कर देता है नहीं बात। तो ऐसे ही कहते हैं प्रदीयत एवं ही अश सर्वे पापान प्रदीयते, ठीक इसी प्रकार कहते हैं। इसके तमाम पाप रूपी जो कर्म है, तमाम कर्मों को जला करके भस्म कर देते। अब यह समझ लेना पाप रूपी कर्म को जलाता है तो पुण्य रूपी कर्म रह जाएगा क्यों? पुण्य क्यों जलाना चाहते हो आप लोग? नहीं, मान लो आपके अभिष्ट है, पाप दुख देता है, पाप जो है ना क्या करता है, दुख देता है, इसीलिए पाप को नाश करना तो अभिष्ट है, पर पुण्य तो सुख देता है, तो पुण्य को जलाना तो अभिष्ट नहीं है। बात यह है, देखो चाहे पाप और पुण्य हो, जैसे पाप कर्म भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ता है ना, ऐसे पुण्य भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो जन्म ही दुख का कारण है, पापों से पुण्य हो। इसी में आया था, पहले आया था, आपको ख्याल है कि नहीं, पंच दुखों का वेगा है नहीं बात। पांच दुखों का वेग है, जन्म दुख, व्याधि दुख, जरा दुख, आगे नहीं मृत्यु दुख, ये पांच दुख का वेग हरेक के जन्मों के साथ लगा हुआ है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, समझो कि नहीं, जो भी जन्म लेगा, तो गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, गर्भावस्था में दुख आएगी नहीं, गर्भ दुख भयंकर दुख होता है, गर्भावस्था का पीड़ा, गर्भ दुख, फिर गर्भ जन्म लेते हुए दुख, जन्म दुख, वो तो भयंकर दुख होता है, माँ तो मर ही जाती, कभी कभी कोई मर जाती है, इतना पीड़ा होती है, जन्म दुख, फिर व्याधि दुख, व्याधि स्थैना संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन आरोग्य भूमि अनवस्थितित्व आदि, ये सब दुख है, योग दर्शन ने बताया। तो गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख और मृत्यु दुख, ये मृत्यु दुख, मृत्यु काल में भी भयंकर दुख होता है ऐसा कहते हैं, अभी तो हमको तो देखने में नहीं आता है, झट करके धक्का दिया था मर गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फलाना हो गया, ढंग का हो गया, अभी बात करके घर में गया, पानी पीते मर गया, गजब की बात है। अभी भगवान ने ऐसा ऐसा सट काट के मृत्यु दे दिया, अभी डरता नहीं कोई मारने का, वो बीमार होकर खाटिया में पड़ा रहे ना डरता है, सब कहते महाराज अभी रोगी होकर खाटिया में पड़ा रहना, हाँ ये बड़ा भारी संकट लगता है, मर जाऊं तो अच्छा है एक साल एक झटके से, अरे बात। तो दुख जो है ना पंच दुख है, ये दुख किसका फल है? कर्म का फल है। और तुम जो सुखी हो, हाँ पुत्र पुत्र आदि सुखी हो, धन से सुखी हो, फलन से सुखी हो, हाँ जन से सुखी हो, ये सुख है। ये सुख किसका फल है? कर्म का, पुण्य कर्म का फल है। अब तुम कहोगे हमारा जो है ना वो दुख को जला दे, हाँ दुख का कारण जो है पाप है, पाप को जला दे, पुण्य रहेगा, हम सुखी रहे बने रहेंगे। तो उसके उसके भोग करने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा, तो जन्म ही दुख है सबसे बड़ा। जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मृत्यु दुख जो है ना, ये पंच दुख का वेग है, जगह है। ये कहते हैं जथा इसी का तुला मग्नो, जिस प्रकार इसी का अग्नि में डाला हुआ तो इसी का है नहीं बात, अग्नो प्रोतम प्रदुयते है नहीं बात, जला देता है, प्रदुयते माने जला देता है। एवं ऐसा सर्वे पाप माना प्रदुयते, उसी प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पापों को जला करके, हाँ तो ज्ञानी को पाप जलाता पुण्य नहीं जलाता ऐसा नहीं समझना, हाँ सब ही जाएगा। क्यों? पाप पुण्य दोनों अज्ञान का कार्य है, पुण्य भी करती हूँ अज्ञान से, पाप भी करती हूँ अज्ञान से, है नहीं बात। दोनों का कारण क्या? अज्ञान अविद्या, है नहीं बात। ज्ञानाग्नि सर्वकर्मा ने भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञानाग्नि सर्व कर्म को नाश करता, ज्ञानाग्नि। तो देखो यहां भगवान ने ऐसा नहीं बताया पाप कर्म नाश करता है, संचित कर्म नाश करता है, प्रारब्ध कर्म नाश करता है, अन्य बात ऐसा कोई भगवान ने नाम नहीं लिया, सर्व कर्माणि। अभी उस नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, धर्म हो, अधर्म हो, संचित कर्म हो, क्रियमान कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, कोई भी कर्म क्यों ना हो, सब कर्म अविद्या का है, याद रखना। अविद्या है, अज्ञान है तो कर्म है, कर्म है तो कर्म का फल है, अन्य बात। तो ज्ञान आगे सर्व कर्म ने भस्मसात कुरु दे देता, इसीलिए कहता है ज्ञान आग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुपनीतम बुधा, आया थे नहीं, ज्ञान आग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, वो पंडित विद्वान लोग, विद्वान लोग विवेकी पुरुष उनको पंडित कहते हैं। पंडित की परिभाषा बनाया गीता में, किसको? दग्ध कर्माणम, जिसने ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा समस्त कर्म को जला दिया वही पंडित है, याद रखना। तो तुम पंडित हो, पंडित, अच्छा पंडित शब्द का कई परिभाषा गीता में भगवान ने बतलाया। एक तो विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है, गृह नहीं सुनी जी वह सभा के सब पंडित समदर्शी न, ये समदर्शी को पंडित कहते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने कर्म को जला दिया, दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा, अशिक्षा न शोषस्तम प्रज्ञा वादान से भाषण से कथा सुन कथा सुन करना न शोषण से पंडित, पंडित लोग शोक नहीं करता, तुम शोक करते हो तो पंडित नहीं हो, शोक नहीं करते हो तो पंडित हो, सीधी बात यह। शोक होता किसमें? अज्ञान से। शोक कहा होता है? शोक स्थान सहस्राणे भय स्थान शताने से दिवसे दिवसे आभिषण थे मूढ़ा ना पंडित, शोक स्थान सहस्राणे भय स्थान शताने से दिवसे दिवसे आभिषण थे मूढ़ा न पंडिता। संसार में घर से निकालो, बाहर घर में बाहर आओगे नहीं आओगे कौन पता, स्मशान में जाओ, मुर्दा के लिए शोक करते हो, जाओ स्मशान में बैठो, दिन भर रात भर जिंदगी भर रोते रहोगे। यहाँ मुर्दा ही जलता है, काशी में मणिकर्णिका घाट है, 24 घंटा मुर्दा जलती है, वहाँ महाश्मशान माना जाता है, वहाँ मुर्दा जलना ही चाहिए। तो मुर्दा के लिए शोक करोगे, मरने के लिए मरने वाला के लिए शोक करोगे? पूछता है शास्त्रकार, किसके लिए शोक करते हो? जिंदा के लिए क्या शोक करते हो, मुर्दा के लिए? अर्जुन तो शोक कर रहा है, किसके लिए शोक कर रहा है? भगवान कहते हैं अशोचानंद सुशस्तम प्रज्ञावादान से भाष से आपने सगा वाला के लिए वो तो अर्जुन वो तो दुर्जन की बात है, वो तो अर्जुन से कह रहे भगवान, वो तो मामा का पांडवा से युवक कि मैं कुर्वत संजय बुलाना दुर्योधन संजय जी बुलाना महाराज राजा राजा बसना मा प्रवेश मान नायका पांडवा से युवक नहीं क्या नाम क्या श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत उत्सव मामा का पांडवा सैव किम कुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवा निगम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आसारी उपसंगम्य राजा वसनम अब्रवीत राजा माने दुर्योधन वो जाकर के बोला उसे बोला तो यहाँ कहते हैं तुम शोक करते हो किसके लिए शोक करते है? जिंदा के लिए कि मुर्दा के लिए? भगवान पूछते तुमसे अशोच्यान जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अरे मैं ये प्रश्न कह रहा है, यहां तो भगवान बोल रहा है उसके कह रहा है, उसका तो विषाद जोग है, अरे तो संख्या जोग है, संख्या जोग की बात कर रहा हूं और तुम तो विषाद जोग की बात कर रहे हो। पहला जोग का नाम विषाद जोग, दूसरा योग का नाम संख्या योग। संख्या योग में 11वां अध्याय से चालू होता है गीता, अशोच्यानन सोशस्तम। हे अर्जुन जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तो शोक कर रहा है और बात करता विद्वानों के जैसे प्रज्ञावादान सभास से अशोच्यानन सोशस्तम और साथ साथ शोक तो कर रहा मुर्दा के लिए और बात कर रहा पंडितों के लिए। तो आपने पंडित जी ताक में राख दे, मैं जो कहते हैं उसे सुन। तो वहां पंडित के जैसे बात कर रहा है, पंडित पंडित के जैसे बात कर रहा है, पंडित है नहीं। अपंडितम पंडितम मन्यते इति पंडितम मन्यमाना, जो पंडित नहीं है और पंडित के जैसे बात करे तो उसको कहते पंडितम मन्यमाना। हाँ अपंडितम पंडितम मन्यन्ते, पंडित है नहीं आपने को पंडित मानता है, वो बात कर रहे पंडितों के जैसे। तो आपने बुद्धि ताक में राख, मैं जैसा कहता वैसा सुन, चल। ऐसे भगवान ने डांट दिया तुमको। तो देखो आने बात है क्या पंडित शब्द का, पंडितम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहो पंडितम बुधा, विद्वान लोग उसको पंडित कहते हैं। किसका आखिरी लाइन हो गया ना, सर्वकर्माण भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, तो ज्ञान रूपी अग्नि जो है सभी प्रकार के कर्मों को जला देता है। सभी कर्म समझ में आए ना क्या? नित्य कर्म, निमित्त कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, तप कर्म, समझे कि नहीं? सब कर्म पाप पुण्य तो आएगा, नित्य निमित्त कर्मों में सब आ जाएगा। प्रारब्ध कर्म सब हो गया, सर्वकर्माणि भस्मसात पुरुषे, भगवान ने नाम गिना करके नहीं बोला अमुक करो, व्यतिरेक भी नहीं दिया को अमुक नहीं करो, अमुक नहीं करो, अमुक नहीं करो, ऐसा नहीं, एक ही शब्द है सर्वकर्माणि। नहीं बात हाँ चलो तत्र, अभी इसका देखो आठवां का भूमिका, तत्र योनिम क्रीडवस्व इति उक्तम। तत्र योनिम, तत्र माने तस्मिन् ब्रह्मणि, हाँ कौन से ब्रह्म में, पूर्वम ब्रह्म दूषित, वो जो पहले बतलाया ना पूर्वम ब्रह्म दूषिता सेवेता, तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि योनिम कुरुस्वाहा, किरणस्व माने कुरुस्व, वहां तुम निष्ठा करो, ये बतलाया पहले, हाँ सातवा में बतलाया वहां निष्ठा करो इति उक्तम। कथम ध्वनीकरण हम वहां निष्ठा कैसे करें, ये प्रश्न किया, वहां निष्ठा समाधि कैसे लगावे, समाधि कैसे करें, इत्याशंका ऐसा शंका करके तत्प्रकारम दर्शयती। अब वहां समाधि लगाने के प्रकार बतला रहा है, कैसे लगाओगे, तो देखो त्रीन उन्नतम, तीन उन्नत करो, शीर ग्रेव्या छाती, ऐसा बैठ जाओ, हाँ इसे नहीं बैठा जा छाती उन्नत, ये ग्रेवा उन्नत, ये उन्नत, ऐसा बैठो और नहीं बैठा जाएगा, तो तीनों उन्नत रखो, उन्नत मान ऊंचा ऊंचा ऊंचा रखो, ऊंचा ऊंचा छाती फुला दो, विवाह रखो, शीर वैसा करो, चलो त्रिरुन्नतम है नहीं बात, स्थाप्य समम शरीरम, तीन कौन कौन सा है, शरीरम इंद्रियाणी मनसा, मनसा सन्निमिष्य मन के द्वारा है नहीं बात, इंद्रियाणी इंद्रियाणी हृदय स्थाप्य सन्निवेश्य है बात, तो क्या करोगे, वक्षस्थल को ग्रीवा को मस्तक को सीधा करके रखो, सुसो देशे प्रतिष्ठा पर स्थिरम आसनम आत्मनम, नात्युश्रितम नाति निशम चैलादीनम कुशोत्तरम, तत्र एकाग्र मन कृत्वा जतसित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसन तुंजा जोगम आत्मा विशुद्ध, योग जोड़ो योग करो चित्त शुद्धि के लिए, कैसे कहाँ करे, तो भगवान ने बता दिया गीता के छठा अध्याय में, सुसो देशे पवित्र देश है उन्हें, सुसो देशे प्रतिष्ठा पर रख करके आसन, सुसो देशे प्रतिष्ठा पर स्थिरम आसनम आत्मन, नात्युश्रितम नाति निशम, नीचे करोगे कीड़े मकोड़े काटेगा, सीटी काटेगा, ऊपर करोगे गिरने का डर रहता है, बीस वाला मध्यम बीस का है ना, ऊपर भी नहीं ज्यादा ऊंचा भी नहीं, आवे आवे आप लोग क्या होगा कुंभ मेला में, कुंभ मेला में संतों का जुलूस निकालते हैं ना मंडलेश्वरों का, तो किसका कैसा ऊपर, कितना ऊपर हो, तो सबसे ऊंचा लखा रखा था संतोषी माँ का, मैंने कहा गिरेगी तब मरेगी साली, इतना ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर रखा है, सबसे ऊपर देखा था, क्या इनको तो ऐसा है पता नहीं कौन सा बड़ी भारी, जितना ऊपर इधर रखेगा उतना बड़े मंडलेश्वर हो जाता है क्या, पंचदशी का भी ज्ञान नहीं है उसको, संतोषी वहां को पंचदशी का भी ज्ञान नहीं है, और वहां जाकर सबके ऊपर आसन लगाया, तो ऐसा आसन मत लगा ना, जो गिर जाओगे तो एक बार लुढ़क पड़ोगे, हे गंगा जी में लुढ़क पड़ोगे तो ऐसे गंगा जी चले जाओगे सीधा, तो वहां ऐसा फोड़ लगता है कौन किसका आसन कितना ऊपर होगा, कौन किसका सिंहासन कितने ऊपर होगा।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Shaivam.org in Anmiga Anbargalukku Vanakkam. நீங்கள் அடுத்ததாக கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனைகள். பாடியிருப்பவர் டி கே ஜெயராமன் அவர்கள், திருச்சிற்றம்பலம்.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: कन्या इव वहतु मे तवाउ अञ्जिञ्जाना अभिचाकशिमी।
1: यत्र सोमः सूयते यत्रायज्ञो घृतस्य धारा अभितत्पावन्ते
2: अभ्यर्षत सुष्टुति।

0: हरि ओम। स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एवं सभी सत्संगियों की तरफ से पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतिथि देवो भव, पर हमारे सबके सद्भाग्य है यहाँ संतो अतिथि बन के दो दिन के लिए अपने पर कृपा करने के लिए आ गए हैं। हम फिर से स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हैं और आज और कल दो दिन स्वामी जी हमको ज्ञान गंगा बहाएंगे। हम सब स्वामी जी को पूरी तरह जानते हैं, इसलिए ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं।
1: ओम गणानाहं त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवि नामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन् होतिभिस्तीतसाधनम् ओम महागणपतये नमः। ओम भद्रं कर्णेभिश्रृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षबीजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुपाकुंसस्तनुभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। मेरे पीछे बोलना। निधये सर्वविद्यानां।

0: स्वामी अखंडानंद जी महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम कहकर शुरुआत करते हैं। अथर्व वेद में मुंडक उपनिषद आता है, शौनकीय शाखा मंत्र उपनिषद है, ये शौनकीय शाखा में ये पढ़ता है। इसमें ये बताया गया है कि ब्रह्म विद्या के प्रथम आचार्य गुरु स्वयं भगवान, या ब्रह्मा जी लिखा है, तो ब्रह्मा जी नाम के लिए है, सचमुच परमेश्वर का नाम ही है। ब्रह्मा प्रथम संभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, ये लक्षण ईश्वर का है, जो सृष्टि को प्रकट करे, रक्षण करे, लीन करे अपने में, वो ईश्वर ही होता है। तो उन्होंने ये ब्रह्म विद्या का उपदेश किया और परंपरा से, परम से अपरम, गुरु से शिष्य, प्रशिष्य के रूप में वो विद्या चली आई। इसका मतलब है कि अध्ययन अध्यापन की विधि से, हाँ, वेद का मंत्र बताता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमतितव्यम। स्वाध्याय मानी अध्ययन करे अपने गुरु के पास, और अपने शिष्य जब आए तब उसको वही विद्या पढ़ाए, पढ़े और पढ़ाए, लर्न एंड टीच। तो इस क्रम से विद्या आती गई और इस उपनिषद के जो आचार्य है वो अंगी है, और उनके पास जिज्ञासु जाता है, बुलाता नहीं है, गुरुमेव अभिगच्छेत, उनके चरण में पहुंचता है। और शौनको हवई महाशाल अंगी रसम विधिवत उपसन्न पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विख्याते सर्वमिदं विख्यातं भवति इति। ये शौनक जी अपने गुरु के पास गए। ये शौनक का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं शुनकस्य अपत्यम पुमान, शुनक का पुत्र है शौनक, बिरला के पुत्र को क्या कहते हैं, बिरलास है ना, इसको संस्कृत में तद्धित कहते हैं। दशरथ का पुत्र क्या है, दाशरथी, जनक की बेटी क्या है, जानकी, मेहता जैन सन है ना, ऐसा है, नाम से बनता है तद्धित। तस्य हितम वैयाकरणस्य हितम। अब क्या हुआ, वो महाशाल है, और ये भी लिखा है वो विद्वान है, विद्वान साधक है, जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है कि जिन्होंने पुरुषार्थ का ठीक ठीक निश्चय किया है। पुरुषार्थ चार है, पुरुषेण अर्च्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ है, जिसकी इच्छा की जाती है, व्हाट इज डिजायर्ड बाय यू, सबके हृदय में उचित मार्ग से धर्म से हमें धन धान्य मिले, उसी काम अच्छी तरह से उपभोग करे, इस सामान्य इच्छा सब में होती है। यू कॉल वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड सिक्योर्ड, प्लेजर्स एंड सिक्योरिटी बाय राइट मीन्स, इस सबके हृदय में सहज ये इच्छा होती है हम सुखी हो। कैसे? सुख का साधन जुटाए और फिर इसका उपभोग करें। पर कोई ऐसा है वो जानता है कि सुख और सुरक्षा बाहर से नहीं आ सकती है, अभी गड़बड़ हो जाएगी। बाहर से नहीं आती तो कहां से आती है बोलो? अंदर से, अंतड़ियों में से, फेफड़ा से, हार्ट से, लीवर से, है ना? और गड़बड़े अंदर तो ना अंदर से आ सकती है ना बाहर से आ सकती है। वो मेरा ही स्वरूप है, दैट इज द नॉलेज। ये अंदर वाला और गड़बड़ हो जाएगा, अंदर का। तो सिक्योरिटी मेरा ही स्वरूप ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये सुरक्षा और सुख का नाम ही आत्मा है, जिसमें सब इच्छाओं परिसमाप्त हो जाती है। यह लाभात् न परो लाभ है, ये सब बताया है। इसलिए जिन्होंने निश्चय किया है कि वो आनंद मैं ही हूं, और उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए वो गुरु के पास जाता है। अभी इसमें मैं बहुत समय यहां चर्चा कर सकता, जिज्ञासु क्या है, पर समय अभाव के कारण उसको मैं छोड़ता हूं। बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु। जिसको जानने मात्र की इच्छा है, क्योंकि जानने से ही ये पूर्णता प्राप्त हो सकती है, करने से नहीं। आपको एक वाक्य याद दिला दे, भगवान शंकराचार्य महाराज भाष्य में लिखते हैं, परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम। प्राप्त करना चाहिए जो न पर इति अपरम, जो पर नहीं है, अपर है, परिच्छिन्न है, सीमित है, उसको कर्म से प्राप्त करना चाहिए। चतुर्विधा कर्मणा, एक बात याद रखना, कर्म चार ही प्रकार के होते हैं। आप्यम, आप यहां से सूरत जा सकते हैं, होल लाइफ इज ट्रैवल, अंडरस्टैंड। आप अपने जीवन में देखना, आप कभी एक जगह पे रहते नहीं है, हर समय क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह विचरण हमारा होता ही रहता है। घर में भी रहे, बाथरूम जाएंगे, किचन में जाएंगे, यहां जाएंगे, चलता रहता है मूवमेंट। क्यों? कुछ चाहिए इसलिए जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, भुलेश्वर जाना पड़ेगा, सामान लाने के लिए जाना। आप्यम कर्म है। दूसरा कर्म क्या है? उत्पाद्यम, जो नहीं है उसको पैदा करेंगे। अभी खेती फसल हो रही है, उत्पाद्यम। पूरे दुनिया में सबसे मोटा काम क्या कर रहा है? टूरिज्म। टूरिज्म मानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का और उनको बड़ा बड़ा आकर्षण देने का, यहां ये है वो है, इसको कहते हैं आप्यम। दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, उत्पाद्यम, एग्रीकल्चर, होल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। थर्ड इज है संस्कार्य, रोज शरीर को स्नान कराना, घर की चीज को सफाई करना, पूरे शहर को सफाई करना, कपड़े को सफाई करना, ये सब क्या है? बहुत बड़ा काम क्या है? स्वच्छता करना और उसको सजाना संवारना, दो काम हर रोज हम भी अपने लिए करते हैं ना, बाल को ठीक बनाते हैं और स्नो पाउडर लगा के सब करते हैं, पूरी दुनिया लगी है शहर का स्वच्छीकरण और उसको आकर्षक बनाना, बहुत बड़ा इंडस्ट्री इसमें भी है। और लास्ट चीज क्या है, विकार्यम, विकार्यम इज व्हाट, उसको पूरे पूरा बदल देना। दूध का दही बनना क्या है, विकार्य, आटे की रोटी बनना क्या है, विकार्य, विकार्य वापिस वापिस दही दूध नहीं बन सकता है। मैंने पहले आपको चुटकुला सुनाया था, एक अमेरिकन गुजराती के घर में आया तो उसने श्रीखंड खिलाया, और गुजराती को इंग्लिश बहुत नहीं आता था, थोड़ा ही आता था, तो उसने पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस श्रीखंड, ये कैसे बना है, हाउ डिड यू मेक इट। अभी उसको दही का इंग्लिश शब्द याद ना आया उस समय अभी क्या गड़बड़ करे, तो उसने कहा इसको मालूम था दूध का इंग्लिश है मिल्क, तो उसने कहा यू नो मिल्क, यस, जब वो रात को सो जाता है तब दही, व्हेन स्लीप्स इन द नाइट बिकम व्हाट, दही, दही से चिकन हो गया, सो व्हेन स्लीप्स इन द नाइट, अभी इस प्रकार से दही, होल इंडस्ट्री ऑफ व्हाट मॉडिफिकेशन बिक। अब बताइए पांचवा कोई कर्म हम लोग कर सकते हैं, उत्पाद्यम आप्यम विकार्यम संस्कार्यम हो गया, और ये चारों कर्म जो कर्म फल उत्पन्न करेंगे वो समय में पैदा होने के कारण सबके सब कर्म पैदा होके नाश हो जाएगा, यत् जन्यम तन्मर्त्यम यत् कृतकम तद अनित्यम, जो पैदा होता है वो अनित्य होता है, घटवत है, ये माला की तरह माला हर रोज लानी पड़ती है, क्यों जन्यत्वात्, ये शरीर भी हमारा क्या है, एक दिन कौन सी वाड़ी है उसमें पहुंचेंगे, हमारी बिल्ले पाले में वागजी पहली वाड़ी है, दूसरी वाड़ी हो गई है, नाम में भूल गया है क्या, चंदनवाड़ी, कितना बढ़िया नाम है ना, कोई सो शरीर भी अनित्य है, सर्व कर्म फल क्या है, अनित्य है, हो गया। सो शंकराचार्य महाराज ने कितना बढ़िया व्याख्या देखा, अपरम चेत प्राप्तव्यम कर्मणा, चतुर्विध कर्मणा प्राप्तव्यम, परम चेत परम ब्रह्म चेत, जो नित्य है कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप है, शाश्वत है अनंत है, उसको आप कर्म से उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि वो अनुत्पन्न है, अभी है, जो नहीं है उसको उत्पन्न कर सकते हैं, जो पूर्ण है उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी उत्पन्न होता है वो कृतकम होता है, और जो कृतकम होता है उत्पन्न किया जाता है वो अनित्य है। अगर आपको नित्य चाहिए तो नित्य तो प्राप्त है, नित्य मनी है इस समय तुम्हारा, जो हमको मालूम क्यों नहीं है, आनंद पूर्णता है मालूम क्यों नहीं है, होने पर तुम जानते नहीं हो, क्यों नहीं जानते हो, अज्ञान के कारण, अज्ञान कैसे जाएगा, ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान कौन सा है, ब्रह्म विद्या, इसलिए गुरु के पास जाओ ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो, ठीक है। इसलिए यहां परम चेत प्राप्त ज्ञातव्यम, शौनक जी गए किसके पास, अंगी के पास, तो यहां लिखते हैं शौनको ह वही महाशाल ह और वही, ये दो निपात बताते हैं ये अवश्य हुआ और ये प्रसिद्ध है, क्या हुआ, शौनक जी की महिमा बताते हैं। देखो उपनिषद में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, वो शिष्य की योग्यता अधिकारित्व निर्णय करता है। मैं आप लोग को मैं कहीं कल भी सुन रहा था, पर पहले भी मैंने कई बार सुनाया, पर आप एक बात खास याद रखना, उपनिषद दो प्रकार के लोगों को पढ़ा रही है। एक तो जो अधिकारित्व प्राप्त कर चुका है, और दूसरा कौन जो अनधिकारी है। ठीक है कि नहीं भैया? ये गलती कभी मत करना। उपनिषद टॉक्स टू टू पर्सन, वन इज रेडी, अदर इज गेटिंग रेडी। ओके, एक तैयार है, दूसरा तैयार हो रहा है, क्योंकि सभी मनुष्य को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, सभी मनुष्य ब्रह्म विद्या समझ सकते हैं। या तो वो अभी समझने के लिए तैयार है, या उसको क्या किया जाता है, गेटिंग रेडी और रेडी। वी डोंट पुट कॉम्प्लेक्स ऑन यू, ओके? वेरी डेंजरस। आप अनधिकारी है, अनधिकारी है माने आप कौन कहने वाले हमको अनधिकारी? किसी को अनधिकारी करना ही क्या है, अनधिकारित्व में आप में ना, आइदर यू आर मैच्योर और गेटिंग मैच्योरिटी, बी वेरी केयरफुल। तो शौनक जी का मन तैयार हो चुका था, अधिकारित्व उनमें था। महाराज कैसे मालूम पड़ा? महाशाल है, यहां कहते महागृहस्थ। आप लोग सब गृहस्थ है, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहे उसका नाम क्या है, माने बाल बच्चे सब। बहुत अच्छा है, शास्त्र में लिखा है सबसे अष्ट लक्ष्मी में पहली लक्ष्मी कौन सी है,
1: गृहलक्ष्मी।
0: घर भी क्या है, लक्ष्मी है, तो घर में अकेले नहीं रहते, कौन होता है साथ में, पत्नी होनी चाहिए, इसको कहते हैं क्या, वरलक्ष्मी। प्रसन्नता से हैप्पी मैरिड कपल, वेरी रेयर बट हैप्पी मैरिड कपल। तीसरी बात है संतान लक्ष्मी, बच्चे होते हैं तो घर बनता है, ये ग्रह लक्ष्मी। अब यहां कहते हैं ये गृहस्थ नहीं, आगे और लगाया क्या है, महागृहस्थ। महागृहस्थ मानी क्या, महागृहस्थ हमेशा मजाक में कहता हूं, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों गृहस्थ थे कि महागृहस्थ थे, हमारे श्याम सुंदर क्या थे, महागृहस्थ। 16,000, वाह आप लोग सबको मालूम है ना, किसी को एक की जगह दूसरी हो तो कितनी गड़बड़ हो, नहीं होने की संभावना भी, शंका भी हो किसी को तो कितनी लड़ाई होती है, और इनको कितनी थे, 16,800। किसी ने पूछा ये आपके भगवान कैसे जिनको 16,000 पत्नियां हैं, मैंने कहा तू तो एक को संभाल नहीं पाता है, ये 16,000 को प्रसन्न रख सकते हैं, इसलिए भगवान ही होने चाहिए, और क्या बात है। इसका बहुत अर्थ महाराज श्री ने दिया है, पर एक बात है, महागृहस्थ, यहां महागृहस्थ का अर्थ क्या है, महाशाल है। शाला शब्द सबको हम लोग को मालूम है, शाला गए थे, स्कूल को भी क्या कहते हैं, शाला। शाला में हॉल, गृह है, यानी हॉल को कहते हैं शाला, खंड। महाशाला का अर्थ होता है ये शौनक जी स्वयं विद्वान है, उनके घर में यज्ञशाला, गोशाला, पाकशाला, पाठशाला, ये सब शाला चलती थी। बहुत से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे, इसलिए क्या था, पाठशाला, हंड्रेड्स ऑफ विद्यार्थी, और सब विद्यार्थी को भोजन मिलता था उनके यहां फ्री, बिना मूल्य सबको प्रसाद मिलता था, खूब अन्न का दान करते थे। क्या है, महाशाला, पाकशाला है, और हर रोज यज्ञ होता था उनके घर में, इसलिए क्या है, यज्ञशाला। और यज्ञ के लिए क्या चाहिए, दूध दही चाहिए, इसके लिए क्या है, बड़ी अपने वृंदावन का आश्रम में आना, अकर्णा जी महाराज के 300-300 गैया, ऐसी सुंदर गैया देखने नहीं मिले, सब प्रसन्न गैया है। तो क्या है, एक रुपये का दूध कभी बेचा नहीं आश्रम ने, नहीं दही बेचा, सबको बांट देते हैं। हमारे महाराज श्री ऐसे थे, ऐसे उदार व्यक्ति कहां देखने को मिलेंगे, देव सबको। तो महाशाल है, तो अन्नदान बहुत किया है। हमारे प्रातस्मरणी महाराज श्री की एक बात है, मुझे उन्होंने गणित समझाया था कि क्या, पहले तो कहा व्यतिरेक मुख से, जो कंजूस होगा उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ये बात पहले बताई, और मंत्र भी बताया, एतत् अक्षरम अभिदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः, जो कंजूस है वही ये अक्षर ब्रह्म को जाने दिया जाता है, यहां से इस श्लोक से जाता है। फिर उन्होंने समझाया गणित, उन्होंने कहा दान माने अपनी मालिक की चीज दूसरे की हवाले कर देना, अब आपकी हो गई, अगर मैं पुस्तक उठा के आपको दे दूं, मेरी पुस्तक है ये आपकी हो गई, इसको कहते हैं दान, चेंज ऑफ ओनरशिप। फिर उनका दान से बढ़कर त्याग है, मैं चीज को न अपनी रखता हूं न किसी के बनाता हूं, छोड़ देता हूं, और त्याग से की वर्ड से है ज्यादा है, उसको भूल जाना। योगी बैठा है अपने स्वरूप में, उसको तो जगत की स्मृति ही नहीं है, उसका हो गया वहां से, उससे उपेक्षा हो गई, और इससे बढ़ के है सन्यास। जगत का मिथ्यात्व का निश्चय होने पर संपूर्ण प्रपंच का त्याग हो जाना, सम्यक रूप से छोड़ना, इसका नाम हो गया सन्यास। तो महाराज ने कहा जो त्याग, जो दान करेगा वही त्याग कर सकता है, वही सबको छोड़ के अपने स्वरूप के चिंतन में बैठ सकता है, वही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समग्र जगत का त्याग कर सकता है मिथ्या निश्चय द्वारा। पर अगर 5 रुपया छूटता नहीं है तो फिर मिथ्या निश्चय कहां से होगा, त्याग कहां से होगा, आंख बंद करके कहां से बैठोगे अपने स्वरूप में। इसलिए कंजूस को आप पूरा करो वाक्य, क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, और जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो कंजूस हो नहीं सकता, महाशाल है। और महाराष्ट्र का प्रसिद्ध दृष्टांत में फिर से दोहराता हूं, एक गांव में एक बड़ा कंजूस शेठ रहता था, कंजूस और शेठ दोनों विरोधी है, मक्की चूस जिसको हम लोग कहते हैं, वो कभी किसी को कुछ नहीं देता है। एक दिन गांव के बाहर कुएं में गिर गया तो सब लोग ने कहा शेठ आपका हाथ दे दो, आपका हाथ दे दो, उसने किसी को नहीं दिया। शाम को उसका मित्र गया और कहा कि शेठ आपका हाथ, मेरा हाथ ले लो, तो रथ पकड़ के बाहर आ गया, तो उसको देने की आदत बिल्कुल नहीं, बस लेना। महाराज का दृष्टांत महाशाल है, मानी चैरिटेबल पर्सन, अ पर्सन इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी, महाशाल है। अब आप देखिए आगे, विधिवत यथाशास्त्रम उपसन्न है, अपने गुरु के पास शास्त्र के अनुसार गया। शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए एक विधि होती है।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Iyarpagai Nayanar Puranam, presented by Sri सिंगापुर शंकर नारायणन. थैंक यू. ओम नमः शिवाय.
3: भक्त जनों, आज हम सुनेंगे और एक नायनमार जो कि दक्षिण भारत के संत थे, जिनका नाम है इयरपगयार. इयरपगयार कावेरीपट्टिनम के संपन्न श्रेष्ठी थे. भगवान पर उनकी प्रेमाशक्ति और संपन्न भावना असाधारण थी. उनकी मान्यता थी कि सारी धन संपदा और परिवार सब शिव का ही है. ये वे स्वयं तथा अपनी पत्नी और बच्चों पर भी भगवान के भक्तों का अधिकार मानते थे. एक दिन उनके पास एक शिवयोगी आए और आकर बोले, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम भक्तों की हर इच्छा पूरी कर सकते हो. तुमसे कुछ मांगने की यदि मैं आशा करूं तो तुम मना तो नहीं कर दोगे? इयरपगयार ने कहा, आप निसंकोच कहिए, जो भी आप चाहेंगे अवश्य मिलेगा. तब शिवयोगी बोले, मैं तुम्हारी प्रिय पत्नी की कामना करता हूँ. इयरपगयार ने एक क्षण भर भी विचार न करते हुए अपनी पत्नी को भेंट स्वरूप उन्हें दान में दे दिया. पत्नी से परामर्श करने पर पहले वो भी हक्की बक्की और चौंक गई, लेकिन पति के वचन के विरुद्ध न जाने की और उनकी पति के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि उन्होंने उनकी बात मान ली. हिंदुस्तान या दक्षिण भारत या कहीं भी कहें तो पत्नी का स्थान पति के जीवन में सबसे उच्च माना जाता है, क्योंकि पत्नी पति के साथ पूर्ण रूप कहलाती है. वो पति की अर्धांगिनी है. इयरपगयार के इस संकल्प को सुनकर उनके सगे संबंधी उनके विरुद्ध बोल उठे, यह तो अनुचित है, यह आप कैसे दान कर सकते हैं? इस पर इयरपगयार ने कहा कि मैंने जो कह दिया कि मेरी पत्नी शिव भक्त योगी के लिए है तो वही है, आप सभी अभी जा सकते हैं. तब उनके परिवारजनों ने उन पर उस शिवयोगी पर आक्रमण कर दिया. इयरपगयार ने भी तलवार उठा ली और अपने सारे परिवारजनों को का वध कर दिया. इसके बाद अपनी पत्नी और शिवयोगी को एक स्थान तक उन्होंने पहुंचा दिया और कहा, यह अभी से आपकी संपत्ति, यह अभी से आपकी हुई. यह कहकर वो मुड़ गए पीछे. तभी उनके पीछे से शिवयोगी की आवाज आई, दुहाई है इयरपगय मुनिराज, दुहाई है, आप सच में शिव के परम भक्त हैं. इयरपगय ने पलट कर देखा कि पत्नी अकेली खड़ी है, शिवयोगी का कहीं पता नहीं, और उधर साक्षात शिव नंदी पर विराजमान आकाश में दर्शन दे रहे थे. नटराज शिव ने इयरपगय की अनन्य भक्ति और शिव भक्ता पर अटूट विश्वास के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की. इयरपगय अभिभूत होकर प्रभु दर्शन करते रहे. इधर मायावश मरे हुए बंधुजन और परिवारजन पुनः जीवित हो उठे. इयरपगय का यह चरित्र आज भी रहस्यपूर्ण माना जाता है. भक्त इसका समाधान करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं. चेकिलर कहते हैं, व्यक्ति मूल्यांकन के जीवन में मानदंडों का हम प्रयोग करते हैं, उनसे इयरपगय का जांच पाना संभव नहीं. उनका नाम ही स्पष्ट करता है, इयरपगय अर्थात संसार की सहज प्रकृति के शत्रु. जहां तक इयरपगय का संबंध है, वे अपना अहम पूर्ण स्वरूप से विगलित कर चुके थे. स्वयं को अपनी चल अचल संपत्ति को भगवान के दासों की संपत्ति मानकर जीवन यापन करने वाले इस मानव को हम सामान्य नहीं मान सकते. यह शिव की ही भक्ति है. कुछ लोग कहते हैं कि ये इयरपगय भक्ति में इतने पागल हो चुके कि अपनी पत्नी तक का दान कर दिया था, लेकिन यह ऐसी भक्ति और ऐसी विचार रखने वाले लोग दुनिया में बहुत कम ही होंगे. इसलिए आज हम इयरपगय को सत स्वरूप भगवान के भक्त स्वरूप नमन करते हैं. ओम नमः शिवाय.
2: ओम नमः शिवाय. डियर लिसनर्स ऑफ Shaivam.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे. वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स. इन ऑर्डर टू मेक दीज एक्सटेंसिव रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू अवर रेडियो लिसनर्स, वी हैव रीऑर्गेनाइज्ड अवर प्रोग्राम शेड्यूल. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periya Puranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: अंतकरण में जब बिंबरूप कुटस्थ का पहली बार प्रतिबिंब पड़ा था, उस समय ये गलती ना किया होता कि मेरा स्वरूप तो कुटस्थ ही है, यही दृष्टि रखकर ये जो अंतकरण में प्रतीत हो रहा है ये तो प्रातिभासिक है, अंतकरण के चलते है, मेरा असली स्वरूप तो वही है, ये निश्चय बरकरार रखते तो पुनर्जन्म न होता, फिर संसार यात्रा न होती। लेकिन जो उपाधि है उसी को ही तुमने अपना स्वरूप मान लिया, हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब कब मानी, शुभ मुहूर्त में माना था कि अशुभ मुहूर्त में माना था, बोलो? शायद मुझे लगता अशुभ ही था वो दिन है? जिस दिन भी ये गलती कर ली है वो शुभ होता, मंगलमय होता तो जीवन विषाद से ग्रसित न होता, है ना, बड़ा आनंदमय होता, विषाद से ग्रसित न होता। इसका मतलब अशुभ ही मुहूर्त था, अब वही गलती आज तक भोग रहे हैं, क्योंकि हर बार पैदा हो रहे हैं फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, उसी एक दिन की गलती से, एक बार की गलती से ये गलती पुनर्जन्म पुनर्जन्म जन्म जन्मांतर का कारण बनता जा रहा है। न जाने कब तक उस गलती का परिणाम और भोगना है हमको, न जाने कब तक उस गलती का परिणाम और भोगना है। अभी तक तो जो भोग चुके हैं, आज जो भोग रहे हैं भोग ही रहे हैं, और आगे भी न जाने कब तक भोगना है। अब यदि कोई पूछे कि महाराज इसके मुक्ति पाया जा सकता है, इससे अलग होया जा सकता है, बोले हुआ जा सकता है। कब कैसे, तो वेदांत ने तो एक ही उत्तर दिया कि तुम वेदांत के विचार के माध्यम से सतत अपने बिंब रूप कुटस्थ साक्षी को मेरा स्वरूप है करने का निश्चय कर लो, फिर आगे तुम्हारी ये यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी, उस गलती को फिर सुधारो। ये देख लो, उस गलती को न जाने कब तुमने की थी, वो गलती को कुटस्थ साक्षी को अपना स्वरूप न मानकर प्रतिबिंबित चेतना को तुमने अपना स्वरूप माना, वो जो गलती उसको फिर आज सुधारो, आज सुधारने का मौका है, सुधार लो, इसी जन्म में सुधार लो, अभी सुधार लो। यदि वो तुम सुधार लोगे कि मेरा असली स्वरूप तो कुटस्थ साक्षी है, फिर आगे तुम्हारी यात्रा चलेगी ही नहीं, फिर संसार तुम्हारे लिए विषाद होगा ही नहीं, और नहीं करोगे तो फिर आगे चलता ही रहेगा। एक उपाय तो ये, और तुम कहो नहीं महाराज वो तो थोड़ा कठिन है, अपने आप को कुटस्थ साक्षी निश्चय करना तो बड़ा कठिन पड़ रहा है। तो कठिन पड़ रहा है तो दूसरा सरल उपाय बता रहे हैं शंकराचार्य जी, कुछ नहीं, भगवान शिव के चरण पकड़े रखो, बस सब काम हो जाएगा, आगे वही कर लेंगे वो है? आगे फिर आगे वो कर लेंगे, उनका चरण पकड़ लो। तो ये श्लोक पर विचार करते हैं, ये उन तमाम शास्त्रीय पंडितों के प्रति जो केवल शास्त्र की दुहाई देते हैं और शास्त्रों के युक्ति, शास्त्रों के दुहाई, शास्त्रों का प्रमाण के द्वारा तर्क वितर्क वहा पोह करते रहते हैं, उन शास्त्रीय पंडितों के प्रति ये कटाक्ष है, शंकराचार्य ये कटाक्ष कर रहे हैं। क्या करते हैं विद्वान लोग, घटो वामृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल, अब तुम लोग ने तो न्याय शास्त्र न पढ़ी हो, पढ़ा नहीं है हमारा न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन है। हाँ, वैशेषिक और न्याय, नव्य न्याय, प्राचीन न्याय, वैशेषिक, कणाद का न्याय शास्त्र, गौतम का न्याय शास्त्र, हाँ, कणाद ऋषि का तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र। वो लोग क्या कहते हैं, घट माने एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा, वो घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण क्या है? तुमने बड़े आराम से उत्तर दे दिया, मिट्टी है। एक घड़े की उत्पत्ति के लिए कितनी मिट्टी है? मिट्टी क्या सारा संसार की मिट्टी उस घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण है? है? संसार में जितनी मिट्टी है सब मिट्टी मिलकर एक घड़ा उत्पन्न हुआ है क्या? तब तो मिट्टी उपादान कारण है, नहीं तो उस घड़े के उत्पत्ति के लिए जितनी मिट्टी चाहिए वह मृतपिंड, मृतपिंड ही उस घड़े के उपादान का कारण है। ले जी, सारी मिट्टी नहीं, क्योंकि अलग अलग घड़े के लिए अलग अलग पिंड बनाना पड़ेगा कि नहीं है? कुमार क्या करता है, मिट्टी का किसी एक अंश लेके आता है, उसको कूट काट करके मट्टी पानी आदि डाल के एक पिंड बनाता है, उस पिंड को चक्र में डालता है, चक्र के बाद उसको पिंड को शेप देता है, घड़े का आकार देता है। वो जो आकार लिया हुआ, जो तैयार हुआ हुआ घड़ा है, उस घड़े का उपादान क्या, कारण क्या है? मिट्टी है कि मृत पिंड है? किसी ने कहा मिट्टी है, उन्होंने कहा नहीं नहीं मृतपिंड है। ले जी, प्रत्यक्ष तो यही देख रहा है ना, उपादान का मतलब क्या है? वो कारण को उपादान कारण कहते हैं जो कार्य उत्पत्ति से पहले रहे, कार्य उत्पत्ति के क्षण में भी रहे, कार्य उत्पत्ति के बाद भी रहे, और उत्पन्न हुआ हुआ कार्य में ही रहे, अन्यत्र न रहे, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, उपादान कारण। अब एक घड़ा उत्पन्न होना है, घड़ा कार्य है, मिट्टी को अर्थात मृत पिंड को घड़ा उत्पन्न होने से पहले भी रहना पड़ेगा कि नहीं है? अच्छा, जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय भी रहना पड़ेगा कि नहीं? अब घड़ा बन जाने के बाद भी मृत पिंड को रहना चाहिए, लेकिन क्या घट बनने के बाद मृत पिंड रहता है? बोलो है? ये अब कुछ लोगों ने क्या कहा, घट उत्पत्ति का कारण क्या है? मृत पिंड उपादान कारण नहीं है, मृत पिंड ध्वंस घट उत्पत्ति का उपादान कारण है। ले जी, अब हो गया काम, सही क्या लग रहा है तुमको? मिट्टी उपादान कारण कहने वाला जो पक्ष है वो सही है क्या? उसका खंडन कर दिया, मिट्टी उपादान कारण है तो सभी मिट्टी चाहिए घड़े के लिए, क्या सभी मिट्टी मिलकर एक घड़ा बना है? नहीं। फिर उस मिट्टी के लिए, उस घड़े के लिए जितना मिट्टी चाहिए उतना मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी लाकर एक तरफ रख दो तो घड़ा बनेगा? तो फिर क्या करना पड़ेगा, मृत पिंड बनाना पड़ेगा। तब फिर क्या सिद्ध हुआ, मृत पिंड घट का उपादान कारण है। तो तीसरा व्यक्ति ने क्या कहा पता है, उपादान कारण का एक नियम होता है, उसको हम उपादान कारण मान सकते हैं, जो कार्य उत्पत्ति से पहले रहे, कार्य उत्पत्ति के क्षण में भी रहे, कार्य उत्पत्ति के बाद भी रहे, और उत्पन्न हुआ हुआ कार्य में रहे, स्वरूप से रहे। ये देख लो, तब मृत पिंड को तुमने जो उपादान कारण माना है वो गलत हो गया, क्योंकि मृत पिंड कार्य उत्पत्ति से पहले तो रहेगा, कार्य उत्पत्ति क्षण में रहेगा, लेकिन कार्य उत्पत्ति के बाद मृतपिंड ही खत्म, मृतपिंड नष्ट नहीं हुआ। और मृतपिंड कार्य उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए हुए घड़े में मिट्टी का पिंड रहेगा क्या? इसलिए मृतपिंड उपादान कारण नहीं घड़े का। फिर क्या कारण है? मिट्टी तो फिर कितनी मिट्टी? सारा मिट्टी? ये प्रश्न फिर जीव करती हूं। तो तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा? मृत पिंड ध्वंस, ये देख लो, ये शब्द जाल है कि नहीं बोलो। मृत पिंड का स्वरूप ध्वंस नाश होना ही घट उत्पत्ति में कारण है। बात समझ में आई कि नहीं? अब स्पष्ट हो गया। अब आम रस तुम आम से बनाते हो कि आम के ध्वंस से बनाते हो? अब समझ में आ गई है? आम रस, आम रहते हुए आम रस बनेगा कि आम के ध्वंस से आम रस बनेगा? बोलो, अब तो समझ में आ गई बात है? इसी तरह मिट्टी पिंडी का ध्वंस से घट बना, अब कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, मिट्टी पिंडी का ध्वंस से घट बना। तो ये सारी बात कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि ध्वंस किसी की उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकता है। फिर क्या होगा कारण? बोले परमाणु, पार्थिव परमाणु ही घट उत्पत्ति में कारण है, ये मान लेना चाहिए। ये सारा विवाद यहां है, दुनिया यही विवाद में पड़े रहते हैं। विद्वान लोग क्या करते हैं? ऐसे ही उहा पोह शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम लोग न्याय पढ़ते थे ना, कुछ न्यायिक लोग हाँ कहीं गए, तर्कशास्त्री लोग, एक भाषा शास्त्री, दूसरा तर्कशास्त्री और तीसरा ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिषी, ये सब थे। कहीं गए, भूख लगी, भूख लगी तो अब खाना तो पड़ेगा ना। तो किसी गांव में पहुंचे, भाई हमको भूख लग रही है, खाना दो, हम बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, भोजन की व्यवस्था करो। तो गांव में किसी ने कह दिया कि भाई हम आपको राशन देते, पकाओ खाओ, ले जाओ राशन। बेचारे राशन लेके चले गए, तो अग्नि खोजने के लिए जंगल में गए। तो वो जो एक वैद्य था, कविराज भी था वहां, एक वैद्य था, जंगल में लकड़ी खोजने गया। जो लकड़ी खोज रहा है वो कहता है ये कौन सी जात की लकड़ी है, ये कौन से पेड़ का है, इस लकड़ी का किस रोग में निदान होगा, कौन से औषधि बन सकता है, किस रोग के लिए काम आएगा, क्योंकि वो तो वनस्पति विज्ञान जानता था। लकड़ी लेने से पहले हजार बार सोचता था, नहीं नहीं ये तो मधुमेह के लिए काम आएगा, इसको जलाना नहीं चाहिए, छोड़ देता था। फिर दूसरा कहेगा ये लकड़ी, ये लकड़ी किस जाति का है, फलाने जाति का है, हाँ ये किस में काम आता है, कौन से वनस्पति रसायन गुण है इसमें, क्योंकि वही जीवन भर वही स्टडी किया हुआ था। अरे ये तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा काम आने वाला, इसको जलाना ठीक नहीं है, उसको छोड़ दिया। ले जी, करते करते जंगल में घंटों हो गया, लकड़ी खोज ही नहीं पा रहा है वो, समझे कि नहीं? अब उधर वो एक व्यक्ति, पाक शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति, चावल लेकर बैठा है, है? अब आएगा लकड़ी लेकर, अब आएगा लकड़ी लेकर, पकाएंगे खाएंगे, वो आए आने का नाम नहीं लेता। उधर दूसरा जो था तर्कशास्त्री, उसको बाजार में नून तेल खरीदने के लिए भेजा था, किसी दुकान में गया, नमक दे दो, नमक दे दिया। तो बोले तेल दे दो, बोले तेल दे दो, बर्तन लाए हो? बोले हां एक शीशी लाया है, कटोरी लाया है। उसने तेल दे दी, उसमें तेल लेकर आया, देखने के बाद तेल क्या घी समझ लो ना, उस जमाने में तेल कहां मिलता था, घी मिलता था। तो आजकल तो तेल भी शुद्ध नहीं मिलता है, उस समय तो प्योर घी मिलता था। घी लेकर आया कटोरी में, आते आते वो तो तर्कशास्त्री था, उसने तर्क करने लगा। ये घृताधारे पात्रम, पात्राधारे घृतम, ये घी का आधार कटोरी है कि कटोरी का आधार घी है, उसके दिमाग में तर्क आ गया। उसके दिमाग में क्या आ गया, घी कटोरी में टिका हुआ है कि कटोरी घी में टिका है। घृताधारे पात्रम वा पात्राधारे घृतम, अरे तुम्हारे हाथ में घी भी है कटोरी है, प्रयोग कर लो ना, किसके आधार में कौन चीज है। बोले देखते प्रयोग करते, तो उल्टा लिया उसने। जब उल्टा दिया तो सारा घी खत्म, लेकिन उसको घी माने नष्ट होने का दुख नहीं हुआ, बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। खुश होता हुआ आया, देख लो आज एक समाधान मिल गया हमको। कभी कभी मोहन इस प्रश्न करता है, उसका सही समाधान मिलता है तो इतना खुश होता है, वो बहुत खुश होता है, महाराज वाह क्या आज संतोष हो गया मुझे, कई दिन से ये प्रश्न मुझे हैरान कर रहा था, आपकी कृपा से आज ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, बड़ा प्रसन्न होता है। उसको समय इतना नष्ट हो गया उसका दुख नहीं होता है। दिमाग इतना खाली हो गया उसका भी उसको दुख नहीं है, उत्तर मिल गया वो प्रसन्न। इसी तरह वो नैयायिक को घी खत्म हो गया उसका दुख नहीं है, क्या हुआ, बड़ा खुश नाचते हुए आया, अरे क्यों प्रसन्न, घी कहां गया। बोले अरे घी के बात छोड़ो, पूछो नहीं, आज तो ऐसा मुझे समाधान मिला, उत्तर मिला। मतलब क्या हुआ, घी लेकर आ रहा था, हमारे दिमाग में तर्क आ गया कि घी के आधार में कटोरी टिका है कि कटोरी के आधार में घी, घृताधारे पात्रम वा पात्राधारे घृतम, दिमाग में वो प्रश्न ने परेशान कर लिया। हमने कहा प्रयोग कर लो, तो मैंने ऐसा किया तो पता चल गया कि क्या हुआ, पात्राधारे घृतम, घी पात्र में टिका हुआ था, यह समाधान हमको मिल गया। अब विकल्प नहीं आएगा कि घी कटोरी में है कि कटोरी घी में है, समाधान हो गया घी कटोरी में है। हाँ फिर घी कहां है, बोले घी जाने दो ना, हमको समाधान मिल गया वो खुशी है भाई, समझे कि नहीं। ये शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ना घी आया न लकड़ी आया, बोलो लकड़ी भी ला नहीं पाया, सब वनस्पति है, उसको जलाकर नष्ट तो नहीं करना चाहिए ना भाई, है रामदेव जी के बाल, क्या बाल, बाल कृष्ण जी की जैसे वही होंगे बेचारे, गए होंगे लकड़ी लेने, सब रसायन वनस्पतिज्ञ है ना, वो तो बड़े भारी वनस्पतिज्ञ है, कुछ लकड़ी ला ही नहीं पाया, वो खाली रो रहा, वो घी लेने गया था वो भी नहीं ला पाया। लकड़ी क्यों नहीं लाए, बोले अरे पूछो नहीं, ये जंगल तो बहुत बढ़िया है, यहां एक फैक्ट्री खोलना चाहिए आयुर्वेद का, यहां तो जो भी लकड़ी मिल रहा है, घास मिल रहा है, सब रसायन है, सब आयुर्वेदिक औषधि मूलक है। क्या मैं अब ऐसे बेशकीमती रसायन को, जड़ी बूटियों को आग लगाकर राख बनाए, ना वो लकड़ी ला पाए ना वो घी ला पाए, समझे कि नहीं। यही तो होता है ना, दार्शनिक लोग सब इसी में समय बर्बाद कर देते हैं, बस उपलब्धि कुछ नहीं। अब भूख लगाया और क्या करोगे, तब वेदांती था उसने कहा अरे भाई भूख कहां लगी है। वेदांती था ना, वो अपना प्रयोग करने लग गया, उसने कहा भूख शरीर को लगती है कि भूख मन को लगता है, कि भूख इंद्रियों को लगता है, कि भूख प्राण को लगता है, कि हाँ। बहुत विचार किया, करते करते अंत में उसने निश्चय कर दिया, अरे तुम लोग चिंता नहीं करो, भूख तो प्राण को लगती है, तुम प्राण है ही नहीं हो, खाना किस काम का, चिंता नहीं करो, उसको लगती हो तो लग, नहीं तो प्राण को, तुम असंग हो जाओ ना। उसने भी समस्या वहां भी उसने समाधान दे दी, ले जी हे भगवान बड़ा विचित्र बसता है। तीसरा ज्योतिष था तो उसने कहा चिंता न करो, इस समय हमारे लिए मुहूर्त प्रतिकूल है, जब सब मुहूर्त अनुकूल होगा, योग नहीं है भात खाने का, भोजन करने का। जिस दिन मैं देख रहा हूं, पंचांग देख रहा हूं, देखो ये ग्रह इसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए घी गिर गया, ये ग्रह इसमें आने के कारण इसीलिए इस ग्रह के चलते लकड़ी नहीं मिल रही है, हैं? चिंता नहीं करो, ये ग्रह इसमें आएगा तो घी भी मिल जाएगा, ये ग्रह इसमें आएगा तो लकड़ी भी मिल जाएगा। अरे कब आएगा, कब आएगा वो? ले जी, उसने भी अपना समाधान दे दिया, बैठो भूखे, क्या उड़ा दिया है, समझे कि नहीं? शंकराचार्य जी यही कटाक्ष कर रहे हैं। घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल। नैयायिक लोग और कहते हैं अग्नि चाहिए था, अग्नि चाहिए था तो आग लेने के लिए गया था, एक और कोई आग कहां मिलेगा, तो विचार करने लगा, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र।

पकाने के लिए आग जलाई होगी, वहां धुआं दिखाई पड़ा उसको। हाँ, तो व्याप्ति स्मृति हो गई उसको, वो देखो वहां धुआं है, इसका मतलब अग्नि जरूर है। पर्वतो वन्यमान धूमत्वात् यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी साहचर्य नियमो व्याप्ति यथा महानसम। क्या उसने प्रयोग कर दी, तो अब वो पहाड़ चढ़ाई करने लगा, किसके लिए? अग्नि के लिए। अब कब लाएगा, कब भात पकेगा? उसने घी गिरा दी, उसने लकड़ी नहीं लाई है, वो ज्योतिष पंचांग खोलकर बैठा है, मुहूर्त नहीं आ रहा है उसके सामने। वो अग्नि लेने गया तो पहाड़ की चोटी में गया, 5 घंटा चढ़ाई कर रहा है। क्यों? बोले अग्नि वहां है। कैसे कहा? बोले धुआं निकला। अरे मूर्ख, क्या मजाक है भाई। हे भगवान, घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल पटो वा तंतुर्वा। देखो वेदांती क्या कहते हैं, तंतु परस्पर, तंतु संयोग पटा। ये पट क्या है, वस्त्र क्या है? तंतु संयोग वस्त्र है, समझे कि नहीं? तंतु परस्पर संयुक्त होंगे तो वस्त्र तैयार होगा। तो ये वस्त्र का उपादान कारण क्या है? नहीं, तंतु संयोग। कपास भी नहीं, तंतु भी नहीं, तंतु संयोग। परस्पर तंतु एक आपस में संयुक्त होते जाएंगे तब जाकर कपड़ा बनेगा। तंतु उपादान कारण नहीं, यदि तंतु उपादान कारण होता तो घर में जो धागा है वहीं कपड़ा बन जाता है। लेकिन धागा तो है, लेकिन धागा का परस्पर संयोग नहीं हो रहा है, है? वैष्णव और शैव नहीं हुए धागा, मैं हमेशा बताया करता हूं ना। तो कुछ सांप्रदायिक में सांप्रदायिक चिन्ह होता है ना, तिलक है, आप लोगों ने देखा है ना। कुछ रामानुजी हैं, बड़े तिलक उर्ध पूर्ण लगाते हैं, उर्ध और यहां से लेकर, और निम्बार की तो यहीं से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं निम्बार की, करते हैं कि नहीं, देखा है कि नहीं? निम्बार के लोग तिलक कहां से शुरू करते हैं? यहां से, हाँ, नासिका से। और रामानुजी लोग यहां से त्रिशूल बनाते हैं, और सन्यासी लोग ऐसा, देखा है ना, उर्ध्रपुंड तिरछापुंड। तो ऐसा लगाया होगा तो क्या पता चलेगा, ये जरूर शैवपंथी है। ऐसा लगा होगा तो क्या वो निश्चय होगा, ये कोई राम भक्त या विष्णु भक्त है, वैष्णव है नहीं? अब वैष्णव शैव, शैव वैष्णव की झगड़ा चलती है। हम तो वैष्णव हैं भाई, हम तो शैव हैं, तो हम कभी कभी मजाक में कहा करते हैं, ये झगड़ा मत करो भाई। तुम जो, हम जो है ना, दिन भर तो शैव होते हैं, रात को वैष्णव होते हैं, पता है कि नहीं? कैसे ऐसे सोएंगे तो क्या होगा, बोलो, हमारी तिलक कैसे हो जाएगी ऐसे सोएंगे तो? वैष्णव का तिलक होगा कि नहीं, खड़े होंगे कि नहीं, करवट से ऐसे सोएंगे तो हम वैष्णव होंगे कि नहीं? रात को ना, दिन में हम शैव हैं, रात को हम वैष्णव हैं। आप विचार करो, वैष्णव लोग रात को सोएंगे तो क्या होंगे, शैव होंगे नहीं? रात को सोएंगे तो उनका तिरछा होगा कि नहीं? तिलक दिन में खड़ा होगा, रात में सोएंगे तो तिरछा हो जाएगा, और हमारा दिन भर तिरछा रहेगा, रात को सोते ही खड़ा हो जाएगा। तो कौन वैष्णव कौन शैव, ये तिलक को खड़ा और तिरछे को लेकर क्यों विवाद करते हो? अरे भाई, खड़ा और तिरछे के बिना तो तुम नंगे हो जाओगे। तुम्हारे जो कपड़े पहन रखे हो वो क्या है? तंतु संयोग है। तंतु संयोग कैसे हुआ है? एक धागा खड़ा है, दूसरा धागा तिरछा है, दूसरा खड़ा है, फिर तिरछा है, फिर खड़ा है। धागों के खड़े और तिरछे के अलावा और कुछ है इसमें? है, बोलो, ये कपड़े में कुछ धागे तिरछे और कुछ धागे खड़े, खड़े और तिरछे सभी धागे को एक ही तरफ यदि रखा जाए तो कपड़ा बनेगा? है, खड़ा जितने हैं उतने तिरछा भी होना पड़ेगा कि नहीं? आधा वैष्णव आधा शैव, लेव जी, ये कपड़ा वैष्णव है कि शैव?

0: ये कपड़ा साइबा है कि वैष्णव है, बोलो। दोनों है और क्या। अब साइबा है करके इसका त्याग करना वैष्णवों के द्वारा होगा, और वैष्णव है करके इसका त्याग करना साइबों से होगा। जैसे साइब और वैष्णव मिलकर एक कपड़ा बना, तो दोनों को दो कपड़ा स्वीकार करना है, तो साइब को भी वैष्णव स्वीकार करना है, वैष्णव को भी साइब स्वीकार करना है। हा? ये तिलक खड़े और तिरछे की तिलक की झगड़ा क्यों करते हो? ये खड़े और तिरछे की झगड़े में मत पड़ो। तो तंतु हो वा तंतु संयोग हो वा, कपड़े के प्रति कारण क्या है? तंतु है कि तंतु संयोग है। एक ने कहा मृत पिंड ध्वंस ही घट कार्य की उत्पत्ति के कारण है, दूसरे ने कहा तंतु संयोग ही पट उत्पत्ति में कारण है। ये कहता है कि वियोग कारण है, दूसरा कहता है संयोग कारण है। ले जी ये सब क्या है बेचारा, ये सब बुद्धि का विलास। शंकराचार्य क्या प्रहार कर रहे हैं इन लोगों के, खुद भी इससे अलग नहीं है वो। घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपी च धूमोग्निरचल, पटो वा तंतुर्वा परिहरति किम घोर समनम, वृथा कंठ क्षोभम। अरे तंतु संयोग को कारण मानने वाले, घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम कहने वाले, क्या तुम्हारा ये तर्क वितर्क वूहा पोह, जिस समय में घोरम वो यमराज उपस्थित होगा, तो उस समय क्या तुम्हारा तंतु और तंतु संयोग ये निश्चय क्या यमराज से बचा पाएगा? बोलो बचा पाएगा? जिस समय मृत्यु सामने आएगा, वह घड़े का उपादान कारण मिट्टी या मिट्टी का पिंड या पिंड ध्वंस, ये बुद्धि क्या उस समय यमराज से तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? शंकराचार्य कह रहे परिहरति किम घोर समनम, घोरम माने संसार, घोर माने मृत्यु, क्या उससे तुमको बचा पाएंगे ये सब? जब ये तर्क वितर्क वहा पोह तुम्हें मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, तो वृथा कंठ क्षोभम, तो फिर बिना मतलब का जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर शास्त्रार्थ करके समय व्यतीत समय बर्बाद क्यों करते हो? हैं बोलो हैं? तो हमने पहले भी कहा है, पढ़ते थे ना हम लोग, तो कोई कहे पढ़ना चाहिए, हाँ बहुत मेहनत करके पढ़ा करो कहता है ना, तो हम कहते पठितव्यम तो मर्तव्यम, न पठितव्यम तो मर्तव्यम, फिर रटा रटम किम कर्तव्यम। पढ़ो तो भी मरना है, न पढ़ो तो भी मरना है। फिर ये ऐ उण रे लृक, ऐ उण रे लृक, भी क्या करना है, ये सब करके क्या करना है, हैं? देख लो। तो इसी तरह शंकराचार्य ने एक जगह भी कहा है ना, नहीं नहीं रक्षते डुक्रे कारण है भज गोविंदम, ये उसी से संबंधित है। ये वृथा कंठ क्षोभम वहसी तरसा तर्क वचसा, बिना मतलब तर्क कुतर्क वितर्क करके वहा पुह करके, एक तो अपने प्रत्यक्ष कंठ को भी तुम दुखा लो सुखा लो, कंठ सुखा सुखा कर तुम ये सिद्ध करने अपना सिद्धांत सिद्ध करने की कोशिश करोगे, तो तुम जो सिद्धांत सिद्ध करोगे और शास्त्रार्थ में तुम विजय होगे, तो वह विजय मृत्यु पर विजय कर पाएगा कि नहीं है? बोलो। शास्त्रार्थ में तुम्हें जो विजय मिलेगा वह विजय क्या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराएगा? तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो किसी ने पूछा कि फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने का उपाय क्या है, मृत्यु पर विजय पाने के उपाय क्या है महाराज? शंकराचार्य ने कहा पदाम्भोजम संभो, एक उपाय है भाई, क्योंकि उसका नाम है मृत्युंजय। शिव का नाम शास्त्रार्थ विजय नहीं है, शिव का नाम क्या है? मृत्युंजय। घटोवा तंतुर्वा इत्यादि शास्त्रार्थ करके शास्त्रार्थ विजय किया शिव ने, ऐसा कहीं नहीं है। तो भगवान शिव के पादाम्भोज।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागो यः सहौजो मयि प्राणापानौ जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनिषो वा तितृणं बृहस्पति

ಶನ್ನೋ ಭವತು ಭುವನಶ್ಚಯಸ್ಪತಿ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮೇ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗುಂಸ್ತನೋಭಿರ್ವ್ಯಸೇಮದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಧಸ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಖಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ. ಪ್ರೇಮ್ ಸಿ ಬೋಲಿಯೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಗವಾನ್ ಕೀ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಗವಾನ್ ಕೀ. ತೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹೇತುಕಿ ಅನುಕಂಪಾ ಸೇ ಸ್ವನಾಮ ಧನ್ಯ ಪ್ರೇಮಪುರಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾ ಸ್ವರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮನಾ ರಹೆ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕಿ ಉಪಲಕ್ಷ ಮೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾ ಸಮಾಯೋಜನ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೀ ತರಫ ಕೈಸೆ ಬಢ್ನಾ, ಯಹಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕೆ ಜೀವನ ಕಾ ಲಕ್ಷ ಹೋತಾ ಹೈ. ಚಾಹೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋ ಯಾ ಭೌತಿಕ ಜೋ ಮಕಾನ್ ದುಕಾನ್ ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೋ ಪ್ರಸಂಗ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ ಅಕಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಅಕಾಂಡ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಸಮಯ ಮೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತಲಬ ಕಿ ಚೌದಹ ಭುವನ. ಚೌದಹ ಭುವನ್ ಭಿ ಅರ್ಥ ಹೈ ತ್ರೈಲೋಕ ಭಿ. ಚೌದಹ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಸಾತ್ ನೀಚೆ ಔರ್ ಸಾತ್ ಊಪರ್. ನೀಚೆ ಕೆ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಅತಲ್ ಬೀತಲ್ ಸೂತಲ್ ತಲಾತಲ್ ಮಹಾತಾಲ್ ಪಾತಾಲ್, ಔರ್ ಊಪರ್ ಕೆ ಭೂಲೋಕ್ ಭುವಲೋಕ್ ಭೂ ತೋ ಇಸ್ ಪರ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬೈಠೆ ಹುವೆ ಹೈ. ಭುವ ಸ್ವ ಮಹ ಜನ ತಪ ಸತ್ಯಂ. ತೋ ಭೂರ್ ಭುವ ಸ್ವ, ಸ್ವ ತೋ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಹೈ ದೇವತಾಂ ಕಾ, ಔರ್ ಆಗೆ ಜೋ ಮಹ ಜನ ತಪ ಸತ್ಯಂ ಹೈ ಈ ಚಾರ ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಆತೆ ಹೈ. तो चौदह लोक को कहते हैं ब्रह्मांड. जिस प्रकार से किसान पहले खेत में हल चलाता है, हल चलाने के बाद सफाई करता है, सफाई करने के बाद बीज डालता है, बीज डालने के बाद जब विस्तार होता है तो उसकी सुरक्षा देखरेख करता है, जल का सिंचन करता है, और चार महीने के बाद पुनः जब धान गेहूं पक जाते हैं तो वही किसान जिसने कि बीज डालकर उसको बोया, बपन किया, पालन किया, सुरक्षा किया, चार महीने के बाद पुनः उपसंहार करता है. यदि वह किसान उपसंहार न करे तो अनाज सड़ जाएंगे, न उसके काम आएंगे न किसी दूसरे काम आएंगे, नष्ट हो जाएंगे, गंदगी फैलेगी, महामारी फैल सकती है. तो समय से यदि बीज का वपन हो, उसका रक्षा हो, पालन हो हिंसक पशुओं से, और फिर पकने के बाद जब कटाई हो तो उचित कहते हैं, उसका सदुपयोग होता है. इसी प्रकार से यह जो ब्रह्मांड है इसके एक निर्माण का काल होता है, दूसरा है पालन काल रक्षा काल, तीसरा है उपसंहार काल.
1000 चतुर्युगी बीतने के बाद उपसंहार का समय आता है, ये पूरा ब्रह्मांड पक जाता है। समझो कठोपनिषद में जब नचकेता को उनके पिता ने आवेश में कह दिया कि मृत्यवे त्वाम ददामी, बार बार नचकेता पूछता तत्त कस्मै माम दाससि, हे तात आप मुझको किसको देंगे? बूढ़ी बूढ़ी गायों को तो ब्राह्मणों को साधुओं को दे रहे हैं, पर आप मुझको किसे देंगे? जब बालक बार बार जिद किया तो आवेश में आने के बाद नचकेता के पिता गौतम कहते हैं कि मृत्युवे त्वा ददामि, मृत्यु को मौत को देता। जब ऐसा आवेश में कह दिया तो जब नचकेता जाने लगे तो पिताजी बहुत दुखी हो गए। तो पिता को वहां पर एक दृष्टांत देके नचकेता ने समझाया, शस्मीव मर्त्यः जायन्ते पच्यन्ते च। शस्य बोलते अनाज को, धान को। जैसे अनाज समय से वपन होता है, पालित होता है, रक्षित होता है, बाद में नष्ट हो जाता है, ऐसे ये ब्रह्मांड समय से उत्पन्न हुआ, पालन हुआ, विस्तार हुआ, श्रृंगार हुआ, इसके बाद में पुनः इसका उपसंहार। तो यहां पर अकांड ब्रह्मांड क्षय को देख करके जब देखा यहां पर देवताओं ने, असुरों ने, कि असमय में ही ब्रह्मांड का क्षय होने जा रहा है, ब्रह्मांड के उपसंहार का समय निर्धारण किया है 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद महाप्रलय होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, कल्पना कर लो 43,00,000 और 20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी कहलाता है। उसमें हजार का गुणा कर दो, उतने दिन के बाद महाप्रलय होता है, महाप्रलय का समय आता है। परंतु यहां पर महाप्रलय के पहले ही अचानक जब देवताओं ने, असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकलने के बाद सभी घबराए, देवता लोग पहले इंद्र के पास गए बचाओ बचाओ, असुर सम्राट बलि के पास गए बचाओ। बलि ने कहा कि मैं भी नहीं बचा सकता, इंद्र ने कहा मैं भी नहीं बचा सकता। बलि और इंद्र मिलकर भगवान विष्णु के पास आए, बोले कि रक्षा मंत्रालय आपके पास है, जैसे रक्षा मंत्री हमारे देश में होते हैं ना, आप ही रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कि इससे तो मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूं, चलो हम सभी चलते हैं महादेव के पास। देखो भगवान विष्णु के उपासक देवता और मनुष्य है, कुछ गिने चुने असुर भी हैं, प्रहलाद इत्यादि बहुत कम, पर भगवान शंकर के उपासक सभी हैं, असुर भी हैं, दैत्य भी, दानव भी, मानव भी, निष्पक्ष सभी उपासना करते हैं। जब भगवान शंकर के पास गए कैलाश, तब जाकर भगवान शंकर ने उस हलाहल विष का समन किया, समाधान किया। इसके बाद क्रम से ऐरावत, उच्चैःस्रवा, कस्तुभमणि, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, वारुणी भी उत्पन्न हुआ, फिर अंत में अमृत कलश उत्पन्न हुआ। तो हमारे जीवन में भी ये मंथन चल रहा है, वहां पर तो देवता और असुर मिलकर मंथन किए, परंतु उसका वेदिष्ठान भगवान विष्णु ही थे। वेदांत का सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोच्च ग्रंथ अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य और चित्सुखी, ये तीनों उच्चतम ग्रंथ माने जाते हैं। तो अद्वैत सिद्धिकार ने मंगलाचरण में वहां विष्णु भगवान को नमस्कार किया है, और विष्णु का अर्थ किया है व्यापक चैतन्य, यह जीव है, व्यापक चैतन्य है,
यही समझो कि विष्णु है, क्योंकि विश्ली व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति होती है। वहां विष्णु शब्द का साक्षात ब्रह्म अर्थ किया, आत्मार्थ किया है, और वहां पर उसी तत्व को अद्वैत सिद्धिकार ने नमन किया है। तो यहां पर भी देवासुर जब मिल करके क्षीर सागर का मंथन करते हैं तो भगवान विष्णु हर जगह अधिष्ठान बनते हैं। सर्वप्रथम जब मंदराचल को लाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी जब देवताओं ससुरों से नहीं उठा तो भगवान विष्णु उठा करके गरुड़ पर लेकर के आते हैं। जब समुद्र में डाला, मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल नीचे जाने लगा, भगवान विष्णु कच्छप बन करके अपने पीठ पर धारण किए। जब देवासुर मंथन करने लगे, मंथन करते करते थक गए, बेहोश हो गए, उस समय भगवान विष्णु स्वयं ही चतुर्भुज हो करके मंथन प्रारंभ किए, तब जाकर के अमृत सिंधित हुआ। तो यहां पर भी हमारे जीवन में मंथन चल रहा है। देव शब्द का अर्थ है द्योतनात देवाहा, ये प्रकाश स्वरूप देवता है, और असुर है अंधकारमय। ईशावास्य जो अथर्वेदीय उपनिषद है उसके तीसरे मंत्र में आता है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस तिप्रेत्य विगच्छन्ति एके चात्म हनोजनः। तो आसुर अंधकार के प्रतीक हैं, दैव प्रकाश के प्रतीक हैं, और हम जब से पैदा हुए तब से मंथन चल रहा है। ये रात ही समझो कि आसुर है, और दिन आपका दैव वृत्ति है, और रात दिन से ही छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक मंथन चल रहा है। यहां पर रस्सी है प्रारब्ध कर्म, उपनिषद में कहा है प्राण बंधन एव सौम्य मनः। ये जो जीवात्मा है प्राण बंधन वाला है, अपने प्रारब्ध कर्मों के बंधन से शरीर में है। तो प्रारब्ध कर्म की जो रस्सी है, विषमी वासनाएं कामनाएं हैं, उसके द्वारा आपका मंदराचल शरीर है। क्योंकि किसी मंत्र का या पौराणिक कथानक का तीन अर्थ होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो जो पुराण में कथा है वह तो आदि दैविक है, परंतु अध्यात्म हम विचार करके देखें तो ये दिन रात ही समझो कि आसुर और दैव है। इन दोनों के बीच में हमारा स्थूल शरीर जो अचल है, जड़ है, यही जो है मंदराचल है। और प्रारब्ध कर्म में जो वासनाएं कामनाएं हैं, इससे इसका मंथन चल रहा है। जब मंथन होता है तो अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक मतते मतते अंत में हम इतने थक जाते हैं, जैसे कि देवता भी थक गए, असुर भी थक गए, दोनों मूर्छित पड़ गए। ऐसे ही दिन रात रूपी इस दोनों पक्षों के द्वारा हमारा शरीर 100 वर्ष के पहले ही, हालांकि उपनिषद के अनुसार सामान्य आयु 100 वर्ष की बतलाई गई है, सदगुण समाह, परंतु सदगुण समाह उसके लिए है जो जीवन में सत्कर्म करता हो। अथर्वेद का जो ईशावास्य का दूसरा मंत्र है, कुरुवन नेवे कर्माणि जी विशिष सद्गुण समाह एवं त्वयि नान्य थैतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि आप अच्छी तरह से 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं तो सत्कर्म करते हुए जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु काल के प्रभाव से 100 वर्ष तो क्या 50 पार करते करते ही
बुढ़ापे के सारे लक्षण आ जाते हैं और हमारा शरीर इंद्रियां बिल्कुल मथ जाती हैं। और यदि आप समझकर मथेंगे तब तो नवनीत निकलेगा मक्खन, अन्यथा उल्टा होता है, पूरा दूध अपने शरीर पर आ जाता है। मथने का भी एक तरीका होता है। जिन माताओं ने बहनों ने कभी कभी मथा नहीं है उनको दे दो यदि मथने के लिए तो विपरीत हो जाता है। तो हम लोग भी ये जो काल है रात और दिन, इसके द्वारा प्रत्येक दिन मथित हो रहे हैं और अंत में शरीर इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि आंख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई भी नहीं पड़ता है और पैर से ठीक से चला भी नहीं जाता है। उस समय यदि आप सच्चे हृदय से भगवान विष्णु को पुकारें तो निश्चित ही भगवान चतुर्भुज से जब मथेंगे तो मंथन करने से इसी शरीर में जीवन नेव अस्मि नेव लोके अमृत का श्राव होगा। मरने के बाद किसने अमृत देखा है, परंतु भगवान भाष्यकार करते हैं जीवन नेव, इसी जीवन में इसी शरीर से आप यदि ठीक से मंथन करें, भगवान पर समर्पित हो जाएं, तो निश्चित जीवन में अमृत का श्राव होता है। जब तक अहंकार होता है, जैसे कि देवताओं को अभिमान था, असुरों को अभिमान था कि हम बड़े पराक्रमी, बड़े तेजस्वी, बहुत बलवान है, तो अपने बल से उस मंद्राचल के द्वारा मंथन तो करते रहे और मंथन से सारी चीजें मिली, उनको लक्ष्मी भी मिल गई, धन भी प्राप्त हुआ, कस्तु मणि भी मिली, साजबाज के जो सामान थे, हाथी घोड़ा ही मिला, गाड़ी भी मिल गई और बारूणी भी मिली, बारूणी शराब को बोलते हैं, वो अभी उपलब्ध हुआ, सब पी के मस्त हो गए। इसके आगे भी मंथन जारी रहा, परंतु जब तक दोनों के मन में अभिमान था तब तक अमृत का आविर्भाव नहीं हुआ। जैसे ही दोनों बिल्कुल सिलेंडर बोल दिए, हाथ खड़ा कर दिए, अब हमारे बस की नहीं, अभिमान जब दोनों का समाप्त हो गया तब जाकर के भगवान विष्णु के सामर्थ्य तुरंत अमृत आविर्भूत हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में यह जो सीमित अहंकार है, अभिमान है कि अयम अहम अस्मि, यह मैं हूं, और यह अहंकार सबके मन में है। अत्यंत गरीब से गरीब हो या अमीर से भी अमीर हो, पंडित से भी महापंडित हो या महामूर्ख हो, सबके मन में अहंकार होता है। जैसे दर्पण के सामने कोई भी जाए, जो भी दर्पण के समक्ष जाता है वह अपने को संवार करके बहुत सुंदर समझता है, मैं बिल्कुल सबसे सुंदर हूं। कोई अपने कुरूप नहीं मानता है, जो काला कुल्टा व्यक्ति है वह भी दर्पण के सामने श्रृंगार कर लेता है अपने हिसाब से और सबसे अच्छा ही मानता है। दर्पण का स्वभाव है दर्पयति दर्पण, जो दर्प पैदा करे उसका नाम दर्पण है। द्रिप धातु अहंकार अर्थ में होता है, द्रिप धातु अभिमाने अभिमान अर्थ में है। अभी और मान दो शब्द है, अभी का अर्थ है सर्वतः और मान में मांग माने धातु है। मान बोलते परिमाण को, जैसे कि 5 किलो चावल है, 10 किलो गेहूं है, तो सर्वत्र सभी तरफ से आप अपने शरीर के परिमाण को मान बैठते हैं कि बस मैं तो पुरुष ही हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो नारी हूं। इस प्रकार के मान्यता विशेष का नाम है अभिमान, और यह अभिमान ये बिल्कुल समझो कि जैसे कि बिना सीमेंट के बालू से दीवार बना दें वैसा ही है। जरा सी हवा आई तुरंत बालू की दीवार गिर जाती, ऐसे अभिमान है। परंतु मनुष्य जब तक अभिमान पाले रखता है तब तक अमृत की उपलब्धि नहीं हो सकती। सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, परंतु जो आपके जीवन का लक्ष्य अमृत, शांति,
उसकी उपलब्धि असंभव है। ये जो आख्यायिकाएं होती है इसका तात्पर्य होता है सुख पूर्वक उस आत्मा का साक्षात्कार करना। भगवान शंकराचार्य बार बार कहते हैं सुख प्रतिपत्यर्था आख्यायिका भवंती। कहानियों के द्वारा कथा के द्वारा उसी दुर्गम तत्व को सुख पूर्वक बताया जाता है। तो यहां पर जो देवासुर संग्राम है इसके द्वारा मनुष्य के जीवन को चित्रित किया कि हम अपने पुरुषार्थ से शारीरिक बल से ऐन्द्रिक बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं पर शांति नहीं मिल सकती। हम भले ही शांति के संसाधन को एकत्रित कर ले, मकान बना ले, धन कमा ले, पद में प्रतिष्ठित हो जाए, मान सम्मान को प्राप्त कर ले, फिर भी जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति, अशेष दुखों से छुटकारा पाना, यह नहीं मिल पाता है। इसके लिए तो पूर्ण रूप से समर्पण की आवश्यकता होती है। तो यहां पर भी अकांड ब्रह्मांड छह चक्र देवासुर कृपा, जब असमय में कोई अघटित घटना घटती है तो मनुष्य को परेशानी हो जाती है। असमय मतलब बिना समय के। एक महात्मा जी किसी के घर आए, अचानक जब पधारे तो बड़ा ही अच्छे ढंग से भक्त ने स्वागत किया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद आरती उतार कर दक्षिणा दे के विदाई किया, कहा महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिए कि जा तेरा दादा मरे, तेरा बाप मरे, है ना, कि तेरा बेटा मरे, तेरा पोता मरे, आशीर्वाद दे के चलने लगे। अब सब परेशान, बोले कि महाराज जी हमने सेवा में कोई गलती तो नहीं हो गई, आप आशीर्वाद दे रहे कि श्राप दे रहे। महात्मा जी बोले देख भाई आशीर्वाद है श्राप नहीं। बोले क्यों? बोले अकांड ब्रह्मांड छह न हो इसलिए हमने ऐसा आशीर्वाद दिया। असमय में दादा जीते रहे, बाप जीते रहे या तू न मर जाए, इसलिए हमने कहा मौत तो तेरे घर में आनी है पर अकाल मृत्यु नहीं होगी। पहले तेरे दादा पर दादा का शरीर छूटेगा, इसके बाद तेरे पिता का, इसके बाद तेरा, इसके बाद तेरे अपने पुत्रों का। तो देखो संतों के वचन बड़े जो है ना व्यंग्यात्मक होते हैं। और यदि मान लो दादा जीते हो, पिता जीते हो और पोता चल बसे तो कितनी तकलीफ होती है। तो यहां पर भी जो प्रलय का समय निर्धारित है 43,20,000 वर्ष, में 1,000 का गुणा कर दो, उतने दिन के बाद महाप्रलय होना चाहिए, पर बीच में जब प्रलय होने लगा तो बेचारे देवता ही परेशान और आसुर भी परेशान। ऐसे ही हमारे जीवन में ये रात दिन रूपी दैवी वृत्ति आसुरी वृत्ति के द्वारा जो आपके शरीर रूपी मंदराचल का वासना रूपी रस्सी से जो मंथन चल रहा है, तो मंथन होगा तो निश्चित हलाहल भी निकलेगा, ऐश्वर्य की उपलब्धि भी होगी, पर अमृत को पाना होगा तो भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है। 14वां श्लोक, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेय स्यासीद्य त्रिनयन विषम संधितवत।

0: जब देवता और असुर दोनों असमय में ब्रह्मांड के नाश को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, उस समय भगवान शंकर कृपा करके हलाहल विष का पान किए। हमारे भी जीवन में जब हलाहल विष के समान ये दुख का जहर होता है, उसको केवल भगवान शंकर ही हजम कर सकते, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह अधिक दुख को सहन कर सके। जब बहुत अधिक दुख आता है तो या तो हार्ट अटैक हो जाता है या मूर्छित हो जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो आप सामान्य दुख को तो सहन कर सकते,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 32.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Bhakti Shakti Samta Vasal Me Matao Asni Me Vehno Aap Sarubandhu Taittiriya Aranyaki कि यह जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसको लेकर के प्रसंग चल रहा है कि जब जीवन के अंतर्गत हमारे में वो बल आ जाता है जिस बल के द्वारा हम अपने लक्ष्य को लक्षित कर सकते हैं, ऐसे उस बल की चर्चा की, उसके लिए याचना की, उसके पश्चात संकेत किया, बल प्राप्त होने पर भी जब तक हमारे जीवन के अंतर्गत स्वयं प्रसादता नहीं आती, आचार्य आदि की प्रसादता नहीं होती, शास्त्र की प्रसादता नहीं होती, परमात्मा की प्रसादता नहीं होती, तब तक लक्ष्य का हम मार्गन करते हुए भी उस लक्ष्य को लक्षित नहीं कर पाते, तब तक हमें उसकी जो है प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए संकेत किया कि आचार्य आदि की अपनी आदि प्रसादता होना आवश्यक। अपनी प्रसादता को और आचार्य की प्रसादता को यहां विशेष रूप से संकेत किया और उसको लेकर के ही संकेत करते हुए कहा कि जो विस्पष्ट रुचि ना, तो विस्पष्ट रुचि शब्द से यही संकेत किया कि विस्पष्ट रुचि क्या है, तो जिस रुचि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। रुचि तो हमारी है, जिज्ञासा हमारी है, लेकिन उस जिज्ञासा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, अर्थात उसमें न तो कोई संशय है, न कोई विपरीत भावना है और न असंभावना है। इस प्रकार से भावना, विपरीत भावना, संशय आदि से रहित होकर के जब हम अपने लक्ष्य की जिज्ञासा करते हैं तो इसका नाम ही है विस्पष्ट रुचि नाम। और ये जब हमारे अंदर आ जाता है तब ही सच्ची जिज्ञासा हमारे जीवन में आती है, सच्चा बल आता है और उस बल के अनुसार जब हम मार्गन करते हैं तो संयोग के लिए, जैसे नेत्र में देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती, और वैसे ही यहां पर कहने लगे उस लक्ष्य को लक्षित करने के लिए अपना बल होते हुए, अपनी जो है प्रसादता होते हुए, और जब आचार की प्रसादता हो जाती है तो फिर हमें वह अपना लक्ष्य लक्षित करने में सुगमता हो जाती, क्योंकि वह जो शास्त्र है, शास्त्र की प्रसादता कब होगी, तो शास्त्र की प्रसादता कराने में आचार ही सहयोगी है। जब तक आचार्य इसकी गुत्थियों को नहीं खोलता तब तक जो है शास्त्र की प्रसन्नता भी हमारे ऊपर नहीं हो पाती, और इतना सब हो जाने के पश्चात फिर अंत में आती है उस परमात्मा की प्रसादता। और जब ये तीनों प्रसादताएं इकट्ठी हो जाती हैं तो परमात्मा की प्रसादता तो हो ही जाती। इसलिए श्रुति के अंतर्गत जो संकेत किया गया, कहा पहले तो ये कह दिया कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, तो बल चाहिए, बल हो गया। अब कहने लगे बल होने के बाद भी यदि नहीं मिलता, कहा ऐसा नहीं, यदि ये तीनों प्रसादताएं इकट्ठी हो गई तो कहने लगे फिर क्या होता, तो संकेत कर दिया इमे वैश विरुड़ते तेन लभ्य, संकेत कर दिया, कहा वो उसी को प्राप्त होता। कहा किसको, कहा जिसने उसका वरण कर लिया, जिसने उसी को अपना लक्ष्य बना लिया, उसी को वह प्राप्त हो जाता। दोनों तरफ से इसका अर्थ लिया जाता, अथवा उसने जिसको वर्ण कर लिया वह, या उस ईश्वर ने जिसको चयनित कर लिया तो कहने लगे उसे भी प्राप्त हो जाता। कहा प्राप्त होता तो कैसे होता, तो वहां क्या कहा, विव्रते स्वयं, माने वो अपने को उसके सामने प्रकट कर देता है, अपना अपरोक्ष करा देता, तनुष्वाम ऐसा करके वहां संकेत कर दिया। तो ये जो चर्चा की गई उसको लेकर के ही यहां पर संकेत कर रहे हैं कि शास्त्र का जो सार है, शास्त्र का जो तत्व है, शास्त्र की जो यथार्थता है, या शास्त्र का जो रहस्य है, इसलिए कहा तैतीरक सारस्य। तो इस तैतरीय उपनिषद का सार क्या है, इसका तत्व क्या है, इसका यथार्थ क्या है, तो आगे चल के प्रसंग आएगा। उस प्रसंग में भी महाराज जो वरुण हैं, उन वरुण ने भृगु को जो है उस सार को बतलाने के लिए और संकेत किया, और संकेत करते हुए क्या कहा, तो आगे चल करके आगे की वल्ली में चर्चा आएगी। वरुण ने जब भृगु को अधिकारी समझा तो अधिकारी समझ करके वरुण से संकेत किया कि यतो वा इमान भूतान जायन्ते एन जातान जीवन्ति यत् प्रियन्ति अविसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। संकेत किया कि वास्तव में वह ब्रह्म या सार या तत्व क्या है, तो संकेत करते हुए कहा कि वह ब्रह्म जो है उसके लक्षण की, सीधे सीधे उसका निर्वचन नहीं हो सकता, इसलिए उसे अनिर्वचनी भी कह दिया। तब संकेत किया कैसे, तो संकेत करते हुए बतलाया कि जहां से यह संपूर्ण सृष्टि होती है, इमान भूतान जायन्ते, ये जितने भी जो है यह करके आप जानने वाले हो, तो यह रूप जगत जहां से होता है, इमान भूतान जायन्ते, और कहने लगे जहां से उत्पन्न होकर के जिसमें जो है अनुप्राणित होता है, जीवित रहता है, स्थित रहता है, और कहने लगे अंत में उसमें ही लीन हो जाता। ऐसा जो कारण है वह कारण ही क्या है, कहा ब्रह्म है। ऐसे उस ब्रह्म को कहा क्या करो, तो कहा इन लक्षणों के द्वारा उसकी खोज करो, देखो कि वस्तु का स्रोत क्या है, वस्तु कहां से आ रही, और वस्तु की स्थिति किसमें हो रही, और वस्तु का अभाव किसमें हो रहा। इन लक्षणों के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा, इन पदों के द्वारा उसका जो है आप अन्वेषण करो, उसकी खोज करो। और इतना ही नहीं कहते हुए, यदि गीता को कहा गया सर्वोपनिषदो गावो, संपूर्ण उपनिषदों का जो है क्या है, उपनिषदें तो सार है ही, लेकिन सार का भी सार, सार का भी, जैसे घी क्या है, सार है, लेकिन उस घी में भी सार विद्यमान है, तो घी में सार क्या, जैसे कल चर्चा की मंड, मंड क्या है, उस घृत का भी सार है, सीता से तो प्रश्न में इसकी चर्चा आती। तो ऐसा जो सार है, कहने लगे वह सार ही, तो तैतरीयक जो उपनिषद है वो सार है, और उसका भी सार, और उसके सार को किसने निकाला, तो कहा भगवान कृष्ण ने, और भगवान कृष्ण ने निकाला तो किस रूप में निकाला, कहा गीता के रूप में, और गीता के रूप में जब उन्होंने निकाला, तो निकाल करके जब उन्होंने सार दिया, तो उन्होंने क्या कहा, सार में से सार निकाल के दिया, तो क्या कहा, जैसे यहां पर भृगु के प्रति वरुण कह रहे हैं कि उसको कैसे प्राप्त करना है, उसका मार्गन कैसे करना है, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। पंद्रहवें अध्याय को अक्सर लोग भोजन के समय भी बोलते हैं, और लगभग लोगों को याद भी है, तो उसके अंतर्गत देखें भगवान क्या कहते, भगवान ने कहा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद को, उस लक्ष्य को लक्षित करो, उस लक्ष्य को खोजो, उसका अन्वेषण करो, उसका मार्गन करो। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, कहा कौन सा पद, तो विशेषता भी बतला दी, क्योंकि प्राणी मात्र की स्थिति क्या है, बगैर लाभ की हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। तो लाभ भी दिखला दिया, लाभ क्या दिखलाया, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, जिसमें जाकर के, जिसको प्राप्त करके फिर वापस नहीं आना पड़ता, मतलब सीधा कह दिया माने फिर मृत्यु नहीं होती, मृत्यु से वह पार हो जाता है। तो यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, और फिर आगे क्या कहा, ये आचार्य ने अपनी प्रसादता दिखा दी, क्या कहा, थोपा नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है। कहा कि ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, तमेव उसको ही, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, मने ऐसे उस पुरुष की, ये नहीं कहा कि तुम शरण लो, ध्यान देना, अर्जुन से भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जो है ऐसे उसकी खोज करो और ऐसे उसकी शरण, ये तो कहा उसकी खोज करो, लेकिन ये नहीं कहा कि उसकी शरण लो। तो कहने लगे फिर क्या कहा, तो क्रिया है प्रपद्ये, प्रपद्ये क्रिया जो है उत्तम पुरुष की है, प्रपद्ये क्रिया किसकी है, उत्तम पुरुष की है। संस्कृत के व्याकरण में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष में सात अहुते करके माने ओह वे दोनों वे सब ये सब आता है, मध्यम पुरुष में तुम दोनों तुम सब ये आता है, और उत्तम पुरुष में क्या आता, मैं है या हम दोनों या हम सब ये आता। तो जब क्रिया वहां पर उत्तम पुरुष की है तो उस क्रिया के साथ संबंध भी उसी पुरुष के कर्ता का लगेगा। अब भगवान ने कहा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ऐसा जो पुरुष जो समस्त इनका कारण है, आदि शब्द से संकेत कर दिया, ऐसे उस पुरुष को क्या है प्रपद्ये, तो प्रपद्ये के साथ अहम लगेगा, मैं उसके प्रपदों को ग्रहण करता हूं या मैंने उसकी शरण ली। ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम शरण लो, ये बड़ी विलक्षण बात है, मैं उसकी शरण लेता हूं, ये भगवान ने कहा। और कहा किसकी शरण लेते हो, तो ठीक जो वरुण ने भृगु के प्रति कहा उसी का ठीक ठीक रूप जो है उपस्थित कर दिया, क्या कहा, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, ये सारी की सारी जो फैलाव है, ये सारी की सारी जो प्रवृत्ति हुई है वो कहां से हुई, यतः यस्मात् कारणात्, जिस कारण से हुई है, जिस तत्व से हुई है, ऐसे उस तत्व की ही मैं शरण लेता हूं, मैंने शरण ली। और कैसा है तत्व, तो विशेषता बतला दी कि जिस तत्व को या जिस पद को प्राप्त करके पुनः जो है मृत्यु नहीं होती, और ऐसे हुई उस पद के लिए तुम भी क्या करो, तो मार्गन करो, ये शब्द का। तो देखो कोई व्यक्ति व्यवहार में भी जिस चीज का प्रयोग कर लेता है और प्रयोग की हुई वस्तु का ही अनुभव जब दूसरे को बतलाता है तो दूसरे के लिए भी सुगमता हो जाती, और वो उस चीज को समझ भी लेता और वो भी समझाने में समर्थ होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये संकेत किया। अब आप लोग कहोगे कि भगवान को कृष्ण को शरण लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई और उन्होंने शरण क्यों ली, ये सारे प्रश्न आते। इसके विषय में जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, पितामह भीष्म जो है सरसैया पर लेटे हुए और युद्ध की सारी गतिविधियां वो जो है सरसैया पर लेटे हुए ही प्राप्त कर रहे हैं। अब जब युद्ध पर समाप्त हो गया, महाराज युधिष्ठिर को जो है राजा पद पर जो है राज्य का अभिषेक कर दिया गया, राजा बन गए, अब जो है युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण आदि को भाइयों को साथ लेकर के और पितामह भीष्म के पास पहुंचे। जब पितामह भीष्म के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके प्रति अपनी जो संपैथी होती है वो व्यक्त की और संपैथी व्यक्त करते हुए स्वागत करते हुए उन्होंने निवेदन किया और निवेदन करते हुए कहा, महाराज मैं जिस पद पर आया हूं, जिस स्थल पर आया हूं, उस स्थल से उस पद से मैं इस लोक के लिए ठीक ठीक कार्य कर सकूं, इसके लिए धर्म क्या है, राजनीति क्या है, लोकप व्यवहार क्या है, ये सारा उपदेश मुझे आप दीजिए, इसके विषय में मुझे आप बतलाइए। जब ऐसा युधिष्ठिर ने कहा तो पितामह भीष्म ने लोक व्यवहार, धर्म, राजनीति आदि सारी प्रक्रिया का काफी लंबा वर्णन किया और वो वर्णन भी कई दिन तक चला। और जब वर्णन कर दिया तो इन सब वर्णनों को सुनने के बाद युधिष्ठिर के मन में एक जिज्ञासा हुई और युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा हुई तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभो ये सब तो आपने बतला दिया और ये सब इस लोक तक सीमित है और अधरवादी से ज्यादा पढ़ लो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे हृदय में ये जिज्ञासा है कि इस लोका और अलोक आदि जो है इन दोनों से जो रहित स्थिति है और जहां पर मृत्यु की गति नहीं है, ऐसा जो तत्व है उस तत्व के विषय में आपने मुझे कुछ भी नहीं, तो मैं चाहता हूं कि उस तत्व के विषय में मेरे लिए आप कुछ निर्वचन करें, उस तत्व के विषय में मुझे बतलाएं। या जो परम शिव परम कल्याण करने वाला जो है ऐसे उस शिव के विषय में मुझे बतलाएं। ये जब जिज्ञासा उन्होंने व्यक्त की पितामह भी चुप हो गए, कुछ बोले, कुछ ठहर करके उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर बात यह है कि जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया है इस प्रश्न का सटीक जवाब जो तुम्हारे हृदयंगम हो सके ऐसा निर्वचन मैं नहीं कर सकता। मैं करूंगा तो, लेकिन वो तुम्हारे हृदय को छू जाए, तुम्हारे हृदय में उसकी स्थिति हो जाए, ऐसा निर्वचन मैं करने में असमर्थ। यदि इसके विषय में आप जानना चाहते हो तो भगवान कृष्ण तो पास में थे, तो इसके विषय में आप कृष्ण से पूछिए, कृष्ण ही इस चीज को बतला सकेंगे। क्यों? कृष्ण ने इस चीज का अनुभव किया, कृष्ण ने स्वयं शरण ली है, इसलिए कृष्ण ही उस शरणापन्नता का क्या रूप है इस चीज का निर्वचन कर सकते हैं। उस मार्ग को फिर उस तरह से तुम यदि मार्गन करोगे तो तुम्हें भी उस कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अब जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा हुई और आश्चर्य भी हुआ कि भगवान कृष्ण ने शरण कब ली और इनको शरण लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और ये जिज्ञासा जब हुई तो विशेष उत्कंठा हुई, विशेष उत्सुकता हुई और उन्होंने जानना चाहा तो कहा, महाराज आप जो कह रहे हैं ये बात मेरी समझ में नहीं आ। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर भगवान ने जो शरण ली और किस प्रकार से ली इसको आप इनसे सुनेंगे। और एक बात और बतलाऊं, भगवान कृष्ण ने शरण ली और इसके विषय में वहां निर्वचन भी किया कि अश्वत्थामा ने भी उस तत्व की शरण ली थी, उस शिव के उपासक अश्वत्थामा भी थे, इसलिए वहां प्रसंग महाभारत में आता है कि जिस समय अश्वत्थामा पांडवों के उस कैंप में जाना चाहता है और उस पांडव वंश का संहार करना चाहता है और जब ऐसा करना चाहता है तो उसने भगवान शिव की प्रार्थना

0: लेकिन मैं आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन बात यह है कि जहां कृष्ण होंगे और जहां अर्जुन होगा वहां पर जो है मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं। कहा क्या मतलब? कहा शरण तुमने भी ली है लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने भी मेरी शरण ली, और जैसी कृष्ण ने शरण ली है वैसी किसी ने नहीं ली। इसलिए जहां कृष्ण होंगे जहां अर्जुन होगा वहां मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा जब कहा तो ये सब सिद्ध क्या कर दिया कि भगवान ने शरण ली। अब प्रश्न हुआ कि भगवान ने शरण कैसे ली, तो युधिष्ठिर के प्रसंकेत किया इनसे जाऊं। भगवान के प्रति युधिष्ठिर ने संकेत किया कि प्रभु आप मुझे बताएं। तब तो भगवान श्री कृष्ण बतलाने लगे। ये चर्चा जो है भागवत आदि में नहीं, पुराण के अंतर्गत है, लेकिन ये चर्चा आपको शिव पुराण में मिलेगी। शिव पुराण के अंतर्गत ये चर्चा आती है, वहां पर इसका निर्वचन किया गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर एक बार सत्यभामा मेरी सेवा कर रही थी, सेवा करते हुए उसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, कहा कि प्रभो पुम नाम नरकः त्रायते पुत्रा, तो कहा हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं, अब हमारे कोई पुत्र नहीं है। ऐसा जब उसने कहा तो भगवान समझ गए पुत्र की इच्छा। भगवान ने कहा सत्यभामा तुम्हारे पुत्र तो है ही नहीं। जब कहा कि पुत्र है ही नहीं तो उसका मन खिन्न हो गया। जब मन खिन्न हो गया उदासीनता आ गई, तो उसने जानना चाहा कि क्या कोई उपाय नहीं। तो भगवान ने संकेत किया कि उपाय एक है, यद्यपि नियम तो यह है कि विधि के लिखे हुए अंक को कोई मेट पाता नहीं, लेकिन फिर भी वहां एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? तो कहने लगे मेटत कठिन को अंक भालु। भगवान शिव के विषय में कहा यदि भगवान शिव की अनुकंपा हो जाती है, यदि भगवान शिव की प्रसन्नता हो जाती है, तो भगवान जो है उस विधि के लिखे हुए अंक को भी मेट देते हैं, परिवर्तित कर देते। तो कहने लगे फिर इस उपाय को करो। कहा इस उपाय के लिए उनके शरण होना पड़ता है। तो सत्यभामा ने कहा फिर आप शरण लीजिए। भगवान चुप हो गए। भगवान से सोचा कि इसकी इच्छा को पूरा करना। भगवान जो है ऐसा जब समय उनके सामने आया रूप, तो भगवान ने केदारनाथ में पहुंचते। केदारनाथ के ऊपर अभी भी लोग बताते वो स्थल है जहां पर उपमन्यु ने भी तप किया था। उपमन्यु जहां पर तप करते रहे, उपमन्यु का जहां पर वास था, भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके शिव परायण होते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो उपमन्यु से ही उन्होंने मार्ग का निर्देश दिया। उपमन्यु ने जो है उन्हें उस भगवान शिव की शरण के लिए मार्ग का निर्देशन किया, और जब मार्ग का निर्देशन किया तो भगवान कृष्ण वहां रहे, और वहां कृष्ण रह करके क्या किया? तो प्रारंभ में तो जिसे आप पूजा कहते अर्चना कहते हो वहीं से प्रारंभ होता। भगवान ने भगवान शिव की जो है आराधना की, पूजा की। अब पूजा के लिए पुष्प चाहिए, नैवेद्य चाहिए, ये सब सामग्री चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से ही पुष्पों को वहां पर उगाना, अपने हाथों से पुष्पों का चयन करना, अपने हाथों से ही पुष्पों का जो है अर्पण करना, इस प्रकार से भगवान जो है शिव की आराधना करने।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

ये ध्यान जो कि विधि बतला रहा है और महत्व बतला रहा है, बतलाता हूँ। हाँ, यहाँ रह गया। यथे शिका तुला तुला मग्नो प्रोधम प्रदुयिता। देखो, एक इशिका होता है, इशिका उसमें घास होता है, उसके अंदर तुला, तुला माने कापूस जैसा होता है, कापूस है नी बात। जथा इशिका तुलाम अग्नो प्रदुयिता, अग्नि में डाल देता है तो अग्नि उसको जाला करके भस्म कर देता है, नहीं बात। तुला कहते क्या, कापूस को एक प्रकार का, नहीं बात। एक तुला होता है शिमर का, शिमल होते है ना, बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसमें, जो उसमें तकिया बनाता है, हाँ वो नरम होता है, उसका बहुत महंगा होता है, रेशम होता है, रेशम का। तो कहते जथा इशिका तुला मग्नो प्रोतम, यानी अग्नि में डाल दिया जाता है, प्रोतम माने डाल दिया जाता है, तो क्या करता है वो अग्नि, जाला करके भस्म कर देता है, यानी बात। तो ऐसे ही कहते हैं प्रदीयत एवं ही अश्य सर्वे पापान प्रदीयते, ठीक इसी प्रकार कहते, इसके तमाम पाप रूपी जो कर्म है, तमाम कर्मों को जला करके भस्म कर देते। अब यह समझ लेना, पाप रूपी कर्म को जलाता है तो पुण्य रूपी कर्म रह जाएगा, क्यों पुण्य क्यों जलाना चाहते हो आप लोग, नहीं। मान लो आपके अभिष्ट है, पाप दुख देता है, पाप जो है ना क्या करता है, दुख देता है, इसीलिए पाप को नाश करना तो अभिष्ट है, पर पुण्य तो सुख देता है, तो पुण्य को जलाना तो अभिष्ट नहीं है। बात यह है, देखो चाहे पाप हो पुण्य हो, जैसे पाप कर्म भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ता है ना, ऐसे पुण्य भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो जन्म ही दुख का कारण है, पाप हो चाहे पुण्य हो। इसी में आया था, पहले आया था, आपको ख्याल है कि नहीं, पंच दुखों का वेगा है नी बात, पांच दुखों का वेग है, जन्म दुख,